आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 में मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, आज इतवार है, शख्स

1948 के वैसाख महीने की 27 तारीख मुताबिक 17 मई 2026 ईस्वी समय सुबह के 6:31 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: प्रोग्राम सुबुगाही सुनने वाले सभी सामीन की खिदमत में हमारा खुलूस भरा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम के आगाज में आइए कुरान करीम की इन चंद आयत मुबारक की तिलावत सुनते हैं। आयत मुबारक की तिलावत के बाद इन्हीं आयात का ترجمہ بھی نشر ہوگا۔

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। पंचदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेग नगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः, पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः।

0: वदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीयसम्बद्धेभ्यः अधिका महत्त्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीयचरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः 23-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबारद्वीपसमूहाय पश्चिमबङ्गाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारङ्गवारणकी सञ्चेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपयभागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडामालिकायाः पुरुषयुगलवर्गीये निर्णायकद्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी च इण्डोनेशियादेशस्य लियो रॉली कार्नाण्डो डेनियल मार्थिनाभ्यां स्पर्धिष्येते। इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनाङ्कैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम्, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है।

0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुब के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं सकीना और मेरे साथ हैं
1: परवेज मीर, और उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले दोस्त चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अच्छे मूड में होंगे।
0: और बिल्कुल इस वक्त हमें ज्वाइन किया होगा, रेडियो सेट ऑन होंगे। सुनने वालों को बता दें कि कंट्रोल रूम में इस वक्त हमारे साथी हैं नसीर अहमद और आईपी सिंह। यही कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया दिन देखने को नसीब हुआ।
1: ये दिन सबके लिए अच्छा हो और दिन का इख्तिताम भी अच्छा हो, ये हमारी दुआ है। हम दुआ करते हैं हमारे सभी सुनने वाले साथी जो हैं खुश रहें।
0: परवेज, ये तभी मुमकिन है जब आप सबके साथ खुशियां बांटेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सकीना जी, जिंदगी बहुत थोड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: किसी का बुरा सोच के, किसी का काम बिगाड़ के हम शायद अपनी आना को तस्कीन तो करेंगे
0: जी,
1: मगर यकीन मानिए आपके अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा।
0: देखिए, बिल्कुल 100% सच्ची बात आपने कही। यही कहना चाहेंगे कि दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान होता क्या है।
1: सही कहा आपने, समाज में
0: जी,
1: सोसाइटी में कोई चेंज लाने के लिए, या यूं कहें कोई भी बेहतरी लाने के लिए, अपने आप में बेहतर बनाने की या बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा होती है।
0: देखिए, जब हम कहते हैं कोई अच्छी बात सुबह सुबह शेयर करते हैं, आपने कहा कि पहले अपने अंदर वो खूबी लानी होती है। देखिए, इंसान को हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो बात हम आपके साथ शेयर करते हैं, यकीन मानिए ये जो बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं
1: जी,
0: पहले हम कोशिश करते हैं कि ये जो बातें हैं, कोई अच्छी बात है, पहले अपने अंदर वो लाएं, वो खूबी अपने अंदर लाएं, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सभी के लिए एक बात है कि अच्छी बातें जो हैं वो अपने अंदर लाएं, खुशी, हंसी, ये सब ऐसी बातें हैं कि दिन की शुरुआत में सुनाना
1: अच्छा, और इन पे अमल करना
0: बहुत
1: अच्छा लगता है।
0: और पयाम सुब की इस म्यूजिकल जर्नी में एक बेहतरीन गीत हम पहले पेश करेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि ये गीत भी एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए, हम भी आपके साथ हैं।

0: प्याम सुबह शो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से, और हम कोशिश करते हैं इस शो में अपने दोस्तों तक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, ऐसी ऐसी खुशखबरियां पहुंचाने की कि जिनसे सुन के एक तो वो चाय का मजा लें और दूसरा ये कि उनका मूड बिल्कुल मुस्कुराता हुआ बने और एंजॉय करें ये शो।
1: अब चूंकि परवेज आज के दिन का थीम यही होता है, यानी कि संडे के संडे थीम होता है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, तो कोशिश हम करेंगे आज सुबह सुबह पहले खुशी की खबरों से ही हम एक हिसाब से बोछाड़ करेंगे
0: और कोशिश करते हैं छांटने की। जब बात करते हैं सकीना जी, ये अराउंड वर्ल्ड जो खुशी की खबरें होती हैं तो बहुत सारी होती है, और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि इसमें ये चॉइस करना भी बड़ा
1: मुश्किल होता है कि कहां से स्टार्ट करें। देखिए, अपने ही कश्मीर की पहले बात करेंगे। देखिए, एक संगे मील अबूर करना और फिर एप्रिसिएशन करना,
0: सही बात,
1: जो उसके हकदार है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम अपने कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत खुशी की खबर है अगर हम तिब के शोबे की बात करें तो।
0: जी, सिक्किम सुबरा में पहली मर्तबा सकीना जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कामयाबी के साथ जराही की।
1: ये कल की बात है।
0: जी, ये कल की बात है, बल्कि यूं कहे कल शाम होते होते ये बात
1: खबर सामने आ गई,
0: सामने
1: खुशी की खबर सामने आ गई।
0: और ये सर्जरी जो है अपने आप में बहुत पेचीदा मानी जाती है, ये 8 माह के एक बच्चे पे की गई है जो इस मर्ज में जूझ रहा था।
1: देखिए दोस्तों को बता दें कि इस 8 माह के बच्चे में डॉक्टरों ने HLH मर्ज की तस्दीक की थी, जो मदाफती निज़ाम की एक जानलेवा बीमारी होती है। मदाफती निज़ाम मीन्स इम्यून सिस्टम, और ये बच्चा मदाफती निज़ाम की एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसमें मदाफती निज़ाम हमेशा गर्म रहता है, जिस वजह से मरीज को लगातार बुखार, मुख्तलिफ अज़ा का मुतासिर होना वो जाहिर हो रहा था।
0: सही बात है, और डायरेक्टर सिकमस ने ट्रांसप्लांट करने वाली पूरी टीम को मुबारकबाद दी है, और शोभे अमराज अतफाल के माहरीन डॉक्टर जुबैर मुश्ताक त्रुम्बू और दीगर शोबाजात के माहरीन की भी सराहना की गई है।
1: देखिए, वाकई में ये जो टीम है, जो भी इसमें डॉक्टर साहिबान मौजूद थे, मुबारकबादी के मुस्तहिक है और पूरी वादी के लिए, सबके लिए खुशी की खबर है।
0: बिल्कुल, मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की में आ गया है, और खासकर हम वादी कश्मीर से चूंकि ताल्लुक रखते हैं, इस वैली के लिए ये तो बहुत बड़ी खबर है,
1: बहुत बड़ी खबर है। तो अब आलमी सतह पर देखते हैं खुशी की खबरें
0: एक चक्कर मार के आते हैं,
1: तो पहली खबर आप शेयर कीजिए, आपके जहन में क्या है।
0: आलमी सतह पर समंदरों की माहीगिरी और गहरी

0: सिकंदर खान को इसे बचाने के लिए तारीखी हाई सीज ट्रीटी जो है वो नाफिज की गई है, जिसका मकसद कोरे अर्ज के 60% समंदरी रकबे को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करना है।
1: बहुत अच्छी खबर है। तो अब मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी की बात करते हैं, तो वो ये है कि पुर्तगाल ने जनवरी में अपनी 80% से ज़्यादा बिजली काबिल तजदीद ज़रा यानी शमसी और हवाई तवानाई से हासिल करके यूरोप में एक शानदार मिसाल कायम कर दी है।
0: ये भी एक बहुत अच्छी खबर
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी खबर है। कशीर मज कच करा बिजली हिंस पतल बिजली बिल चु वा तो फैन चन खसान
0: बिजली बिल वाता आगे फिर चल खसन दो चीज सारी बर्स आखिर किस आसान वुछान
1: बहुत कम से ज्यादा। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी शमसी तवानाई ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि मुतबादल गज़ आसुन ज़रूरी।
0: बिल्कुल
1: और अब बच्चों के हवाले से ही एक और इन्फॉर्मेशन है, खुशी की खबर है, वो परवेश शेयर कीजिए क्या है।
0: आलमी इदारा की जानिब से मलेरिया

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-111-2100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा। सेफ है यार, लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता। धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चलें और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
12: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
13: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
11: सेहत के मशवरे,
14: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज ब्रॉडली करन यम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
11: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
12: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।

0: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह।
1: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
0: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह।
2: जी दोस्तों, लाइव शो पयामे सुबह में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
3: परवेज मीर।
2: संडे का दिन 17 मई और आपको बता दें कि आज के दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिन का बुनियादी मकसद इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फवायद के बारे में आगही फैलाना है और मुआशिया तो समाज की तरक्की में इनके किरदार को उजागर करना है।
3: जी दोस्तों, ये दिन बैन अल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन के क़याम की याद में मनाया जाता है। इसका संगे बुनियाद 17 मई 1865 को पेरिस में रखा गया था और 2006 में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने बाज़ाबता तौर पर इस दिन को मनाने की मंजूरी दी।
2: और परवेज, इसका बुनियादी मकसद डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल तफरीक को कम करना है ताकि हर शख्स तक जदीद टेक्नोलॉजी की रसाई हो। हम जब ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक
3: अब सब टेक्नोलॉजी रसाई अब आम हो गई, सब तक ये रसाई होगी और सब इसमें
2: शामिल
3: हो रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाना है और मकामी सतह पर आईटी डिजिटल जिद्दत और इंटरनेट की सहूलियात को फरोग देना है।
2: और ये भी कह सकते हैं कि इस दिन खुसूसी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्कद किए जाते हैं। इनकी तकरीबात में मकामी टेक्नोलॉजी माहरीन, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और सरकारी हुकाम जदीद डिजिटल तरजीहात पर रोशनी डालते हैं। अब चूँकि हम भी यहाँ पे एक ऐसे इदारे में हैं
3: जहाँ पे टेक्नोलॉजी का
2: भरमार है,
3: बिल्कुल,
2: और रेडियो तक रसाई सबकी है माशाल्लाह, और जब हम सेलफोन्स की बात करते हैं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सो अंतियो फर्ज वन बचस बचपन पेठ सेलफोन अथस मज
3: टेक्नोलॉजी
2: अथस मज अमिश ऑनलाइन स्कूल त फेज शुरू गोल कि ऑनलाइन
3: क्लास बिल्कुल कुछ अक्सर दपान है बच्चन में दियो फोन कि अच्छन पे असर पे दिमाग पे असर पे मगर ये अमन बच्चन मोबाइल वर गई
2: नकमल
3: छह कम बच्चे निश रुक
2: मगर वन सारे गुजारिश पानस तब दमागी तौर कतना कि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट पे कहाँ ते व्लॉगर छो, कहाँ ते यूट्यूबर छो, कहाँ ते एक जीहिस इंसान छो, ये सत वाबस्त छो, वो चीज अच्छी यथ टीम से ते वाबस्त, रेडियो से ते वाबस्त, सुबह सुबह या प्रसाद से कोशिश करान के रुतु रुतु बात ना हो, एंटरटेनमेंट ते चीज दीवान भोजन वाले खतरे, मगर ये तक गुजारिश सोशल नेटवर्किंग साइट पे आसे चाहे ब या तु तो तत्त गए कोशिश आसिन अत सोशल नेटवर्किंग साइट पे त्राव रुत रुत जान कत पॉजिटिविटी हिचनिश यत पट बचस यत पट स्क्रॉल करी ते मिस रुत रुत पोसले
3: सक कत ते मिस ब्रोट कन ये के यु तम से दिमाग इस बिल्कुल छाप के
2: रुत असर
3: पे रुत असर पे
2: उचस मलिस माय छ रोजन परेशानी एम्स छ सेलफोन अतस केत आइत छ असल ते आइत छ बुरत
3: मगर मोल मोज हेक सकीना जी ये रुकावट तुम मोल मोज हेक बचस समाज निश अलग
2: तीन मगर वन सी गुजारिश आज चूंकि संडे सारी बोजान अत मजन सारी सी बोजन वल यूट्यूब इस्तेमाल करान फेसबुक इस्तेमाल करान कह सोशल नेटवर्किंग साइट अगर इस्तेमाल करो कह त्रावि तथ मज करो कोशिश अच्छा वन यूजली वन फहाशी गंद कह हुछ सो त्रावनस कर तो अवॉइड गो
3: कर
2: रच रच कत वात तो सोसाइटी तान ये सनिस बचस सनिस फ्यूचरस असल असर
3: बिल्कुल तेज कुलम पे सारी इकवटे अक समाज एक समाज
2: बिल्कुल
3: तो
2: उम्मीद करान कि कथन पे अमल कर अम पत् मर मुद बह फिल्मी

0: दोस्तों शो आप सुन रहे हैं प्याम सुबह, और इस नगमे से पहले हमने बात की वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात करते हैं आज के दिन के हवाले से, और आज सेकेंड जी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है, ये 17 मई को मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद है ब्लड प्रेशर के खतरात और इससे बचाव के बारे में आगाही फैलाना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जल्द तशखीस और इलाज को तवील और सेहतमंद बनाया जा सकता है, क्योंकि जब हमारी सेहत अच्छी हो तो हर शोबे में लुत्फ और सुकून हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को या उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको कहते ही है खामोश कातल।
0: बिल्कुल, और सिकना जी आलमी सतह पर ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि लोग जाती तौर पर भी तैयार हो जाए और आखिर इस मर्ज से कैसे बचा जा सके, इस मर्ज पर अपनी गिरफ्त जो है वो कैसे हावी की जा सके, बस यही इस दिन को मनाने का मकसद है।
1: देखिए, जब हम हाइपरटेंशन की बात करें, उनके अनुसार सैन बुजुर्ग वारिया यमन उर्दू पठासी कत समझ आम वनो कि ब्लड प्रेशर आम पे वन सारी बुजुर्ग बच्चे समझा ब्लड प्रेशर
0: यूथ ब्लड प्रेशर नून पे
1: नून पे मानो नून सो ब्लड प्रेशर यह मेन फैक्टर नून। मगर अजक दौर कत करो बेरोजगारी,
0: बिल्कुल
1: टारगेट पोस रिश्ते टॉक्सिक
0: बेसुकूनी
1: बेसुकून।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आपके बाद नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नजर डालते हैं। समय रात 9:30 पर आकाशवाणी श्रीनगर का पॉडकास्ट नशर होगा। मेहमान हैं जरीफ अहमद जरीफ, इनसे हम कलाम है। प्रोग्राम के मेजबान तबरेज हुसैन मदनी। फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम आपकी फरमाइश ब्रॉडकास्ट होगा शब 10 बजे। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जावेद अंद्राबी। सुबह 8:15 पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सैन तारीख। मौजू है हेरिटेज सेलिब्रेशन इन कश्मीर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है। समाप्त करें सुबह 8:45 पर। मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां आप सुनते हैं सुबह 9 बजे। सुबह 9:45 पर 65 प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा।

नन्हे मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम होनहार समाप्त करते हैं सुबह 10:30 पर कश्मीरी ड्रामा एस्कर नियरन शार समाप्त करें सुबह 11 बजे तहरीर राजा बशीर अहमद गिलकार।

सुनन दिन के 2:30 बजे प्रोग्राम समाप्त करें नई मंजिलें। फौजी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं दोपहर 3 बजे। पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त करें 4 बजे। 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम नशर होगा। शाम 5 बजे गोजरी प्रोग्राम नशर होता है। गमी बाइन हिंदी खतर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा शाम 6:05 पर। हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर होता है हर रोज शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज। प्रोग्राम शशरंग नशर होगा रात 9 बजे। समय नियति तफसील अब के बाद नशर होने वाले प्रोग्रामों की।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों

0: और रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने

0: के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल

0: डल्सर आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اخ ترے اشاریہ 5 میگا ہٹسن پہ سمین صبح 8 بجے تو 15 منٹ سپدے ول بوزو پروگرام سن تاریخ
4: سن تاریخ پروگرام کو بیاخ اخ شمار ہے چس بو ستیش میں ملتون جس خدمت اس مز حاضر سمین مختلف موضوعن پٹھ کتھ کران کران وچ اس کہ اخ بیداری عوامس مز پید گھان یم سات کت کران ات کت مز شریک گھان سہ نفر تمس نائریکٹلی کھانا واسط ہسٹری ست تہذیب کس تک سلسلس ست تمس تاسان کہ یہ مان پرزنت سز کت یہ پرزنت برقرار تھونے خاطر بین الاقوامی سترس پہ تقریب منانا یا فوکسڈ سیلبریشن ورلڈ ہیریٹیج ڈے ورلڈ ہیریٹیج ویک ورلڈ میوزیمز ڈے یا یت آرکیولوجی ڈے یا یت ہیو چیز یم شاید امی خاطر کہ اخ آگہی گھ عوامس پید گھن کہ کیا اہمیت ہسٹری آرکیولوجی ہیریٹیجس کن تلاقہ پرزنت زان خاطر آج اس ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب انم سٹوڈیوس مز بیک لٹ دعوت دت اس دوپ آز کرو اس یمنی سیلیبریشن پہ کت کہ یمن ہز اہمیت کچھ تو اس کت پہ ہیکوک یم سیلیبریشن

0: India-Netherlands partnership is brighter than ever before.
1: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकत दारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकत दार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
2: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
1: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जिटन ने

0: 26 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्वीडन, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज़्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक ख़ास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनअत से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वज़ीर आज़म का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है, जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नज़रिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सयाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाज़त दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज़ और ASI इसके इंतज़ाम व इंसराम तय कर सकते हैं। ہائی کورٹ کی

0: इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दिया जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज़ अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से RG कर मेडिकल कॉलेज असमत दरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम हैं। मुतवफ़ी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने TMC के साबिक MLA निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन PP चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर आज़म कल एम्स्टरडैम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वज़ीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी छह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ ख़ानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے. اس دوران وزیر اعظم سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے. محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے. حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں

0: अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, आजकल चेकअप का भी बड़ा फैशन है, तो हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि अगर एक इंसान सुबह नींद से जाग गया और उसको ये शौक है कि आज मैं ये काम करूंगा, इसकी मदद करूंगा, उसकी मदद करूंगा, कुछ हेल्पिंग हैंड बनूंगा इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, और मैं अपना काम अंजाम दूंगा, तो ये उस शौक में सुबह उठ गया अपनी नींद से, तो इसका मतलब है कि ये आदमी सेहतमंद है, ये हेल्दी है। अब अगर कोई आदमी सुबह उठ गया और उसको जहन में ये बात आ गई कि भैया आज ऑफिस भी जाना है और थकावट है उसको बहुत और मन नहीं है उसको जाने का, मगर बॉस का डर है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आउट ऑफ कंपल्शन ये गया, चाहे ये ड्यूटी करने गया, चाहे मजदूरी करने गया, चाहे ये काम पे गया, तो बाद में ये कितना भी अच्छा वेट लिफ्टर हो, ये बीमार है।
1: बिल्कुल मर्जी के खिलाफ निकला।
0: नहीं, मर्जी के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये इसका अंदर जो चीज है, वो अंदर कोई ना कोई चीज इसको सता रही है, वही ख्याल जो है, वही सताने वाली चीज माइंड में ट्रांसमिट हो गई, तो जाहिर सी बात है ये एक दिक्कत इसके सामने आ गया। अब अंदर कौन सी चीज है? देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि 40% ब्रेन इज इन द गट, तो बल्कि हम ये बात क्यों न कहें कि आपका गट आपको कंट्रोल कर रहा है। इन्हें अगर आपका म्यादा ठीक नहीं है, आपके आते ठीक नहीं, सुबह इंसान उठ गया और उसको लग रहा है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसकी वजह से उसकी डिस्टर्बेंस उसके चेहरे पे भी आ गई है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रेफरेंस वॉशरूम जाना है, है ना? तो जाहिर सी बात है वॉशरूम जाना जाना, और इस तरह से इसका मूड पूरे दिन खराब रहेगा, और अगर ये सिलसिला हर रोज चालू होगा तो हर रोज होगा। अब मैं बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक इंसान जो सेहतमंद था, जो सुबह ही उठ गया और निकल गया अपने काम पे और शौक से, तो इसको अपनी कंपनी ने ये कहा कि भैया हम फ्री चेकअप कराते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, तो आप बस टेस्ट का सैंपल दे दो। मान लीजिए हमारे पास 500 टेस्टस हैं इन्वेस्टिगेशनस, तो इसने अपनी खून दे दी, खून की जा, और आउट ऑफ 500 पैरामीटर्स हमारे 5% एरर्स है। यानी अगर एक इंसान नॉर्मल भी हो और वो किसी डॉक्टर के पास जाए चेकअप करने के लिए, वो 5 के 500 ये करे, आउट ऑफ एरर्स आई एम टेलिंग यू, यानी जिसको कोई अलामत नहीं, कोई कुछ नहीं है, आउट ऑफ एरर्स इस आदमी को 5-25 बीमारियां निकल जाएंगी। अब जाहिर सी बात है ये बेचारा अभी तक सेहतमंद था। अब यही बीमार आदमी, मान लीजिए इसका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकला, अब क्या हुआ कि पहले हमें ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल की पिछले अगर 3-4 दहाइयों में हम देखें, तो 3-4 दहाइयों में इसके जो नॉर्मल कहते हैं, एवरेज जो हम मानते हैं, तो वो नॉर्मल वैल्यूज घटते घटते नीचे आ गए। तो जाहिर सी बात है अब अगर ये जो नॉर्मल वैल्यूज किसी ने तय किए, तो अगर हम इन्हीं एवरेज में इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, तो आप ये क्या करेगा कि डॉक्टर के पास जाएगा ये इन्वेस्टिगेशन लेके, तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ जी आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अब आपको क्या करना है कि ये एक टैबलेट है स्टैटिन, ये खाओ। अब इसने स्टैटिन खाया, अब अगर ये जो ही उसने खाना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है इससे कोक्यू एंजाइम कम निकलता है, कम हो जाता है, जब इसे कोक्यू एंजाइम कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें जिगर में कमजोरी पैदा होगी, हार्ट मसल्स में कमजोरी पैदा होगी, मसल पेन्स पैदा हो जाएंगे, और भी साइड इफेक्ट्स हैं जैसे मतली आना, डायरिया होना या हेडेक्स होना, तो जाहिर सी बात है जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये डॉक्टर के पास जाएगा, वो दूसरी गोली देगा, और उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल दवा बंद करने की जरूरत तो होगी नहीं किसी में, तो ये चलाते रहेगा। अगर इसने ये कुछ 5 साल मान लीजिए 5 साल ये चलाई, तो 50% चांसेस है ये डायबिटिक हो जाएगा। अब अगर ये डायबिटिक हो गया, या कोई डायबिटिक ऑलरेडी हो, तो उसकी शुगर लेवल थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब ये बढ़ना शुरू हो गया, तो ये क्या करेगा, अब शुगर के डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो शुगर की गोली रखेगा। जब वो शुगर की गोली रखेगा, जो आमूमी गोलियां हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी फिर सामने आएंगे। देखिए, अब अगर इसको शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, तो और साइड इफेक्ट्स, मान लीजिए फिर कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हमें पैदा हो गए। अब अगर इसको पैदा हो गए, तो जाहिर सी बात है ये किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, मान लीजिए मैदे का डॉक्टर है, تو اس نے اب پی پی آئی لینا شروع کر دیا اور پی

0: पीपीआई देने से क्या हो रहा है कि पीपीआई देने से क्या होता है कि फिर से मतली होने लगे, सरदर्द होने लगा, या अगर हम और थोड़ा बढ़ जाएं तो ये कुछ रिवर्स इफेक्ट्स भी करता है। B12 डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। कभी किडनी इंजरी भी हो जाती हैं, और किडनी इंजरी हो गई तो जाहिर सी बात है तो फिर ये किडनी के डॉक्टर के पास जाएगा। तो किडनी के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो कुछ अपनी दवाएं, हाँ, तो उससे भी स्किन रैशेस पैदा हो सकते हैं, रनिंग नोज पैदा हो सकती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म या लो ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें पैदा हो सकती हैं। इन बिटवीन वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है वो कोई बंद नहीं करेगा, वो चालू रहेगी। और वो चालू होते होते एक स्टेज ऐसा आ सकता है कि जब, चूंकि कोलेस्ट्रॉल कम बनने लगेगा, तो कोलेस्ट्रॉल से हर किसी सेल का दीवार बनता है, तो ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर पतला हो जाएगा, और एक वक्त आएगा ये दीवार गिर जाएगा। और जब ये दीवार गिर गया तो जाहिर सी बात है इसको हम प्रोलिफरेशन कहते हैं, और प्रोलिफरेशन का मीनिंग ही कैंसर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो जो एक दवाई इसने शुरू की थी, आप वो देखिए कितने डॉक्टर्स को जो है एंगेज किया। मान लीजिए किसी किडनी के डॉक्टर को, किसी शुगर के डॉक्टर को, किसी मैदे के डॉक्टर को, या और भी बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब आज की तहकीक जो कई सालों से चल रही है ये हमें कह रही है, जो ये जो है हमें बताती हैं कि कोलेस्ट्रॉल जिनकी ज्यादा है उनकी उम्रें ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: तो जाहिर सी बात है वो जो पहला वाला टैबलेट इसने खाया था तो वही गलती थी। अब अगर मकसद यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल कम करना है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, शुगर कम करना है, या आपका वेट कम करना है, या फैटी लिवर कम करना है, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो है कि आप किसी भी तरह से अपने खाने में कमी लाइए। देखिए आजकल मैं बार बार कहता हूँ कि आजकल जो हमारा बड़ा चैलेंज है, एक वक्त ये था कि भैया खाओ पियो और सेहत बनाओ, मगर आज हमारे पास काम नहीं है। और अगर मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है जो मेहनत कश नहीं है, जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ, जो आज भी खेतों में काम कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये बात नहीं है मुनासिब। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एक मेजॉरिटी है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका आरामदेह है, इन्हें घर से निकले और कहीं पर ऑफिस में कुर्सी पे बैठ गए और वहां चंद बातें की, चंद कागजों पे काम किया या किसी कंप्यूटर पे और उठ के चले गए, तो उनको न एक्सरसाइज की फुर्सत है, न जिम जाने की फुर्सत है, न पैदल जाने उनके पास वक्त है। मैं उनको बार बार ये कहता हूँ, देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया कि टांगे जो हैं वो आधा है जिस्म का हिस्सा है, तो इसका मतलब आधा काम तो इससे ले लो। अब अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो जाहिर सी बात है यही तो आपका सबब बनेगा हर एक मर्ज के लिए। तो इसलिए जिस चीज पे हमें जोर देना चाहिए वो ये है कि किसी भी तरह से हमें खाना कम से कम कर देना चाहिए। और नई तहकीक हमें ये बताती है जितना आप जरूरत से कम खाना खाएंगे उतनी आपकी उम्र दराजी
1: मुमकिन है।
0: तो कहने का मकसद ये है कि अगर कभी भी आप डाइटेरी जो गजाइत है, यानी इलाज बिल गजा के बारे में आप बात करना चाहते हैं, हमसे मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे पास। आज इतवार है, इतवार के दिन मैं बजाय खुद अनंतनाग वाले अस्पताल में होता हूँ, जो हमारा लाल चौक में यूनानी पंचकर्मा हॉस्पिटल। इसी तरह एक और हॉस्पिटल है हमारा नटीपुरा में, इकबाल कॉलोनी बर्षा नगर में। एक हॉस्पिटल हमारा शुपियान के कोट रोड पे है। एक हॉस्पिटल हमारा त्राल के खानका फैज बनाया हाथे में। एक हॉस्पिटल हमारा सिकड़ाफर चौक ईदगाह श्रीनगर में। एक हॉस्पिटल हमारा यहाँ मागाम बॉयज हायर सेकेंडरी के बिल्कुल सामने है। और एक और हॉस्पिटल हमारा बारामुल्ला में है, उर्दू बाजार में। वहाँ मैं बजाय खुद थर्सडे को होता हूँ। तो कहने का मकसद ये है जिस भी बंदे को हमसे कोई मशवरा लेना चाहिए वो आए हमारे पास। हमारा एक फोन नंबर भी है, आप उस पर भी रابطہ कायम कर सकते हैं। फोन नंबर है 9419408011। मैं दोहराना चाहूंगा 9419408011।
1: डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगे आपसे तो बातें और करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे

0: के लिए पुरअज़म अमित शाह।
1: अखबार लिखता है कि पहलगाम आडू रोड पर तवेरा गाड़ी खाई में जा गिरी, गुजरात के मियां बीवी की मौत वाकया, गाड़ी का मकामी ड्राइवर जख्मी, सभी जेरे इलाज।
0: सुर्खियां जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: है काका सुको तो ये ब्रश कटर है दाम
3: अदा क्या हुआ ना या दपियो हम शेयर नि नि
2: हां ई खुदा तमी वीज वणियो मई सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार अनु होंडा ब्रश कटर या ची लोकल दहन ब्रश कटरन बराबर न त मान त मियो सिनी ये ब्रश कटर जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर वाले निश
3: बुतिहा उसस ती सोचा दपाना तच एक्सचेंज मोल चलान छुना सला बुति मई तिमन प्रोन ब्रश कटर त एक्सचेंज स्कीम तहत हमक नो होंडा ब्रश कटर
2: वार कार वुस्त क्या गो जान
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
6: पर क्या कर सकते हैं?
5: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 1416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं।

0: और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: دوپیا بجانا تہ کی بونس سٹورس من شیشتر خر جمع کر برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
3: پتہ یہ خراب گمس اکس اٹھ اٹھ ساس روپیے لگان شیرنس وی کنو شیشتر ولس ادا یپور شیشتر وول تیوان
2: گنا پن شیشتر ولس کیاز دیو یم ساری جے کے اسٹیشنرس والن نش تتہ ہچے ایکسچینج سکیم چلان یور نک پرن تور انک نئی برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
3: رپت کریو اتھورائز ڈیلر جے کے اسٹیشنرس مولانا آزاد روڈ श्रीनगर।
4: जी दोस्तों, शो में एक बार फिर आपका वेलकम है। आप तक पहुंचाई जा रही हैं आज की सुर्खियां।
5: जी अखबारात लिखते हैं, पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी मुकम्मल, 1.25 लाख वोटर हजब, हतमी फहरिस्तें 20 मई को शाया होंगी, 3.5 लाख नए वोटर शामिल।
4: पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बंद कर दे वरना अंजाम खुद तय करें, इस्लामाबाद को फैसला करना होगा कि जुग्राफिया का हिस्सा रहना है या तारीख बन जाना है। फौजी सरबरा ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर भारत का सख्त अस्करी मौकफ, दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस का इरादा, आर्मी चीफ का मुनफरिद ख्वाब, आहिस्ता जिंदगी के नाम से कैफे खोलने का ऐलान, सोशल मीडिया से दूरी का भी मशवरा।
5: एक और उर्दू अखबार की सुर्खी है, 14% लोग गर्दन की हड्डियों के तकलीफ के शिकार, मोबाइल और मुतवातर तौर कंप्यूटर का इस्तेमाल और झुककर काम करना बुनियादी वजह करार।
4: अखबार लिखता है कि कुपवारा में पुलिस अफसर ने मुबैना तौर बीवी को गोली मारकर हलाक कर दिया, मुलजिम अफसर ने बाद में खुदकुशी की भी कोशिश की, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
5: मिनिस्टर सतीश शर्मा ने सरकारी गाड़ी के बजाय टांगा पर सफर किया, कफायत शारी अपनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है।
4: कुलगाम पुलिस की मनशियात फरोश मियां बीवी के खिलाफ कार्रवाई, ब्राजलू जागीर में जोड़ी का मकान मिसमार, दोनों कई मुकदमात में मुलविस, खातून इस वक्त जेरी हिरासत पुलिस।
5: सोपोर में 15 मकामात पर छापे मारे गए, जमात इस्लामी के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई।
4: एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है कि राजौरी में जंगली सब्जी खाने से एक शख्स की मौत वाकई हो गई, बच्चों समेत 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज, फूड पॉइजनिंग का शुबा।
5: तो समीन ये थी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां।
6: की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
7: आज की सुर्खियां, सुर्खियां, सुर्खियां।
4: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, लाइव पयाम सुबह जारी है, आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ है
5: परवेज मीर।
4: जी क्या ख्याल है
5: जी सकीना जी, शो में हमने हाइपरटेंशन की बात की।
4: जी बिल्कुल की।
5: और वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें दोस्तों को बताई और हाइपरटेंशन के बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनसे मुतालिक हमने बात की। और चूंकि हाइपरटेंशन की जब बात हुई, अब बात करते हैं खुश होने के, जिससे मिजाज में तब्दीली आ जाए।
4: जो हाइपरटेंशन की आपने बात की, हम कोशिश करेंगे आज के शो में कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद एक माहिर से बात करने की, ये कह सकते हैं कि माहिर डॉक्टर, नामी गिरामी डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बताइए, गजल आपने कौन सी क्यों करके रखी है?
5: आज की गजल जो है ये इब्न इंशा का कलाम है और मुनफरिद लहजे के मालिक गुलाम अली साहब की आवाज में,
4: और इब्न इंशा के बारे में एक मशहूर है।
5: मशहूर बात यह है कि इब्न इंशा जो है ये लगभग जो इनकी शायरी है, लगभग बेशतर शायरी में इन्होंने अपने मतले में अपना जो तखल्लुस है इस्तेमाल किया है।
4: और अदब से वाबस्ता जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको बता दें कि इंशा जी उर्दू की मुमताज मिजा निगार और सफरनामा नवीस थे। इनकी सबसे मकबूल और लाजवाल गजल इंशा जी उठो अब कूच करो, ये गजल है जो फिराक, हिजर और तन्हाई के फलसे पर मबनी एक शाहकार है। ये गजल भी आने वाले दिनों में, आने वाले शोज में हम आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल परवेज की पसंद की जो गजल है वो गुलाम अली की आवाज में बेहतरीन गजल है, सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए, हम भी आपके साथ हैं।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, लाइव शो जारी है पयाम में। सो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। जैसे कि पहले ही हमने आपसे कहा, हर साल 17 मई को मनाया जाता है, यानी कि आलमी ब्लड प्रेशर का दिन। इस साल का थीम है दोस्तों, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट साइलेंट किलर। यानी मिलकर हाइपरटेंशन पर काबू पाएं, अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करें, खामोश कातिल को शिकस्त दें। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने मुनासिब जाना कि एक माहिर डॉक्टर साहब से बात करें। ये वादी के नामी गिरामी, या यूं कहें कि मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुर्शीद इकबाल साहब। इनका शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: डॉक्टर साहब। आज चूंकि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाजिया अलामत के दिल, गुर्दे और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, जबकि हर घर में कश्मीर में ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं?
1: जैसे आपने सही फरमाया, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हमें याद दिलाता है कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल जो अक्सर बगैर अलामत के नुकसान पहुंचाता है। बाकायदे से ब्लड प्रेशर चेक करवाना, पाज़ नमक का कम इस्तेमाल, वर्जिश, बर वक्त इलाज के दौरे फालिज और गुटू, जैसे आप जानते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर दिमाग, दिल, किडनी ये बहुत बुरा है, उससे हमें बचाव मिल सकता है जब इसका टाइमली इलाज हो। अपनी रोजमर्रा खुराक में ताज़ा सब्जियां, फल, दालें और शामिल करें। बतौर माहिर बकराज कल मैं मेरे प्रोग्राम यही है कि अपनी खुराक बेहतर बनाएं, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें और काबू में रखें, और यही दिल की हिफाजत हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, कुछ मरीजों को हमने देखा है जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो कुछ महीने लेते हैं, फिर ये ब्लड प्रेशर की दवाई

0: तोड़ देते हैं, ये किस हद तक सही है?
1: ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करते हैं
0: जी
1: तो वो उसी से ही वो कंट्रोल हो जाता है। तो जब कुछ देर के बाद आदमी चेक कर लेता है ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, वैसी हालात में ब्लड बंद नहीं करना, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर दवाई कब बंद नहीं करनी है, वो कंटिन्यू करनी है, महीने दो महीने तीन महीने के बाद फिर चेक करके देखना है। अगर लगता है कि जरूरत से ज्यादा कम होगी तो डॉक्टर के साथ रजू करके उसका डोज कम कर सकते हैं, बंद तो कभी नहीं करनी चाहिए।
0: यानी कि बगैर मशवरा कोई भी स्टेप आप नहीं उठा सकते?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन चीज है और बहुत ऑलमोस्ट 60% ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है आफ्टर द एज ऑफ 50-60
0: जी,
1: तो ये मुमकिन भी नहीं है कि वो हर महीने हर दो महीने हर दो हफ्ते डॉक्टर से रिव्यू करें
0: जी।
1: तो इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि अपने घर में एक ब्लड प्रेशर अपरेटस रखें।
0: सही,
1: अपरेटस बहुत एक्यूरेट हो गए हैं, पहले पहले वो बहुत रॉन्ग रीडिंग देते थे लेकिन अब बहुत एक्यूरेट है
0: जी।
1: और इस्तेमाल अगर अच्छी तरह करें, लाइक बिल्कुल आराम से बैठ के कुर्सी पे बैठ के मेज पे हाथ रख के ठीक है 3-4-5 मिनट के बाद रीडिंग ले लें, फिर दूसरी रीडिंग ले लें 1 मिनट के बाद, फिर तीसरी ले लें 1 मिनट के बाद, रोज नहीं देखना है या 2 हफ्ते में एक दफा।
0: डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब ब्लड प्रेशर की बात आती है हम हमेशा नमक को कसूरवार ठहराते हैं। अब चूंकि दौर ऐसा है जब हम रिश्तों की शिकायत करते हैं, तन्हाई महसूस करते हैं, मिलना जुलना नहीं है, हर घर की अपनी एक कहानी है, कितना कसूरवार आपको तन्हाई को मानते हैं, रिश्तों की खटास को मानते हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह बन सकते हैं।
1: नमक तो डेफिनेटली है जिस्म के लिए, 3-4 ग्राम से अलावा नहीं होना चाहिए। ये देखा गया है कि नमक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर के डिजीज में। दूसरी बात आपने नफ्सियात की और स्ट्रेस की, स्ट्रेसफुल लाइफ की बात की, वो तो डेफिनेटली इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक रखता है
0: जी।
1: और बाकी हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना तो अपने बस में है, दवाइयाँ हैं
0: जी,
1: परेशानियों से आप अपने सराउंडिंग्स को कितना चेंज कर सकते हैं, जितना हो सके थोड़ा अपनी लाइफ इजी रखें, लेट इट बी समथिंग व्हाट वी से यू नो हैप्पी गो लकी टाइप।
0: और सबसे बड़ी बात है जो टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक बातें हैं, टॉक्सिक रिश्ते हैं, उनको अपनी इससे निकाल ही दीजिए, अपनी डायरी से, अपनी जिंदगी से,
1: ध्यान ही नहीं देना है, कान बंद रखने हैं।
0: देखिए डॉक्टर साहब, आप मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जब आप जायजा लेते हैं कश्मीर के हार्ट की, गुर्दों की, ज्यादा किस नौइयत के पेशेंट्स आते हैं, ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है?
1: देखिए जैसे आप जानते हैं आजकल तो हार्ट अटैक ही ज्यादा है, हार्ट अटैक रिलेटेड, हार्ट की जो अपनी रगें हैं जो उसको नशोनुमा देती हैं उनमें चर्बी पैदा होना
0: जी,
1: चर्बी पैदा होगी तो ब्लड प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है
0: जी।
1: इनका ब्लड प्रेशर ठीक कंट्रोल नहीं, उनकी चर्बी भी बढ़ जाती है और उनको हार्ट अटैक के
0: चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: अब देखिए मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ ब्रेन पे देता हूँ
0: जी,
1: देता हूँ किडनी पे, तीसरी में देता हूँ हार्ट पे
0: जी,
1: क्योंकि हार्ट में ट्रीटमेंट में बहुत प्रोग्रेस होती है, लेकिन किडनी का ऐसा है कि फेल हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते, डायलिसिस पे जाते हैं या ट्रांसप्लांट, अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो या तो उसी वक्त पानी से रहलत कर लेगा
0: या पैरालिसिस हो जाएगा।
1: प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जिसकी बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इट वेल, तीनों में बुरा असर डाल देता है हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर।
0: तो अपनी कश्मीरी आवाम को क्या कहना चाहेंगे, खासकर नौजवानों को जो जंक फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बाहर, और घर का खाना मुझे लगता है कि कम ही वो पसंद करते हैं।
1: किचन हमने भुला दिया, किचन सारा सारी फैमिली बैठ के इकट्ठे खा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट फूड है। आजकल पता भी नहीं बाहर क्या मिलता है, उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं
0: जी,
1: जितना ज्यादा हो सके घर का ही खाना खाना है। जंक फूड में तो साल्ट बहुत हाई होता है,
0: सही,
1: वो ठीक नहीं है सेहत के लिए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 20 साल की उम्र का जब कोई बंदा हो जाए उसको बेसलाइन सर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एन ECG और एक ब्लड प्रेशर चेकअप, ताकि एक बेसलाइन उनके पास रहे, क्योंकि आजकल अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कभी किसी का पुराना पता भी नहीं होता उससे पहले कुछ था उसको नहीं था
0: जी।
1: ये मेरी गुजारिश है।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
1: जी जी शुक्रिया।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन।

0: दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
0: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: आदाब, ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:00 सबज खबरन हंद बुलेटिन हूँ रऊफ अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कर मुंबई में मुनद माटी सम्मान समारोह में शिरकत, उस पूर्वांचल के फन सकाफत जियाफत तो सियाहत मल अत मौक पर ख्याल बाबत करान वन मनोज सिन्हान जे पूर्वांचल तो महाराष्ट्र दरमियान से तवारीखी सकाफती तो रूहानी रिश्त वारिया सें। अत मौक पर कर तमो पूर्वांचल से तोलुक थवन वाजन केंसन जी यजत शख्सियतन हंद यजत अफजई त। दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान सियाहती मकाम पहलगाम आड़ू जाये पेश आमतिस अकिस ट्रैफिक हादसे में गुजरात किन दोन सालानिन हिंदिस मार सपदनस पर दुख बोमुत, तिमो से मुतलक हकीमन असर जदन प्रथ मुमकिन मदद फराहम करनुक हिदायत दुतमुत। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत जायदस अकिस रेतस दौरान जम्मू कश्मीर किन मुख्तलिफ जिलन में पदयात्राए कड़ना आमत, इमन अंदर लछवाद लूको शिरकत करित नशस खिलाफ पन्नी सेक आजमच बाबत कर। अत दौरान सिविल तो पुलिस इंतजामिया के अहतमाम मुख्तलिफ सरगर्मी त जारी, ये तहत न सिर्फ स्मगलर रटने बल्कि नशावर फसल तबाह कर बापत वसी मुहिम तुरू कर आम। अमे हवाल पेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
2: आज पूरे दुनिया में टेली मवासलात तो इतलाती सोसाइटी हुन दुह मनावन अजक दौर इंटरनेट तो इतलाती क्यों मवासलात टेक्नोलॉजी हिंदन तिमन इम्कान हिंदिस बारस में जानकारी फहलावन इवान यम मुआशर बापत तो मुल्कन हिंद खतर फायदेमंद छे। भारत तो अत मौक पर पन्ने तमें डिजिटल सफर जश्न मनावान यम के बदौलत न सिर्फ ये सैन शहरी बाख्तियार बनेमित बल्कि डिजिटल शोबस मेस अकिस आलमी रहनुमा सिंद रंग वतलान। आज हाइपर टेंशन बेमारी मुतलिक बेदारी हुन ते आलमी दो, हत मौक पर अमे बेमारी निश बचने किस बारस में एहतियती तदबीरन तो इलाज किस तरीक़ार व्यसन कर तबी माहिरो वोनमुत पूरे दुनिया में हाइपर टेंशन यानि खूनुक दबाव बढ़ने किन मरीजन में लगातार हुरर सपदान, वो गो तर्ज जिंदगी में बदलाव अन्न सत हे अमे बेमारी निश बचने यथ। जम्मू कश्मीर किन डिग्री कॉलेजन में चौन वर्यन हिंदे अंडर ग्रेजुएट कोर्सन तो पांचन वर्यन हिंदे इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम हिंदे बापत दाखिलुक अमल जारी। जम्मू कश्मीरिक डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीरन वन अमे हवाल आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत कर।
4: मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा रहती हैं, जैसे इससे प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेस रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें, तो उसमें

0: में लगातार इजाफा हो रहा है, ताहम तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। जैसे इससे प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेस रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें। तो उसमें टिकटिंग का सिस्टम है, एक टिकट जनरेट होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टिकट बैक एंड पे उसका रेजोल्यूशन होगा और वो उसका क्लोजर होगा। तो स्टूडेंट अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, उनको एक टिकट नंबर मिलेगा, फिर उसका रेजोल्यूशन उनको मिलेगा, वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट है।
0: फौज में भर्ती के लिए ऑनलाइन मुश्तरक दाखिला इम्तिहान इस साल 1 से 12 जून तक लिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए इंदराज कराया है। मुतलका उम्मीदवार इसी पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इस पोर्टल पर सैंपल सवालनामे भी दस्तियाब हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अमले और तालिबे इल्मों ने स्टूडेंट रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत इख्तियार करदा कई देहात के दर्जनों स्कूलों का दौरा किया। इस तरह के दौरों का मकसद खेत खलियान से बाहर निकलकर तालीमी इदारों में समाजी तब्दीली के बीज बोना है, ताकि तालिबे इल्मों को इस समाजी तब्दीली के मुहर्रिक बनाया जा सके। इदारे के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने भी कई स्कूलों का दौरा करके कहा है कि यह पहल डेटा जमा करने के साथ साथ नई पीढ़ी में साइंसी और माहौलियाती जानकारी पैदा करने में मुआविन साबित हो रही है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मरकजी मुलजिम पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। तहकीकाती एजेंसी ने अदालत को बताया है कि मजीद तफ्तीश के लिए दोनों को कौमी दारुलहुकूमत से बाहर ले जाना जरूरी है, ताकि इस बड़ी साजिश के सभी पहलुओं की जांच करना मुमकिन बन सके। मालूम हुआ है कि कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और वह एनटीए की तरफ से इम्तिहानी अमल में शामिल था, लिहाजा उसे सवाल नामों तक रसाई हासिल थी। दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
3: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
4: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी। सुनते रहिए हमारी नशरियात
2: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
5: पयाम सुब मॉर्निंग शो जारी, तो पयाम सुब किस अज किस मॉर्निंग शोस मज़ परवेज मीर तह सी
6: सकीना परवेज। आज आथवार, आथवार चूंकि सारी गरे आसान, तो सन हमेशा वैसे कोशिश रोजान कि सान बोजन वाले दिल रंजनाओ तथ मैं उर्दू बात पेश कर, गजल पेश कर, फिल्मी बात पेश कर, इनफॉर्मेशन इन शेयर कर, मगर ये
5: मौसीकी साजिच मुनफरद अलग लहज अलग लाई यह सकीना जी कशर लाई सो लाई इस बूझती जन दिल मोहित नवान यह लाई सैनिस दिलस तरत ग तेज अत लाई सोन तहजीब कल्चर तो सोन तमदन वाबस्त।
6: बिल्कुल परवेज सही वो तय सान आर्काइव मे तिथ बिसार बात मौजूद यम सरी वादन हिंदिस तहजीबस तमदनस रस रही।
5: बिल्कुल
6: ये तम बात बोजान या बात कनन गान सू प्रोन कल्चर जन तछन ब्रोह कतगीर हू कर।
5: बिल्कुल
6: बुजुर्ग सन वन प्रोग्राम बोजान करो अखा बता युथ पेश जिक्र कि कह प्रो बात बोजान सोर जन याद पे यह लुक बात वमीद करान बोजन वाले पसंद कैलाश मीरा तो सत्यन आवाज मे बात तो पत् करो बे कत।

0: 17 मई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
0: आज के शुमारे में भी शामिल होंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हज़्ब मामूल इदारिया से।
1: जम्मू कश्मीर बैंक, हर फर्द की हर जरूरत का बैंक। आपकी ख्वाहिशों, उम्मीदों, उमंगों, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का बैंक, जहां पैसे को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत की निगाह से देखा जाता है, जहां खिदमत को फरीजा समझकर आम लोगों के लिए राहत, सुकून, आराम, खुशहाली और तरक्की के सामान फराहम किए जाते हैं। हमारा मिशन नकदी लेन देन से परे आपकी परेशानियों का अजाला और मसाइल के हल में मुजमिर है। नकदी लेन देन के लिए बदलते वक्त में पैसे की जगह डिजिटल सॉल्यूशंस ने ली है, जिससे पैसे की चोरी के खदशात खत्म करने में आपके बैंक ने आपकी रहनुमाई की। लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। हमारे घरों में हमारी माओ बहनों का सोना और जायदाद मौजूद होता है, जिससे हमेशा ये खतरा लाहक होता है कि किसी की बुरी निगाह इस पे ना पड़े और मौका पाते ही वो चोरी या डाका डालकर हमें गमों के अंधेरे में ना धकेल दे। अगर हमारी कोई कीमती चीज खो भी जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना चोरी हो जाने पर होता है। आप लाखों करोड़ों का कीमती सामान, जरूरी कागजात और जेवरात वगैरह कैसे घर में महफूज समझते हैं? हमारी एक पल की बेहिसी एक साल की चौकसी को पल में हमारी बेबसी बना सकती है। खतरा मोल न लें, इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी को बरतें। जेके बैंक से राबता करें। हमारे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स अक्सर ब्रांचेस में मौजूद हैं। अपनी नजदीकी ब्रांच जाकर लॉकर के बारे में जानकारी हासिल करें। अपना कीमती सामान हमारे महफूज लॉकर्स में रखकर मामूली रकम के इवज बेफिक्र हो जाएं। घूमने जाना हो, दावत पर जाना हो या अपने रोजगार की खातिर नौकरी या कारोबार के लिए घर से बाहर हो तो सुकून से जाएं। हम आपकी खुशियों को बेखलल बनाने के लिए आपकी फिक्र और अंदेशों के खरीदार हैं। आएं, इस सहूलियत का फायदा उठाएं, चिंता मुक्त और निश्चिंत हो जाएं।
0: दोस्तों, अपने ब्रांच और एटीएम नेटवर्क के फैलाव पर कारबंद जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों राजौरी और नई दिल्ली में दो अहम मकामात पर नए एटीएम नस्ब किए, जिनसे बैंक के एटीएम की मजमूई तादाद 1443 तक पहुँच गई है। राजौरी में रकीबान के मकाम पर नस्ब नए एटीएम को जोनल

0: रजौरी राजीव डिगरा ने मौजूद शहरियों की मौजूदगी में इनॉग्रेट किया, जो कि एक अहम देरीना अवामी मांग थी। इस मौके पर बोलते हुए जोनल हेड मौसूफ ने कहा कि बैंक एक मरबूत हिकमत अमली के तहत दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में बैंकिंग सहूलियात पहुंचाने के लिए वादाबंद है, ताकि अवामी सहूलियात और आसान बैंकिंग हर शहरी को उसकी नजदीक तरीन जगह पर मयसर कराई जा सके। उन्होंने कहा कि इस नए एटीएम की बदौलत रकीबान के लोगों को 2400 घंटे बेसिक बैंकिंग सहूलियात मैसर होंगी, जिसे अवामी हलकों ने काफी सराहा है। वाजह रहे कि राजौरी जोन में ये बैंक का 86वां एटीएम है। राजौरी के दुश्वार गुजार इलाके के साथ साथ बैंक ने कौमी राजधानी नई दिल्ली के एक अहम मशहूर मारूफ अस्पताल ILBS के अंदर भी एक ATM नस्ब करके इसे अवाम के लिए खोल दिया। इस ATM का रस्मी इफ्तिताह देश के जाने माने सर्जन और ILBS नई दिल्ली के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने बैंक के जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया रियाज अहमद वानी, जोनल हेड दिल्ली रोजी टिकू और दीगर अहम शख्सियात के बीच अंजाम दिया। डॉक्टर सरीन के हाथों इफ्तिताह होने वाले इस ATM से अस्पताल आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी होगी और वसंत कुंज इलाके में रहने वालों को भी इस ATM से फायदा होगा। डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया और बैंक के जनरल मैनेजर रियाज अहमद वानी ने इस इकदाम को बैंक की रेस्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंस को बढ़ाने के हवाले से एक अहम संगमील करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में बैंक अहम तिजारती और शहरी इलाकों में अपनी प्रेजेंस को मजीद फाल बनाएगा और ये कि रेस्ट ऑफ इंडिया में बैंक के रुतबे को मजीद तकवीत मिलेगी।
1: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
2: दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और बैंकिंग का शोबा इस तब्दीली में पेश पेश है। रिवायती बैंकिंग के तरीके अब बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रहे हैं और सार्फीन भी अब ब्रांच विजिट्स के बजाय मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को आसान बनाने के साथ साथ अपना वक्त भी बचाते हैं, जो दूसरे अहम कामों में सर्व किया जा सकता है। लेकिन जहां इस बदलाव से हमारे लिए आसानियां पैदा हुई हैं, वहीं हम पर इजाफी जिम्मेदारियां भी आन पड़ी हैं। हालांकि बैंकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आला तरीन निज़ाम राइज है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के जरिए इस निज़ाम को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। ताहम चंद गुजारिशात पर अमल करके हम इस अमल को मजीद महफूज बना सकते हैं। हम बारहा गुजारिश करते हैं कि अपना पासवर्ड, OTP, पिन या CVV किसी के साथ शेयर ना करें, वो चाहे अपना हो या पराया। कोई भी बैंक फोन करके आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। अगर आपको भी कभी ऐसी कॉल मौसूल हो तो इसे जल्द रिपोर्ट करें। अपने पासवर्ड जरा हटकर सेट करें और इनमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अपना DOB, फोन नंबर, अपने प्यारे का नाम वगैरह पासवर्ड में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आसानी से गेस किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग निहायत ही आसान, तेज और महफूज बैंकिंग का तरीका है, लेकिन इसका एक अहम असूल है, वो ये कि अपने अलावा किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारे पास आदाद और शुमार मौजूद है उन वाकयात का जहां घर के बच्चों, दोस्तों, मुलाजमीन या आपके जानकारों ने ही आपके साथ फ्रॉड करके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। एक और गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि ATM या क्रेडिट कार्ड के पीछे अपना पिन नंबर लिखना। ये ऐसी ही बात है कि आप पेट्रोल और माचिस एक साथ रखते हैं, जिससे कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। J&K बैंक का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी निज़ाम मुल्क के बेहतरीन बैंक्स में शुमार किया जाता है और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि बैंक के सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ग्राहक का नुकसान हुआ हो। इसीलिए हम बारहा गुजारिश करते हैं कि जानकार बनिए और अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंस को हमारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम की बदौलत आसान और महफूज बनाए। J&K बैंक के बेशतर बैंकिंग प्रोसेस अब मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुके हैं, लिहाजा हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बैंक की हर सलाह पर अमल करके नुकसान से बचिए। हमारा मकसद आपके पैसे को महफूज बनाना।

0: आना है जो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं। हमें इसकी फिक्र भी है और कद्र भी।
1: दोस्तों, कार आजकल की दुनिया में एक जरूरत बन चुकी है और आए दिन कार बनाने वाली कंपनियां नई गाड़ियां बाजार में लाती हैं और बैंक्स अपने ग्राहकों के लिए कार लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करके इस खरीदारी को काबिले हुसूल बनाते हैं। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले आम लोगों की हो तो उनके लिए बैंकिंग मतलब जेके बैंक और कार लोन मतलब J&K बैंक कार लोन, जो बहुत ही किफायती इंटरेस्ट रेट्स पर बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। तभी तो यहाँ के कार लोन मार्केट में जेके बैंक के कार लोन को ग्राहकों की पहली पसंद कहा जाता है। यही नहीं, बैंक तमाम कार डीलर्स के साथ भी वक्तन फवक्तन राबते में रहता है ताकि आपसी सलाह मशवरे से प्रोडक्ट्स में बदलाव लाया जा सके और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिलाए जा सके। इस हवाले से कश्मीर के कार डीलर्स के साथ बैंक की आला कयादत की एक मीटिंग गुज़श्ता दिनों बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत बैंक के जनरल मैनेजर रिटेल एडवांसेस राकेश मगोत्रा ने की और जिसमें मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, टोयोटा, किया, एमजी, रेनॉल्ट, वोक्सवागन, टाटा और स्कोडा जैसी नामी ग्रामी कार मैन्युफैक्चरर्स के कश्मीर डीलर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ग्राहकों के मुख्तलिफ मसाइल और हैसल फ्री लोन के हवाले से मुश्तरका इकदामात पर गौरखोज किया गया। जेके बैंक का कार लोन जो महज 7.70% इंटरेस्ट रेट से शुरू होकर 84 आसान किस्तों में वाजिबुल अदा होता है के हवाले से कार डीलर्स ने इत्मीनान का इजहार किया। जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा ने इस मौके पर बाहमी इश्तराक की मजबूती के हवाले से मजीद अहम इकदामात का ऐलान किया, जिनसे आम ग्राहकों के लिए कार लेना बहुत ही आसान बन जाएगा, जबकि कार डीलर्स ने बैंक के मुसलसल साथ और हैंड होल्डिंग के लिए मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया।
2: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मैसर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं।
3: सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर अवकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं।
0: चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है।
3: इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीकेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोर्थ शुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिना किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है।
0: वाजे रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तियाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें।
4: दोस्तों, एक अंग्रेजी कहावत है, ले बाय समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ बचाना जरूर चाहिए। इंसान की जिंदगी जिस कदर बेहतर और खूबसूरत है, उसी कदर इसकी बेसबाती और वक्त के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं बता सकता, इसीलिए तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त का सामना करने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां अभी से करनी चाहिए। वो वक्त जो एक आजमाइश की सूरत या एक मौका लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाए। बचत की आदत एक आदमी को आने वाले अच्छे और बुरे वक्त में सहारा देती है। वक्त बुरा हो तो उससे निकलने में मदद मिलती है और अच्छा हो तो उसकी खुशियों को दुबला करने में मावन साबित होती है। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग अकाउंट में या किसी दूसरी स्कीमों में इन्वेस्ट करें, तो वो पैसा ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि जमा होकर एक बड़ी रकम भी बनेगा और उस पर इजाफी 4 पैसे बैंक भी अदा करेगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आसानी से आप ये पैसा हासिल कर सकते हैं। वक्त के तकाजे पूछकर नहीं आते। घर के किसी फर्द की खुदा नख्वास्ता बीमारी

0: बच्चे का एडमिशन, शादी ब्याह, नई गाड़ी, नई जमीन या किसी दूसरे खैर शर में आपको पैसे की जरूरत हो तो ये बचत आपके काम आएगी। जेके बैंक के एमपेज लाइट प्लस से आप नहायत ही मामूली रकम का भी एफडी बना सकते हैं जो वक्त जरूरत आपके काम आएगा। लिहाजा समझदारी और दूरअंदेशी का मुजाहरा कीजिए और आज ही से बचत करना शुरू कीजिए।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
2: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे जेएनके बैंक के माली साल 2025-26 की नेट प्रॉफिट फिगर पूछी थी।
1: इस सवाल का सही जवाब है 2363 करोड़।
2: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से शालबू गांदरबल के जान मोहम्मद खांडे, जम्मू डिवीजन से मुगल मैदान किश्तवाड़ के संदीप ठाकुर और लद्दाख से जानसकार के फुनसुक स्तोबदन।
2: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
2: दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों दो नए एटीएम्स इनॉग्रेट करने के बाद जेएनके बैंक के एटीएम्स की मजमुई तादाद कितनी हो गई है।
1: आपके जवाब हमें 23 मई शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। वजह रहे कि आपके मेल में आपका नाम, पता, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखा हो।
2: तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
1: 1800-890-2122
2: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
1: www.jkb.bank.in।
3: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जेएनके बैंक।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय इन सुबह के 10 बज चुके हैं।
9: रेडियो साथी,
10: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
9: आपका हम सफर। रेडियो

0: गलत मालूमात हमारे जहन को मुतासिर कर सकती है।
1: और सबसे अहम बात, हम ये भी सीखेंगे कि इन सब खतरात से बचा कैसे जाए।
0: रिफत
1: जी,
0: अगर हम रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा शिकायत किस चीज की आ रही है?
1: सबसे ज्यादा मसला साइबर फ्रॉड का है। मिसाल के तौर पर, श्रीनगर के एक कॉलेज के तालब इल्म को एक मैसेज आया कि आपने लॉटरी जीती है, फौरन लिंक पर क्लिक करें। उसने बगैर सोचे समझे क्लिक किया और चंद मिनटों में उसके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए।
0: यह सिर्फ एक वाकया नहीं है, बारामूला और अनंतनाग में भी कई नौजवानों को ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, खासतौर पर UPI के जरिए रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन भेजकर उन्हें धोखा दिया जाता है।
1: अक्सर नौजवान जज्बात में आकर जल्दी में फैसला कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई सरकारी स्कीम है या कोई इनाम, लेकिन हकीकत में ये एक जाल होता है।
2: मैंने सोचा था ये एक मौका है, मगर सब कुछ खो दिया।
0: इसीलिए जरूरी है कि हम कुछ बुनियादी बातें हमेशा याद रखें। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपसे फोन या मैसेज पर OTP नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाएं कि ये फ्रॉड है।
1: और किसी भी नामालूम लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें। एक लम्हे की गलती बड़ा नुकसान बन सकती है।
0: दरअसल आजकल ज्यादातर साइबर फ्रॉड सिर्फ एक लिंक के जरिए ही होता है। ये लिंक्स बजाहिर बहुत मासूम लगते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म, ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें या आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करें। खासतौर पर श्रीनगर और बड़गाम के तलबा को अक्सर ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मौसूल होते हैं, जिनमें लिखा होता है कि आखिरी तारीख आज है, फौरन क्लिक करें।
1: यही वो लम्हा होता है जहां धोखा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम सोचने का वक्त ही नहीं लेते। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपको एक जाली वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो बिल्कुल असली जैसी लगती है, या फिर आपके फोन में खुफिया तरीके से नुकसानदेह सॉफ्टवेयर दाखिल हो जाता है।
0: मिसाल के तौर पर अनंतनाग के एक तालिब इल्म ने एक लिंक खोला जो बजाहिर एक सरकारी स्कीम का फॉर्म था। उसने अपनी तफसीलात दर्ज की और चंद घंटों बाद उसके बैंक अकाउंट से रकम निकल गई। उसे बाद में मालूम हुआ कि वो वेबसाइट जाली थी।
1: इसी तरह बारामुल्ला और कुपवाड़ा में नौजवानों को ऐसे लिंक्स भेजे जाते हैं जिनमें कहा जाता है आपकी पार्सल डिलीवरी रुकी हुई है, यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपसे OTP या कार्ड की मालूमात मांगी जाती है।
0: लिहाजा हमेशा याद रखें, अगर कोई लिंक आपको गैर मुतवक्के तौर पर मिले, खासतौर पर किसी अनजान नंबर या ID से, तो फौरन उस पर क्लिक ना करें। पहले देखें कि भेजने वाला कौन है, लिंक का एड्रेस कैसा है और क्या ये वाकई किसी मोतबर इदारे से है।
1: अगर जरा सा भी शक हो तो बेहतर यही है कि इसे नजरअंदाज करें, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में एहतियात ही सबसे बड़ी हिफाजत है।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: अब बात करते हैं एक और अहम मसले की, जाली नौकरियों की।
0: जी हाँ, खास तौर पर पुलवामा, कुलगाम और शुपयां के नौजवानों को अक्सर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब के पैगामात मिलते हैं। इनमें वादा किया जाता है कि रोजाना हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं,
2: लेकिन उसके बाद क्या होता है?
0: पहले कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन फीस दें, फिर कहा जाता है कि ट्रेनिंग फीस दें, और जैसे ही पैसे भेजे जाते हैं सामने वाला गायब हो जाता है।
2: शोपियान के एक नौजवान का वाकया याद आता है जिसने बड़ी उम्मीद के साथ पैसे भेजे, मगर न नौकरी मिली और न ही रकम वापस आई।
0: ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी मोतबर कंपनी नौकरी देने के लिए पहले पैसे नहीं मांगती, और सरकारी नौकरियों की मालूमात हमेशा सरकारी वेबसाइट्स पर ही होती हैं, न कि सोशल मीडिया के मैसेजेस में।
2: अब एक और हसास मौजू, सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात।
0: गांदरबल और कफवाड़ा के नौजवान अक्सर ऐसी वीडियोस देखते हैं जो बहुत जज्बाती होती हैं। उन्हें फौरन शेयर कर दिया जाता है बगैर ये जाने कि वो सच है या नहीं।
3: ये वीडियो कश्मीर की है, फौरन शेयर करो,
2: लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वीडियो किसी और मुल्क की थी या कई साल पुरानी थी।
0: ऐसी मालूमात न सिर्फ हमें गुमराह करती हैं, बल्कि मुआशरे में गलत फहमियां भी पैदा करती हैं। इसलिए हर खबर को कम से कम 2 मोतबर जराया से चेक करना चाहिए।
2: और याद रखें, जज्बाती मवाद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो हमें सोचने का मौका नहीं देता।
0: अब बात करते हैं सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल की। बांदीपोरा

0: बड़गाम के तलबा दिन का काफी वक्त ऑनलाइन गुजारते हैं, जो कि आज के दौर में आम बात है।
1: लेकिन असल सवाल यह है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम इसे सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं?
0: जिम्मेदार इस्तेमाल का मतलब है कि हम अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें और अपनी जाती मालूमात जैसे फोन नंबर, एड्रेस या बैंक की तफसीलात शेयर न करें।
1: और अगर कोई अनजान शख्स दोस्ती की दरख्वास्त भेजे तो फौरन कबूल न करें। पहले उसकी प्रोफाइल देखें, अगर शक हो तो ब्लॉक करें।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: वाह, ये नौकरी तो बहुत अच्छी लग रही है। बस 1000 रुपए फीस। अरे मेरा पैसा कहाँ गया? नंबर भी बंद है,

0: मैंने कहा था ना, तहकीक करो, हर चीज पे फौरन यकीन नहीं करना चाहिए।
1: ये एक आम कहानी है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है।
2: अब हम अपने प्रोग्राम के एक नहायत अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक साइबर सिक्योरिटी माहिर, जो हमें आसान और अमली तरीकों से बताएंगे कि हम खुद को ऑनलाइन खतरात से कैसे महफूज रख सकते हैं।
3: जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में ऑनलाइन महफूज रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और एहतियात की जरूरत है। खासतौर पर हमारे नौजवान, चाहे वो श्रीनगर के कॉलेज के तलबा हों या कुपवाड़ा या भानीपुरा के स्कूलों के तालिबे इल्म हों, सब कुछ बुनियादी बातें हैं जो सीखनी जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है मजबूत पासवर्ड। अक्सर लोग अपना पासवर्ड बहुत आसान रखते हैं, जैसे अपना नाम, तारीख पैदाइश या 1 2 3 4 5 6 वगैरह। ये बहुत खतरनाक है। एक अच्छा पासवर्ड वो होता है जिसमें बड़े और छोटे हरूफ, नंबर्स और खास अलामत शामिल हों। मिसाल के तौर पर अगर आप कश्मीर लिखते हैं तो इसे मजबूत या मजीद महफूज बनाने के लिए k@shmi की जगह 1 r और फिर #2026 जैसा बना सकते हैं। दूसरी अहम बात, 2-factor authentication। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने अकाउंट में लॉग इन करें तो पासवर्ड के अलावा एक और तस्दीक भी हो, जैसे कि आपके मोबाइल पर एक कोड आना। उससे अगर किसी को आपका पासवर्ड मालूम भी हो जाए तब भी वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता। तीसरी बात, अपने मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें। बहुत से लोग अपडेट्स को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये अपडेट्स दरअसल सिक्योरिटी के लिए होती हैं। अगर आप उन्हें इंस्टॉल नहीं करते तो आपका डिवाइस कमज़ोर हो सकता है और हैकर्स के लिए आसान हदफ बन सकता है। चौथी अहम बात यह है कि ऐप्स सिर्फ मोतबर ज़राए से इंस्टॉल करें। कुछ नौजवान इंटरनेट से फ्री गेम्स या मोड ऐप्स डाउनलोड करते हैं, खासतौर पर गांधरबल पुलवामा के तलबा में ये रुझान देखा जा रहा है, लेकिन इन ऐप्स में अक्सर वायरस या मॉलवेयर होता है जो आपका डेटा चुरा सकता है। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे मुस्तनद प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स इंस्टॉल करें। पांचवी बात, अगर आपको कोई मशकूक कॉल, मैसेज या ईमेल मिले, खासतौर पर जिसमें जल्दी करने को कहा जाए, तो फौरन मुहतात हो जाएं। साइबर मुजरिम अक्सर यही हरबा इस्तेमाल करते हैं कि आपको डराकर या जल्दी में डालकर गलत फैसला करवाते हैं। और आखिर में, अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो खामोश हरगिज न रहें, फौरन अपने बैंक से राबता करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन या पुलिस को इतला दें। जितना जल्दी आप कार्रवाई करेंगे उतना ही नुकसान कम हो सकता है।
1: बहुत ही अहम और मुफीद बातें आपने शेयर की। वाकई अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बड़े खतरात से बच सकते हैं।
2: नौजवानों के लिए ये पैगाम बहुत वाज़ह है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें मगर समझदारी और जिम्मेदारी के साथ।
1: अगर आपको कोई मशकूक सरगर्मी नजर आए तो फौरन मुतलिका इदारे को इत्तला दें।

0: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
1: आपका हम सफर,
0: रेडियो साथी।
2: सुपंसर प्रोग्राम रेडियो साथी आप सुन रहे थे।

0: आखिर में चंद आसान बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, जाली नौकरियों से बचें और हर खबर की तस्दीक करें।
1: नौजवानों, आप ही कश्मीर का मुस्तकबिल हैं। आपकी समझदारी न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे माशरे को महफूज रख सकती है।
0: इसी पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। हर एतवार सुना करें रेडियो साथी, दिल से दिल तक।
1: रेडियो साथी।

समय आपको याद दिला दें, रात 9:30 पर आकाशवाणी श्रीनगर का पॉडकास्ट नशर होगा। मेहमान हैं ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़, इनसे हम कलाम है प्रोग्राम के मेज़बान तबरेज़ हुसैन मदनी।

0: आदाब।
1: आदाब, कैसे हैं आप सब?
0: जी बच्चों, ठीक है, आप कैसी हैं?
1: मैं नहीं कह सकती हूँ मैं टिप टॉप हूँ, क्योंकि आज आपको मैं कहती रहती हूँ ना, खांसी है, नज़ला है, आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, वो पता है क्यों है ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था। और आपने देखा होगा कि दरख्तों का जो रुआ उड़ता है उससे इन्फेक्शंस जो हैं, पिछले एक प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि इन्फेक्शंस फैलती हैं, और आप सभी को क्या करना है, मास्क पहन के रखना है। और इस वक्त माशाल्लाह जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, और हमारे घर बैठे जो बच्चे हैं वो भी खैर व आफियत से होंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक नई मेहमान से। क्या नाम है आपका?
2: सुहाना शफीक।
1: सुहाना शफीक जी, सुहाना क्या सुनाएंगी आप?
2: आज मैं सुनाऊंगी इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में, यानी फर्स्ट एड।
1: जी,
2: कहावत है कि वही गिरता है जो चढ़ता है। बहादुर आदमी गिरने से नहीं डरते, अगर गिरने से चोट लगे तो इसका इलाज लाजमी है। कभी कभी खेलते या कोई काम करते हुए चोट लगती है, ये चोट गहरी भी हो सकती है, इससे खून के जाया होने का खतरा हो सकता है, जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। पास में अगर कोई दवाखाना, अस्पताल या डॉक्टर न हो तो मरीज या जख्मी की फौरी देखभाल ज़रूरी है। इसी देखभाल को इब्तदाई तिबी इमदाद या फर्स्ट एड कहते हैं। किसी को खेलते खेलते या कोई काम करते हुए चोट लगती है, कोई गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा आग से जल जाता है, कोई पानी में डूब जाता है और निकाल दिए जाने पर हम इसे बेहोश पाते हैं, इस तरह के हादसों के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आदमी को अस्पताल पहुंचाया जाता है तब तक इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है या फिर इसकी जान भी जा सकती है। फौरी तिबी इमदाद का मतलब ये नहीं है कि बीमार को डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं, ये इमदाद एहतियात के तौर पर दी जाती है। इस इमदाद के दौरान किसी भी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट में हमसे ही इमदाद नहीं पहुंचा सकते। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए बीमार के सामने भीड़ जमा ना हो, इससे मरीज की हालत ख़राब हो सकती है। शुक्रिया।
1: अच्छा, रेड क्रॉस के बारे में आप में से कोई बच्चा बता सकता है? जी बताएं ज़रा रेड क्रॉस के बारे में।
3: दरअसल इस सोसाइटी का जो इनॉग्रेशन है इसलिए किया गया था क्योंकि जब जंगें होती थी तो जो सोल्जर्स थे, यानी कि जो सिपाही थे, वो शदीद ज़ख्मी हो जाते थे या तो मर जाते थे। अब जो मरने वाला उसे रोक नहीं सकते, लेकिन जो ज़ख्मी है उसे बचाया जा सकता है। तो इंसान चाहे कोई भी हो, इंसानियत का वो थोड़ा सा पहलू उसके अंदर ज़रूर मौजूद होता है। तो जो जंगें हुई, चाहे वो सोवियत जंग थी या चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स थे, हर जंग में ये देखा गया कि जो तड़पते हुए सोल्जर्स हैं उनकी जान बचाई जा सकती है इंसानियत के नाते। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है इनकाद किया गया और इसको यहाँ पे लाया गया, और ताकि उन

0: लोगों की मदद की जा सके जो जंगों में सीवियरिटीज के कारण या इंजरीज के कारण तड़प रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका?
2: नादिमा
1: जी। नादिमा जी, आप नवाटा में रहती हैं?
2: जी
1: जी, बताइए।
2: कश्मीर का एक तारीखी और अहम इलाका श्रीनगर नवहट्टा है, जो अपनी कदीम सकाफत और मजहबी अहमियत के लिए मशहूर है। नवहट्टा की सबसे बड़ी पहचान वहाँ वाकिया तारीखी जामिया मस्जिद है। यह इलाका श्रीनगर के कदीम हिस्से में वाकिया है, जिसे शहर खास डाउनटाउन भी कहा जाता है। नवहट्टा की गलियाँ और इमारतें पुराने ज़माने की अक्कासी करती हैं। यहाँ कदीम तैलीमी इदारे जैसे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल या मदरलैंड हाई स्कूल नवहट्टा में वाकिया है, जो कई दहाइयों से इलाके में तैलीम आम कर रहे हैं। शुक्रिया।
1: बहुत अच्छी बात है नादिमा, आपने अपने इलाके के बारे में कहा जहां आप रहती हैं। इसी तरह से मैं अक्सर सब बच्चों से कहती हूं कि जहां आप रहते हैं, आप अपनी इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो ज़रूर कहा करें आप कहां रहते हैं और उस जगह के बारे में चाहे दो ही लाइनें आप बताएं, लेकिन ज़रूर बताएं ताकि आप एक दूसरे के इलाके के बारे में जान सकें। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम आयशा है।
1: क्या सुनाएंगी?
3: दरख्त। दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्त हमें ऑक्सीजन देता है, दरख्त हमें फल दवाई वगैरह देता है, दरख्त पंछियों का घर है। हमें चाहिए कि हम बहुत सारे दरख्त लगाएं।
1: बहुत से दरख्त लगाएं और पोल्यूशन को हटाएं, कम करें। क्या नाम है आपका?
4: मोहम्मद हफीब भट्ट।
1: मोहम्मद हफीब भट्ट, पहले आप मुझे ये बताएं कि चोट कैसे लगी आपके चेहरे पे, बताइए।
4: साइकिल से।
1: साइकिल से? आप साइकिल चला रहे थे, लेकिन ये भी है ना कि आप अपनी बात को रख सकें, क्योंकि मैं जैसे कि आप सभी बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि अपने घर से आना और यहाँ आके हमें नज़्म कहानी चुटकुला सुनाना बड़ी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों। गाड़ी कभी हम ड्राइव करते हैं तो अचानक किसी गली से फौरन बच्चा साइकिल पे बाहर आ जाता है मेन रोड पे, तो अगर आपने साइकिल चलानी भी है पहले बखूबी उसको चलाना सीखें और उसके बाद जब तक आप थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं सड़कों पे इस तरह से साइकिल लेके ना आए। अपने पिछले प्रोग्राम में हमने रोड सेफ्टी की बात की थी, तो वो सिर्फ गाड़ियों के बारे में और बाइक्स के बारे में ही नहीं है, स्कूटीज़ के बारे में नहीं है, बल्कि साइकिल भी उसमें आता है, क्योंकि साइकिल जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप साइकिल चलाते हैं उससे साइकिल का जब हम पैडल मारते हैं तो हमारा पूरे जिस्म का खून जो है वो दौरा करता है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और बच्चे जो हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो बच्चे साइकिल चलाते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि दो पहियों पे आप स्टेबल करते हैं ना साइकिल को, एक बैलेंस करते हैं। तो अल्लाह करे कि जिस तरह से आप अपनी स्कूटी को, अपनी साइकिल को बैलेंस करते हैं, इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को भी बैलेंस करें। सुनाएं, क्या सुनाना चाहते हैं?
4: हमद।
1: हमद, हमद जी।
4: ए दो जहाँ के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज़ से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरी हर फैज़ से है सर सब्ज़ डाली डाली, पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाई, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ये खाक आग पानी है तेरी मेहरबानी, ऊंचे पहाड़ चुप है देकर तेरी निशानी, है दम कदम से तेरी दरियाओं में रवानी, है फैज़ आम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया, जिस जहां भी हमने ढूंढा तेरा निशान पाया, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। शुक्रिया।
1: लेकिन जिस तरह से हम अपने सुनने वालों को और अपने यहाँ बैठे दोस्तों को अलग अलग दिन के हवाले से कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो 17 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसके बारे में आज हमें रक्षंदा बताएंगी कि किस तरह से ये दिन मनाया जाता है और किस तरह से इस दिन की अहमियत है और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनके पास।
5: इस दिन का असल मकसद ये है कि हम समझ सकें कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऐश नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये वो जरिया है जो मुल्कों को जोड़ता है, शहरों को करीब लाता है और इंसानियत को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर देता है। آج کے دور میں ٹیلی کمیونیکیشنز نے ہر سیکٹر کو بدل دیا ہے، جیسے تعلیمی سیکٹر،

0: जहां ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरीज ने स्टूडेंट्स को दुनिया भर के इल्म तक पहुंचा दिया है। हेल्थ सेक्टर, जिसमें टेलीमेडिसिन और रिमोट डायग्नोस्टिक्स ने दूर दराज इलाकों के मरीजों को डॉक्टर्स से जोड़ दिया है। तिजारत, जहां ई कॉमर्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने हर इंसान को ग्लोबल बाजार तक एक्सेस दी है। और हुकूमत, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस और ई सर्विसेज ने ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। मगर साथ ही एक चैलेंज भी है, डिजिटल डिवाइड। हर इंसान के पास बराबर एक्सेस नहीं है। गांव के बच्चे अभी भी इंटरनेट के लिए तरसते हैं और गरीब तबकात के लिए स्मार्टफोन्स और कनेक्टिविटी एक ख्वाब है। ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ चंद लोगों तक महदूद ना हो, बल्कि हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशंस का पैगाम सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि इंसानियत की बराबरी है। जब हर इंसान के पास बराबर एक्सेस होगा, तभी हम असल तरक्की हासिल कर सकेंगे। आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम टेलीकम्युनिकेशंस को सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक सोशल मिशन समझकर आगे बढ़ेंगे। हम अपनी पॉलिसीज, अपनी कंपनीज और अपनी सोसाइटी को इस तरह डिजाइन करेंगे कि हर इंसान कनेक्टेड हो, हर इंसान एम्पावर्ड हो। और याद रखिए, बेहतरीन कम्युनिकेशन ही बेहतरीन समाज की बुनियाद है। जब इंसान एक दूसरे को समझने लगता है, तभी मोहब्बत, अमन और तरक्की का रास्ता खुलता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे का असली पैगाम है कि राब्ते को मजबूत करें, इंसानियत को करीब लाएं और टेक्नोलॉजी को सबके लिए रोशन रास्ता बनाएं। शुक्रिया।
1: रक्षंदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं।
2: देखिए बच्चों, हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि अपने आप में अच्छी आदतें डालना शुरू कर दीजिए, अपने आप को अच्छी आदतों के साथ बनाइए, सजाइए, संवारिए खुद को, क्योंकि जो अच्छी आदतें होती है ना, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको उठने बैठने की तमीज, खाने पीने की तमीज, और कोई बच्चा जैसे इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप चाहे कुछ भी बन जाए मेरा बच्चा, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि पहले आप अच्छे इंसान होने चाहिए। आपके सीने में एक दर्दमंदाना दिल होना चाहिए। जब आपका दर्द भरा दिल होगा ना, तो तभी आप दूसरे के दर्द को महसूस कर सकेंगे। और जब भी जिंदगी में आपको किसी और को एसेस करना है, किसी और को सोचना है कि किस तकलीफ में है, तो खुद को उस जगह रख के सोचिए। जब आप किसी के साथ कोई मामला करते हैं ना, तो आप ये देखिए कि अगर आप इसकी जगह होंगे और आप इस तकलीफ में या इस परेशानी में मुब्तला होंगे, तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि जब हम खुद को किसी दूसरे की जगह रख के देखते हैं, तो तब हमें उसके दर्द का, उसकी तकलीफ का, उसकी परेशानी का एहसास होता है। तो एहसास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आपको अफशान नदीम की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है ऐसी कि जिससे आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपकी नीयत किसी के लिए अच्छा करने की हो, तो उसका सिला भी आपको अच्छा मिलेगा। कहानी छोटी सी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक शख्स रास्ते से जा रहा था, और रास्ते से चलते चलते उसे ऐसा लगा कि एक मेन होल का ढक्कन जो है वो खुला है। तो आदमी ने जब उसमें झांक के देखा कि एक बिल्ली हाथ पांव मार रही है बाहर आने के लिए, लेकिन वो कुछ पानी में भी धंसी हुई है, कुछ उसमें गंदगलाजत भी है जिसमें वो बिल्ली जो है वो धंस गई है। इस आदमी ने इधर उधर देखा कि इस बिल्ली को कैसे बचाया जाए, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आई। और ये शख्स जो है ये औंधे मुंह सड़क पर लेट गया और अपना हाथ बिल्ली की तरफ बढ़ाने लगा। बिल्ली चूंकि पहले ही बहुत परेशान थी, पानी में धंसी हुई थी, गंदगलाजत से लथपथ हुई थी, तो उसने सोचा कि ये शख्स जो है ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस शख्स ने जब हाथ बढ़ाया बिल्ली की तरफ, तो बिल्ली ने इसे नोचना शुरू कर दिया। आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। आदमी ने देखा कि इसके हाथ पे बहुत सी खरोचे लगी हैं। फिर इस आदमी ने एक और कोशिश की ताकि वो बिल्ली को इसमें जो गड्ढे में गिर गई है मेन होल में, उससे ये बाहर निकाल सके। फिर इसने कोशिश की और बिल्ली ने फिर इसका हाथ नोचा।

0: ये शख्स जो है ये मुसलसल कोशिश करता रहा, एक बार दो बार चार बार, कि ये इस बिल्ली को यहां से निकाल सके। यहां तक कि बिल्ली शख्स का जो हाथ है वो भी जख्मी हो गया। एक शख्स इसको देख रहा था कि ये शख्स जो है वो क्या कर रहा है। वो इसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें बिल्ली की फितरत का नहीं पता कि ये तुमसे मदद नहीं लेगी, और जब तुम इसके लिए कुछ करोगे ये तुम्हें नोचना शुरू कर देगी। जाओ अपना कोई काम करो, बिल्ली ही तो है। वो शख्स इसकी तरफ देख रहा था और उससे ये कहा कि बिल्ली ही तो है लेकिन जानदार तो है ना, मैं इस बेजबान की मदद करूंगा और अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। ये शख्स जो है फिर यही कोशिश करने लगा कि इस गटर में से वो बिल्ली को बाहर निकाल सके। अच्छा, वो जो शख्स इसे समझाने के लिए आया था उसने कहा कि जब नहीं समझ रहा है तो क्यों मैं इसको समझाऊं, ठीक है इसकी मर्जी है, ये अपने हाथ को जख्मी करना चाहता है करता रहे। इस शख्स ने फिर लगातार मुसलसल कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि इसके हाथ से खून भी बह रहा था। लेकिन फिर बिल्ली ने शायद सोचा कि ये शख्स मुसलसल कोशिश कर रहा है तो ये मेरा हमदर्द भी हो सकता है। बिल्ली ने अपना हाथ जो है इस शख्स की तरफ बढ़ा दिया और बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत कोशिश के बाद ये शख्स जो है इस बिल्ली को गटर में से निकालने में कामयाब हो गया। जब बिल्ली को इसमें से निकाला और स्पेस ने पास ही एक नल था, पानी डाल के बिल्ली को साफ किया और बिल्ली जो है वो हाँपी हुई थी, परेशान थी, लेकिन खुद से पानी को झाड़ के अपनी राह निकल पड़ी। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरे की जगह खुद को रख के सोचना चाहिए। उस शख्स ने ये सोचा कि अगर इसकी जगह मैं गटर में गिरा होता, मेरी कोई मदद ना करता, तो मैं इस गटर में धस जाता और फिर इससे बाहर नहीं आ सकता, और पानी में और गंदगी गलाजत में डूबने की वजह से मेरी मौत भी हो सकती थी। लेकिन आदमी जो है वो चिल्ला सकता है, किसी को अपनी बात कह सकता है, लेकिन जो बेजबान जानवर है वो तो किसी को कुछ नहीं कह सकता है ना। वो सिर्फ बेचारी म्याऊं म्याऊं ही कर रही थी। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, खुदा ने उसकी जिंदगी रखी थी कि इस आदमी ने उसकी आवाज सुन ली और सकूने कल्ब इस शख्स को मिला क्योंकि इसने उस बिल्ली की जान बचाई। और आपको पता है बच्चों, दिल का जो सुकून है ना वो बहुत जरूरी होता है। आप जब किसी के लिए कोई अच्छा काम करें, आपको इस बात का फिर एहसास रहेगा कि आपने किसी के लिए कुछ कहा, आपको इतना सुकून मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
1: तो चलिए अब एक नगमा सुनते हैं।

0: आप आइए।
1: क्या नाम है आपका?
2: बाइजा।
0: बाइजा, आप पहली बार आई हैं प्रोग्राम में। किस क्लास में पढ़ती हैं बाइजा?
2: एलकेजी। हेलो।
0: एलकेजी में पढ़ती हैं। आपकी आंखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। कुछ कहेंगी नहीं? कैसा, अच्छा ये बताइए कैसा लगा आपको यहाँ आके?
2: अच्छा।
0: अच्छा लगा? फिर
3: अच्छा
0: आएंगी?
3: बहुत अच्छा।
0: फिर आएंगी प्रोग्राम में? जरूर आइए, हम सभी बच्चों के मुंतजर रहते हैं। आप आइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या सुनाएंगी आज?
2: हमने आँखों से
0: नाद शरीफा। जी बिस्मिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, सुनाइए।
2: हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद नबी में मौजूद है।
0: वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अच्छा बच्चों, आप जब स्कूल जाते हैं, हाँ, और आप अपने जब अपनी क्लास में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस बात की होती है, बताइए ज़रा। आप बताइए।
4: मैं अपनी बात करूंगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मेरी दोस्त को देख के होती है कि वो मेरे पास बैठेगी, क्योंकि पूरा दिन मुझे उसके साथ निकालना है। क्लासेस तो चेंज होती रहती हैं।
0: बिल्कुल, अक्सर जो हैं बच्चे वो इसी बात से खुश होते हैं कि अपनी फ्रेंड्स से मिलेंगे। आज 4 अगस्त है और आज का दिन मनाया जाता है
3: जी
0: फ्रेंडशिप डे के हवाले से। तो पहले सभी अपने अपने दोस्तों के लिए, जो भी आपकी सहेलियाँ हैं, आपके दोस्त हैं, उनके लिए जोरदार तालियाँ। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम फलक है। मैं आज कहानी सुनाऊंगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटू जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसने फैसला लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, बचाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक बेलचा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दी। जैसे ही बैल को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा और अचानक शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो हैरानी से सुन हो गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाला हर बेलचा की मिट्टी के साथ वो बैल एक हैरानी हरकत कर रहा था। वो हिल हिल कर उसी मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर उस पर पड़ जाता। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर बेलचे से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीधे ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको हैरान करते हुए वो बैल कुएं की किनारे पर पहुंच गया और कूद कर बाहर आ गया। मोरल, ध्यान रखें, अपने जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: क्यों ना एक सॉन्ग सुना जाए?
5: जी
0: ठीक है।

इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आपको उम्र नूर और शान ज़ुल्कर्नैन अता फरमाए। हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ जाता है। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर हूँ।

नन्हे मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम होनहार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ओजे छप करनेच मोहर कतन कतन अंदरी वाट पन्निस गरस मन्ज ओसित बासिम न पन पान पनन बर्थनिश अलग त बेदून नेर नेरवन वन सेलिमस युवरी नतिय ब्याख तूफान शिबिरिन पाइट
1: क्या शिबिर शिबिर क्या छुम वनन कछुम खरे
0: बारिश बारिश चिरचन सोजमत मोल बनेव नशिन छी लड़क जामत
1: ओदी पेट कोन वनथम ताहरे त्रम आसे हम बगरम सुच चुक मोली
0: तिरे वनस तोरे जित दमय दमय तेके छी मई अष्टरी मामित
1: के कीन जुर जुर क्वचरत निश दागवत क्रेन मासस खबर क्या सम परदेश मत करा
0: क्या रोई तिम छी ठीक वातन पाने चकरना दिल
1: क्या कर दिल कस रात गम नेच विस उचनस छांडुम कमावन वाजे नश बाहरिन तोहन ते उचन में बिचार वड़को तो सु मौसम घर नबर सोजुन कोता छी अन कारबारो कमार खबर क्या आसम तत परदेस मस करा याद पा याद पा यल करतान वछोथन कस्तम कोर सित पकान सते गस आसमान करियो तस उफ्तमा करियोन बिचार आज चुक कोई ही कारनाम बुझत कम डोल दिवान क्या होस मेनिस किस्मत अस लिखित अंदर अंदर छस गला ये लिख केसरे तल पोई वाती तनी विच गची सते गज आसमान हना सोचत वत पापान कस छस वाना अमिस न दुमटस रेंस गसान अमा ये सतार पोत सना गाओ
0: कस वन मे वोत यह दग वह कल अंदरी ललवान गोड़ क्या नेरहम कंसि बान मगर मगर सलीमस ओस थोप दिन छुन जान बह प्रस्तस नोज सो शमन पे तथा गरस अचन क्रेशान ये सो करताम शूब आसे बनेम गोड़ कंस तम कहें सोर वक्त अथस मन तो वक्त किस गिरदाबस मन ये वोत मे कतम आवलिनस मन कोता कल खोर कड़ान खबर कोता कल खोर कड़ान क्या कत हथ सुटा सोरे तुम थो अलग ना ना मत मार्केटस मन ना ना तुम तुज आ क्या वनमो आ बिल्कुल गसन मार्केटस मज इन तरू फिक्र मुंशी जी
2: क्या
0: ये काम ने वातन तथ काम कह नार आसान आमुत बन तो क्या बन कस वात
2: तो दलील क्या
0: दिल पे फोन आमुत जिस ओतर पेटन लाट सूजमुत सह सी कलास माल तो लेबल ए स्पेशल तमो मजम दागदार मेव न मुंशी जी तुम मालूम कारबार किस मामलस मे बेईमानी कर
2: बरा वाले सालंगारी बूजम तम क्या
0: अहन यह लापरवाही सत वा अस वकारत तो कारबार जख
2: तुंद वन दुस्त वह सोरे मोहन पे त्रावन तो नुन जान बह वन पान दफ्तर च काम मज वक्त कड़ान तो आ नजर दिवान
0: सच कह लंज कड़क पानस दफ्तर वा कि बरा ग नजर थ यह सतार तुन लगान दान कुछ मन नेरान दर दर द्रमस तुम पोशकल क्या गोमुत क्या क्या गोमुत सग दाज क्या गोमुत
2: दपान बेगम सबि सग चुम दिन
0: आ प्रस कर पानस मोडे भी सारी अच्छा तुम तो ड्राइवर गाड़ी कटि बागन यमो नजर दिख
2: बेहतर
0: मुंशी जी
2: क्या
0: लड़की क्या हुचित करन
3: یہ حض آسہ

0: ओह माय गॉड, सारा मजा किरकिरा हुआ। नचो पोजवान नस्वार तना पुज
1: अब पुज छेस तम सतवरन येल पोजवान ने छम अच्छा सान तो पोज तम सत येल पाजर पॉइंट पानी नोंच नेरन
0: करान वन ना अच्छे यूत नाराज गसान
1: डट सबस गथा ब नाराज क्या छ वनन
0: अद के छु सोचन
1: अफसोस छुम ये डट सबिन तात पास हो जाक यस ते मन में बैठ छ
0: ओहो मन से छुम तरान फिक्री जे सानी फिल्म मुशने सित क्या गोवत पाछे
1: तिमन प्रश्न नियरन सि लोग सीधा क
0: तेले रस्तो डट सबस थी मेनिस बहनस मे सित कात करन सिरा से करान पाच रोज बहाल
1: मगर ये मन चीजन पर लाइजन डट सबन जाति पाबंदी
0: तुम के सुस तंबे ऐसे करन आओ अमिक मतलब
1: अमिक जिम्मेवार छ अस डट सबस सोस दोंतरन गंटन दोस्तस निज गसन तह दपो यिंदी यन ब्रोठे यम अवस फिल्म विच अद ये माय साइनिन ब्रोठे त पति ये पाजी है ते कोरु
2: बासान चुम क्या ताम गर्मा गर्म बहस चलान बोलाल तु क्या सा सोचान भाभी तु क्या सा चक छाप करित थोर मै फिक्री बोलाल सित ऐसी कोन ड्रामा तो टाट सबन ऐसी बुचमित जवाब दो नोटिस जारी क्या सा फिल्म उसने ऐसे गमत तो क्या दलील छो तो छो खरे
0: दमे सेवन काल यून सु कजे सुगरातस
2: पहलगाम से उन्होंने सख रूद गाड़ी बनी ने पतवन बाकी वैसे रात से रोज वेदी तो अदवा क्या गाव
0: किलिंग ग्राउंड डर सब तो आसमान नखस शाम कच गोय कत क्या जदाई
2: ओहो ये कस न कच मैंने खतर वन जे वस वेसनी छ गमत तिमन प्रस्थी नीर हे अपजानिश मा पे ही जरूरत
3: लो कर लो बात भाभी अगर ताश सब ने इजाजत सस्ताम आसी है खिला सब टीचर आसने बजाय दो दोस गर्चन चौन लबन मंज एक दो तीन चार करा ते करित अगर तिमन वन हो मे चु पहलगाम गसुन तिम दिहन इजाजत
1: येल न दिहन तेल उस ने जरूरी गसुन के
3: भाभी यीत एजुकेटेड ओसी ति छुन तो यम धकियानो सी कथ त्रावान करने
1: यत गरस मंज य तोरन मे वंत फिक्री फरसू क्या गव त नेवर कथ वन नवे रोशनी तो नवे ख्याल मतलब अगर बुजुर्गन दुत मशरत वन सान गर तिंद आसन तो वन जरूरी तेल तह कसूर तो ये गरस मज टर आसन या ना आसन हिशी कथा
3: भाभी तुह तो सा गव नाराज बह टर सबस ज्यादा कथ कर तवे बहरस नु तिम वनस
1: तवे छा गलत फहमी जे अगर टठ सबस तान आ तो सिर्फ टीचर आसने बजाय गर्चन चौन लबन मज कद दो बरत शाम अगर तिम निश बहान करान हिव तह तर पान फिक्र जि टठ सब छ तंग नजर यत बसान
0: ओहो तुम कस पे लोगो दंद वजुन मे सा गो चाय कप अक कलस कर्म दोद रात पे अत फिल्म वुचनस तिकर टठ सब जानन चाय खत ज्यादा
1: गर खुद ना तार टठ सबस चुम जवाब दिन गर छु जान लड़के तो पोर्मुत लूखमुत बंकस मज मैनेजर वन अगर तह कह पर्सनल सिलेक्शन छ वन तो खोचन वर
3: भाभी तुंद ये सत गई मे ये सत हिश नत कुस उस मे ये दिल हाल बाव कथ मे कस
1: हाय हाय दिल दिमत ती हज लड़का क्या चु कर
3: बिजनेस
1: कमियुक
3: फ्रूट तो एम्ब्रॉयडरी ये पाँच सठ बाग पानी कशीर नबर चोर दुकान तो नीव कॉलोनी मज बुंगल
1: अच्छा तन कौन बनो खर बह वन ये कटर सबस पान
3: न भाभी ते कर जेव न
1: क्या
3: तुम कर ये बर्दाश्त
1: इस कथ कटि थान हरगह तुम लोल पोज तो शूज तेल गव टठ सबस बन जान युत रिश्त वा कुन मुश्किल वर यान
0: कम से रिश्त कत सपदान
3: बस तु दफ्तर पेठ
0: अहन सास मे रख चाय कप अख कल दोद टठ सब कत
4: क्या सर टठिस कत पे ठंड लोगमुत
0: कहीं कहीं मे दब कह ग
1: तुम क्या जंगन फश फश दिवान बलियो बलियो बिते मोमा
4: नसा तु तु तु कोता सा पोकस ब
1: बलियो बलियो मे गेस तसला
4: तो चाइनी काथु बुजे तसे मे बक फना

मां नतस्करान केदार शर्मा तुष आकाशवाणी श्रीनगर प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव जहत अरहट आशार्य अठ आठ मीटर यानी अक्सर सखत शुरा किलो हर्जन पे एफ एम अखतरा आशार्य पाँच मेगा हर्ज।

0: तई वन कुइरा
1: वन कोई दाते वन कुइरा
0: वन सुई शिष्टुर मकलगिरगा
1: वन सुई शिष्टुर मकलगिरगा।

0: लुक हुजी लाग नाई मो बरताव,
1: लुक हुजी लाग नाई मो बरताव,
0: युस करी गुंगुल सुई करी क्राव।

0: लुक हुजी लागनाई मोबर काम
1: लुक हुजी लागनाई मोबर जाओ
0: युस करी गुंगुल सुई करी क्राउ

0: Йоймоши басит, йохай дырял, Навдар автай, авдар нал. Йоймоши басит, йохай дырял.
1: سامعین تیسو بوزان کلام سشکرال پیشس کران عبدالرشید حافظ تتہن ساتھی یہ آکاشوانی سری نگر کا پرائمری اسٹیشن ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سامعین دن کے 12 بج رہے ہیں, آئے اب آکاشوانی دلی سے خبریں سماعت کرتے ہیں.
2: یہ आकाशवाणी है. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे. श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे. दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे. दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी. श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है. इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया. उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया.
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए. इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है. इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं.
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है. अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है. इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी. सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है. केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है. यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूनी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है. इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था. आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया. तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर S. वेंकटेश्वर ने

0: वक्त हो रहा है खबरों का, तो आइए आपको खबरें सुनवाते हैं, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी 2027 का अमल आज से दो मराहल में शुरू हो रहा है। पहले मरहले में मकानों का शुमार किया जाएगा और फिर दूसरे मरहले में इंसान आबादी को गिना जाएगा। मकानों के शुमार के सिलसिले में लोगों को आज यानी 17 मई से अज खुद डेटा फराहम करने का मौका दिया जा रहा है और वो ये काम महकमे की वेबसाइट www.sc.census.gov.in पर जाके कर सकते हैं। इसके बाद यकम जून से मुतलका अमला घर घर जाकर भी मकानों का शुमार करेंगे। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी तफसीलात का सही सही अंदराज यकीनी बनाने में भरपूर ताउन करें। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जायद से एक महीने के अरसे के दौरान यूटी के मुख्तलिफ अजला में पद यात्राएं मुनक्किद की जा चुकी हैं, जिनमें लाखों लोगों ने अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनशात के खिलाफ अपने भरपूर अजम का इजहार किया है। इस दौरान सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं, जिनके तहत न सिर्फ स्मगलरों का काफी हयात तंग किया गया है बल्कि नशावर फसलों को तबाह करने के लिए भी जंग छेड़ी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: सनत तजारत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने पुलवामा जिले में नशा मुक्त भारत अभियान की सरगर्मियों का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने जमीनी सतह पर जानकारी आम करके नौजवानों को इस लत से दूर रखने की जरूरत उजागर की। उधर जिला शोपियां में नशे से पाक समाज की तामीर के लिए मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने की गर्ज से कैंडल मार्च निकाले गए। इन प्रोग्रामों में मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। ज़िराअत और देही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने माहौलियाती एतबार से जम्मू कश्मीर के हसास इलाकों में माहौलियाती तवाज़ुन यकीनी बनाने और हयातियाती तनु को बरकरार रखने के लिए परिंदों के वजूद और इनका तहफ़ यकीनी बनाने को इंतहाई नागुजीर करार दिया है। सुकास्ट कश्मीर में परिंदों से मुतलिक मुनक़िदा कौमी सिम्पोजियम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तहफ़ुज़ाती मनसूबे और तहकीक के अमल को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ामों में परिंदों की करीब 600 अकसाम बोधुबाश कर रही हैं। आज पूरी दुनिया में टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन इंटरनेट और इंफॉर्मेशन नीज़ मवासलाती टेक्नोलॉजी के उन इम्कान के बारे में जानकारी फैलाई जाती है जो मुआशरे और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं। भारत भी इस मौके पर अपने उस डिजिटल सफ़र का जश्न मना रहा है जिसकी बदौलत न सिर्फ हमारे शहरी बाख्तियार बन गए हैं बल्कि डिजिटल शोबे में हम एक आलमी रहनुमा के बतौर उभर रहे हैं। इसी दौरान आज दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के रीजनल सेंटर श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद हो रही है जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा मेहमान खुसूसी होंगे। आज हाइपरटेंशन बीमारी से मुतालिक भी बेदारी का दिन भी है। इस मौके पर इस बीमारी से बचने के बारे में एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआलजे को उजागर किया जाता है। माहिरीन तिब ने कहा है कि पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन यानी बुलंद फिशारी खून के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताहम तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। MLA बांडीपोरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने खेलकूद और बागबानी के मशागिल के जरिए नौजवानों की तरक्की यकीनी बनाने पर जोर दिया है। शेर कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में KCFL फुटबॉल ट्रायल्स का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने नौजवानों को एक बामाने प्लेटफार्म फराहम करने पर स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना की। जम्मू कश्मीर सिडको और सीकाप के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद सलीम ने सनती मरकज सेमपोरा, खनमू और रखीगुंड अक्षा का दौरा करके इन सनती मराकज में बुनियादी ढांचे के तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। श्रीनगर के मजाफात में कायम हो रहे ये तीनों सनती मराकज हजारों करोड़ रुपये की सरमायाकारी हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। फौज में भर्ती के लिए ऑनलाइन मुश्तरक दाखिला इम्तिहान इस साल यकम जून से 12 जून तक लिया जाएगा जिसके लिए उम्मीदवारों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए इंदराज कराया है। मुतलका उम्मीदवार इसी पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जबकि इस पोर्टल पर सैंपल सवालनामे भी दस्तियाब हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज़।

0: एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
2: पर क्या कर सकते हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
3: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
4: आकाशवाणी श्रीनगर प्राइमरी स्टेशन मीना वेव्स 78.8 मीटर यानी 107.7 किलो हर्ट्ज़ पर तो सीधी चुते इस बोजान FM 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर। अमे अलावा हेको तुम इस बोजान DTH पर तो पे फोन के जरिए लाइव आकाशवाणी रेडियो एप्स पर। वो समीन वन बोजो कैशिर बर्थ।

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन की आवाज़ मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन का एक बजे चाहता है। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से खबरें समाप्त कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल

0: आपको बता दें ये आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम पर। आइए आप आकाशवाणी दिल्ली से खबरें समाप्त कीजिए, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद अंग्रेजी में।
1: खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत

0: और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोह पैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिदा अरब इमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़रा आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतीजे से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उजराए आजम ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की।

0: जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैनुल अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैनुल अक्वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-11700 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपये की होगी, जबकि गाज़ियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपये होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुँचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैनुल अक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a 2-day visit to Sweden. Will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition

0: से नौजवान नस्ल को जबरदस्त फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह की एक अनोखी पहल स्टेट हज कमेटी ने भी शुरू की है। कमेटी का काम अगरचे आजमीन हज के लिए सफर महमूद से मुतलक इंतजाम या फिर हज के दौरान आजमीन के लिए कयाम तआम के इंतजाम करना होता है, तहम स्टेट हज कमेटी ने मुख्तलिफ मुसाबिकती इम्तहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए कोचिंग प्रोग्राम का भी एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम के तवसुत से जहां इन नौजवानों के लिए कोचिंग की सहूलियात दस्तियाब हैं, वहीं इन उम्मीदवारों के लिए कयाम तआम और लाइब्रेरी की सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई हैं। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर ने स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी से इस प्रोग्राम के खदुखाल से मुतल्लिक एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आइए सुनते हैं।
1: डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी साहब, जे एंड के स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका है, क्या है ये प्रोग्राम और किस तरह की एलिजिबिलिटी है और किस तरह की सहूलियात इनको है और कब तक ये इनको एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में देनी है और किस तरह से ये रुजू कर सकते हैं हज कमेटी को?
2: हज कमेटी ने 2023 से इनिशिएटिव स्टार्ट किया जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हज हाउस में। तो जो बच्चे हों जो यूपीएससी या जेके पीएससी की तैयारी करते हों उनके लिए ये है। 2023 में हमने इसको कोचिंग किया था लेकिन कोचिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, हमने खाली ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी ही है, यानी बच्चा खुद आएगा और अपनी तैयारी करेगा लाइब्रेरी में बैठ के। तो इसके लिए नोटिफिकेशन हमने इशू की है, तो अब इंशाल्लाह बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन ही। तो उसके लिए गूगल लिंक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है उसी के अंदर दी गई है, तो ऑनलाइन ही इन्हें अप्लाई करना है। उसके बाद एग्जाम होगा, जो बच्चे बेहतर होंगे तो उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी।
1: कितनी सीट्स आपके पास हैं, किस तरह की सहूलियत उनके लिए हम पहुंचाई जाएगी, किस तरह की सहूलियत होंगी इनके लिए?
2: 50 बच्चों की जगह है, 50 बच्चे इंशाल्लाह हम साल लेंगे। तो इंशाल्लाह ये 2027 मार्च 15 तक रहेगा, जब हमारा हज डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी।
1: क्या ये रेजिडेंशियल कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो मुकीम रहेंगे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट?
2: तो इसमें मेस का जो खर्चा है वो बच्चों को बर्दाश्त करना है और मिनिमम जो मेंटेनेंस फी रखते हैं 1000-1200 के करीब। तो जो बच्चे AY हैं, AY एरिया या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है।
1: कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें फैकल्टी का भी अरेंजमेंट है आपकी तरफ से?
2: इसमें खाली हम मेंटर रखते हैं जो इन्हें गाइड करते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ते हैं लाइब्रेरी रीडिंग रूम में बैठ के, और हम एग्जाम लेते हैं वीकली या 2 हफ्तों के बाद या मंथली हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं और हमारा मेंटर रहते हैं।
1: ये जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि एक एग्जामिनेशन बेसिस पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही होगा या इसमें कुछ रिजर्वेशन का कोई कंपोनेंट होता है?
2: नहीं, ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, रिजर्वेशन नहीं, खाली जो मेंटेनेंस फी है वो हम AY और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को नहीं लेते, बाकी एग्जाम जो है ऑन द बेस ऑफ मेरिट है, रिजर्वेशन नहीं है।
1: ये जो आपका वेबसाइट है या ऑनलाइन लिंक है वो कहाँ से, ये जो एस्पायरेंट्स होंगे स्टूडेंट्स होंगे ये कहाँ से वो ले सकते हैं?
2: जो नोटिफिकेशन है उसमें प्रोवाइड की गई है, जो हज कमेटी की वेबसाइट है jkshc.org उस पे अवेलेबल है।
1: डॉक्टर शुजात साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करने के लिए।
0: सबीन, हाल ही में बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर हलीमा सादिया ने जम्मू कश्मीर का दौरा करके यहां पर मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। डॉक्टर हलीमा सादिया दिल्ली से लेकर दुबई तक तालीम के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। डायरेक्टर न्यूज शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर ने एक खसूसी इंटरव्यू में उनसे उनके कामकाज और तरीकेकार के बारे में मुफस्सल बातचीत की, आइए सुनते हैं।
1: डॉक्टर हलीमा सादिया जी, आपका जो पहला दौरा है कश्मीर रीजन का, किस तरह से आप इसको देखती हैं?
3: गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इससे पहले भी मेरा कश्मीर से ताल्लुक रहा है, मैं आई हूँ लेकिन मैं श्रीनगर नहीं बल्कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट में आई थी बहुत बचपन में, जब मेरे अब्बू का वहाँ स्कूल था, तो उसकी बहुत ही धुंधली यादें हैं मेरे जहन में। लेकिन अभी मैं जब श्रीनगर आई हूँ अपने इस मिशन के तहत, सस्टेनेबिलिटी मिशन के तहत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन इसे, इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाए जा सकते हैं या इसकी खूबसूरती को महफूज किया जा सकता है अगर हम इस पे थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के नुक्ते नजर से इस पे तवज्जो दें।
1: एज एजुकेशनिस्ट आपने किस तरह का काम किया है अभी तक, या क्या काम हो रहा है, किस तरह का एरिया ऑफ यानी मैंडे आपने किस तरह का मतलब डोमेन रखा है अपने काम का?
3: देखिए, मेरी करियर की शुरुआत हुई हमदर्द पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से। वहाँ मैंने 14 ईयर्स तक तो एज ए टीचर काम किया और हमेशा से मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि तलबा को इंगेज करके पढ़ाया जाए।

0: उन्हें लेक्चर मेथड से ना पढ़ाया जाए। तो मैंने हमेशा कारकर्दगियों में उनको मशगूल रखा और इस तरह से मैंने उनकी तरबियत की कि वो ज्यादा पुरेतमाद बन सकें और रियल लाइफ से खुद को जोड़ सकें। उसके बाद मैंने 5 साल तक हमदर्द के ही एक नए ब्रांच की एज ए हेड ऑफ स्कूल मैंने खिदमत अंजाम दी और उसके बाद मुझे मौका मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एज ए प्रिंसिपलशिप काम करने का। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था क्योंकि हमारे कंट्री में जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसमें और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं उनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। ऑल दो हमारा स्कूल भी CBSE स्कूल था लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेटरीज हैं, जो कंप्लायंसेज हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो मुख्तलिफ हैं। तो हमें वहाँ जा करके एक नए तरीक़ेकार से ख़ुद को रुशनास करना पड़ा और हमने बहुत जल्दी ये महसूस किया कि जो ये नए तरीक़ेकार है यही हमारे एजुकेशन को एक नई बुलंदी पे ले जा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे बच्चों की इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है तो जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, यानी कि एक ही क्लास में हम एक ही तरह के तरीक़ेकार से सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर 30 बच्चे क्लास में हैं तो 30 बच्चे अलग अलग सलाहियत रखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग उनके रुझानात हैं, अलग अलग उनकी पसंद और नापसंद हैं, तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं। हम बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से कैटेगराइज करके उनके लिए जो हम तरीक़ाकार अपनाते हैं वो विजुअल या ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक जो तरीक़ाकार होते हैं या एक्टिविटी बेस्ड तरीक़ाकार, वो हम उनके सलाहियत के मुताबिक उसको अपनाते हैं, उसे डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुझे फ़र्क नज़र आया जिसको कि मैंने वहाँ जा करके ही बरता और अपने क्लासरूम्स में उसको अपनाया और उसका बहुत ही मुफीद मुझे रिजल्ट भी नजर आया।
1: डॉक्टर सहदेव जी, किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिस है, चूंकि वी आर ग्लोबल पीपल, ग्लोबल आज की दुनिया है, या जाहिर है आप 2012 से वहां पे हैं, तो किस तरह का आपको लगा कि जैसे आपने एक क्लासरूम में 30 बच्चों की बात की एक मिसाल के तौर पे, किस तरह से आप इंडिविजुअलिटी किस तरह से वहां पे देखा, जो फोकस उनका है, तो इसका हमारे मुल्क या हमारे सिस्टम के साथ क्या कोई जोड़ आपको नजर आ रहा है, क्या कोई इस तरह का लिंक नजर आ रहा है, या वो मुख्तलिफ है और वी शुड यू नो अडॉप्ट ऑल दीज प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस।
0: के वहाँ के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी होता है और पेरेंट्स भी स्कूल के तमाम कारकर्दगियों से वाकिफ होते हैं कि कब वहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और हम उन्हें इन्वॉल्व भी करते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को मैं बहुत फोकस करूंगी यहाँ पे कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमने इनफरादियत की बात की तो उस इनफरादियत में मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे की हर क्लास में परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है। जैसे आज अगर मैंने क्लास ली है 35 to 40 minutes की, तो उस क्लास में बाय द एंड ऑफ द क्लास जो मेरा ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का, कितना बच्चों ने अचीव किया, उसकी ट्रैकिंग हमें देन और देयर करना होता है ताकि हम ये जान सकें कि हमारी क्लास में इस कॉन्सेप्ट में कितने बच्चे तक हम नहीं पहुंच पाए, यानी टीचर की पढ़ाई कितने बच्चों के जहन में नहीं समा पाई, उसको रेमेडियल की ज़रूरत है या मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का एहतमाम करते हैं वहाँ। इसके अलावा जो माँ बाप, मैनेजमेंट, टीचर, इनमें एक तालमेल बहुत अच्छा होता है। अगर वो बच्चे जिनको के मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है उनके लिए जो क्लासेस का एहतमाम किया जाता है स्कूल में, स्कूल आवर्स के बाद या स्कूल के दरमियान भी, तो पेरेंट्स को साथ में लेकर के, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के उनका भरपूर तआवुन होता है। वो इसके लिए न सिर्फ तैयार होते हैं बल्कि अपना तआवुन देते हैं और उन बच्चों को मज़ीद तवज्जो दे करके मज़ीद उनको उस लेवल पर लाया जाता है कि वो और बच्चों के साथ साथ चल सके। इसके अलावा जो एक मेट्रो मतलब डाइवर्स कल्चर की हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे जो वो तलबा होते हैं वो एक ही कंट्री के नहीं होते हैं। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में तकरीबन 22 कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे। ऑल्दो इंडियंस की तादाद ज़्यादा थी लेकिन इस तरह से बच्चा वहाँ एक ग्लोबल विलेज का जो रियल कॉन्सेप्ट है कि किसी दूसरे ममालिक में किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की जबान है, किस तरह का खाना पीना है, वो टिफिन साथ में शेयर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के खाने पीने का क्या अंदाज है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी जबान कैसी है। और इसके लिए ख़ास तौर से हम कुछ ऐसे अय्याम बनाते हैं जिसमें कि हम उनके कल्चर को भी दिखाते हैं, हर कंट्री के कल्चर को दिखाते हैं ताकि वो एक दूसरे के कंट्रीज के कल्चर को समझ के। देखिए, एक बात आप भी मानेंगे कि जब तक एक इंसान अवेयर नहीं होता है, किसी को जानता नहीं है, तब तक एक लगाव नहीं पैदा होता है, और ये लगाव होना ज़रूरी होता है एक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद पैदा करने के लिए कि हम सब ग्लोबल विलेज के बाशिंदे हैं। और ये जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी हम सब एक हैं। इसके लिए हमें उनके कल्चर को, उनके तौर तरीकों को जानना ज़रूरी होता है।

0: था और इसी का एहतमाम स्कूलों में किया जाता है ताकि उन्हें और करीब लाया जा सके।
1: सबीन, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने पिछले एक डेढ़ साल में पासपोर्ट इजरा करने के ताल्लुक से कई तरह के इख्तिराई इकदाम किए हैं। इन इकदाम के तहत वादी के शुमाल जनूब में पासपोर्ट दफातर खोले गए और दूसरा इस दफ्तर ने पासपोर्ट वैन का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करके मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को उनके घरों के नजदीक पासपोर्ट सहूलियात फराहम करने का बेड़ा उठाया। इन इख्तिराई इकदाम के तहत पासपोर्ट इजरा करने के अमल में किस नौवियत की तब्दीली आई है, शोबे खबर के सरबराह तारिक रातर ने इसी ताल्लुक से रीजनल पासपोर्ट अफसर बीएस रावत से बात की, आइए समाप्त करते हैं।
2: तो सर, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज जे एंड के पुलिस और वेरिफिकेशन जो सीआईडी है, कोई डिफरेंट एजेंसीज इसमें दे हैव देयर ओन मैंडेट, क्या उनके साथ क्या ऐसा कोई प्रोविजन आपके पास होता है, सो यू आर टेकिंग अप यू नो टू एक्सपेडाइट उनको जल्द से जल्द या टाइम के अंदर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो, क्या आपका ये मैंडेट होता है कि उनके साथ आप रابطे में हो, तो उनके साथ कोई इस तरह का कम्युनिकेशन रहता है?
3: हम लोग ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन जनरेट कर देते, पुलिस अपना जो भी निर्धारित समय के उपरांत कंप्लीट करके ऑनलाइन ही रिपोर्ट वापस कर देती है।
2: क्या कोई ऐसा प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना रिपोर्ट सबमिट या रिपोर्ट वापस देने के लिए, सो दैट इट रीचेस बैक टू यू नो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, सो दैट द पासपोर्ट इज जनरेटेड? क्या टाइमलाइन होती है इसके अंदर, क्या सीमा होती है
3: इसमें? टाइमलाइन डिफरेंट कैटेगरी है,
2: जिस तरह है, कैन यू एक्सप्लेन?
3: मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन मंथ उसके रिपोर्ट हो जाते हैं। जेएनके में जैसा कि टाइम ज्यादा लगता है, टेंटेटिवली तो हम लोगों का 20-21 दिन का रहता है कि इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट आ जाए, बट जो भी जल्दी जितना जल्दी पुलिस कर सके वो ज्यादा बेहतर।
2: सर, तत्काल एक सर्विस हुआ करती थी, वो इज इट स्टिल इन वोग, स्टिल इन प्रैक्टिस, तत्काल सर्विस, पासपोर्ट सर्विस?
3: जेएनके में तत्काल सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं है।
2: अच्छा, ये कब से इसको सस्पेंड किया गया
3: है? जेएनके में तो ऐसा तत्काल प्रोविजन नहीं है।
2: पासपोर्ट एप्लीकेंट्स में स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, करियर के लिए जाते हैं, जैसे हमने हज एप्लीकेंट्स की बात की, इसी तरह कई लोगों को बीमार होते हैं, उनको मेडिकेयर के लिए मान लीजिए फॉरेन कंट्री जाना हो, आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो इन लोगों का किस तरह से, क्या कोई प्रायोरिटी होती है पासपोर्ट ऑफिस के पास कि इन लोगों का जिनका करियर होता है, जिनकी जॉब होती है, जिनको पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना होता है, आउटसाइड कंट्री, क्या इस तरह का प्रायोरिटी बन जाती है पासपोर्ट ऑफिस के पास?
3: अगर उनकी पुलिस रिपोर्ट आ गई है, फाइल सब क्लियर है, तो उनको प्रायोरिटी दिया जा सकता है पासपोर्ट।
2: जाहिर है पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से आपका काम जो है डायरेक्ट पब्लिक लिंक है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करते हैं। पीपुल कम फिजिकली टू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और टू द पॉइंट ऑफ दैट वैन, व्हाट यू से कि मोबाइल वैन, जहां भी आप लगाते हैं, तो जो ही लोग आते हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे जनरेट ये होता, कोई फीडबैक जनरेट होता है? समटाइम्स पीपल हैव सच सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम काइंड ऑफ ग्रीवांसेस और सम काइंड ऑफ यू नो फैसिलिटेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट होता है कि हम ऑफिस के साथ बात करें, ऑफिस को अपना अपना व्यू पॉइंट बताए, अपना फीडबैक। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म आपके पास है कि लोग जो हैं वो आपसे संपर्क करें और उनका उनकी जो बात है उसको वेरीफाई करके, उनका जो अगर कोई मसला है, कोई जरूरत है, क्या वो ऐसा मैकेनिज्म आपके पास है आज की तारीख में?
3: जिनके भी ग्रीवेंसेज हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में हमारी डेली 10 से और 1:30 बजे तक इंक्वायरी काउंटर्स है। उसके अलावा जिनको अगर कोई एप्लीकेंट नहीं आ सकता वो अपने रिस्पांस मेल पे भी दे सकते हैं। हमारा ऑफिशियल मेल rpo.srinagar@cpo.gov.in।
2: कैन यू एक्सप्लेन इट इन यू नो इन एब्रीवेटेड फॉर्म, आई मीन इट इज आरपीओ डॉट, किस तरह है ये स्पेलिंग आप बता सकते हैं लोगों को?
3: आर फॉर रेट, पी फॉर पासपोर्ट, O for office,
2: okay, dot,
3: dot S for Srinagar, RPO dot Srinagar at the rate CPO CPO dot GOB dot E।
2: कोई फोन नंबर है इस तरह का हेल्पलाइन जो आपकी तरफ से है लोगों की सहूलत के लिए?
3: हमारे पास लैंडलाइन फोन नंबर भी अवेलेबल है।
2: वो सब क्या है?
3: जो फोन नंबर एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, बट एक फोन नंबर हमारे पास अवेलेबल है।
2: सर, वेबसाइट का क्या एड्रेस है जिसपे लोग जा सकते हैं उसको देखने?
3: हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in। आप देख इस पे विजिट करके अपना ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते। पहले तो जैसे आपने बोला कि ग्रीवेंसेस से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आवेदकों को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए
2: जी।
3: उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स या जिससे संदर्भ में सूचना लेनी है या कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो हमारे पे डिफरेंट डिफरेंट मोड है। आप पासपोर्ट ऑफिस आकर के बात कर सकते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट एडवाइजरी पे जाकर के देख सकते हैं, उसके अलावा टेलीफोनिकली वो अगर पूछना चाहें तो उसमें भी हम लोग कन्वे करते हैं। तो इस तरह हमारी कोशिश रही कि ग्रीवांसेस को

0: मिनिमाइज कर रहा है। हर एप्लीकेंट के ग्रीवांस को पर्सनली मैं देखता हूं और कोशिश की जाती है कि टॉप प्रायोरिटी में उसको डिस्पोजल कर दूं।
1: जैसे जुडिशरी में लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है कंडक्ट की नंबर वन, इसी तरह बीएसएनएल या कोई और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी वो अदालतें उसको कहें पब्लिक एक तरह का कोर्ट बनता है, क्या पासपोर्ट अदालत का प्रोविजन है आपके पास?
0: यस ऑब्वियसली पासपोर्ट अदालत ऑर्गेनाइज करने का प्रोविजन है और पास में आरपीओ श्रीनगर ने पासपोर्ट अदालत लगाया भी था और जल्दी ही हम लोग भी इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे और पासपोर्ट अदालत लगाएंगे।
2: समीन, जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले माली साल के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा 2,363.47 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और इस तरह से बैंक ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में अपने मुनाफे में 13% इजाफा दर्ज किया है। बैंक ने अपने बुनियादी ढांचे में भी काफी हद तक बेहतरी लाई है, जबकि सार्फिन के लिए खिदमात में भी रोज अफजू टेक्नोलॉजी पर मबनी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन अमिताभ चटर्जी के साथ बैंक के कामकाज और खिदमात के ताल्लुक से एक खसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आइए समाप्त करते हैं।
3: जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज रही हैं पिछले 35 साल या किसी भी टर्मोइल की वजह से बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कभी एफसीआई की तरफ से भी हमें इनपुट मिलता है या क्या केसीसीआई की तरफ से भी, उनका कहना है कि कुछ वेवर होना चाहिए या जिस तरह से भी एनपीएस क्रिएट हुए हैं उनके बारे में ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है?
4: देखिए टाइम टू टाइम बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स लाए हैं, उसमें जिन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की है उन्होंने उठाया है, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, बैंक जो पैसा लेंड करती है वो डिपॉजिटर का पैसा है। हम डिपॉजिटर को तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने आपके पैसे के अगेंस्ट में लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आया तो हम आपका डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे या इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं हो सकता है। अब वेवर का सवाल तभी उठता है जब उस वेवर को कोई सरकार या कोई उसको कॉम्पेंसेट करे, अदरवाइज बैंक अपने तरफ से वेव तो नहीं सकता है क्योंकि हमारा जो पैसा है जो हम लेंड करते हैं वो तो डिपॉजिटर का पैसा है। हाँ ये जरूर है कि जब मुश्किलें आती हैं और लोगों का बिजनेस बैठ जाता है तो टाइम टू टाइम बैंक एसओटीएस जिसको कहते हैं स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वो लेकर के आता है, उसमें जब भी जो बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो भी काम करते हैं बैंक में वो आरबीआई के रेगुलेशंस के तहत करते हैं, उससे बाहर जाके हम नहीं कर सकते हैं। जितना हमें परमिशन है एज पर रेगुलेशंस उतना काम हम करते हैं, उतना फैसिलिटीज हम देने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम जब ये स्कीम्स आते हैं तो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए और उठाया भी है लोगों ने पास्ट में।
3: कस्टमर जो प्रेफर करते हैं जेएनके बैंक में उनकी प्रेजेंस जो फैसिलिटीज हैं अवेलेबल हैं हर जगह, लेकिन कई फार फ्लंग एरियाज हैं इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जहां बैंकिंग फैसिलिटीज अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आपका जो बहुत बड़ा मैंडेट भी है आपको अथॉरिटी भी है तो उसमें अभी तक वो अवेलेबल नहीं है, तो सर इस सिलसिले में क्या प्लान हैं आपके?
4: ऑलरेडी हमारे 876 ब्रांचेस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से के तहत जो फार फ्लंग एरियाज है अनबैंक्ड एरियाज है वहां पे हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2000 से ऊपर हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है सीएसपीज, तो ये ऑलरेडी खिदमत सेंटर्स के रूप में काम कर रहे हैं। और जब भी कहीं पे हमें ये समझ आता है या हमें ये इन्फॉर्म किया जाता है आरबीआई या नाबार्ड के द्वारा कि यहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है जहाँ पे लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है बैंकिंग के लिए, वहाँ हम डेफिनेटली एक ना एक बैंकिंग पॉइंट बनाते हैं, चाहे वो बैंक बीसी के माध्यम से हो या ब्रांच के माध्यम से हो। अभी एक चीज और ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा ब्रांच जो है वो वायबल होना चाहिए। अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं अगर वो इनकम जनरेटिंग नहीं हुआ अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आया तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक इसका कॉस्ट होता है। इसके अलावा भी अगर हम बीसी लगाते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट लगाते हैं उनको अगर सफिशियंट इनकम जनरेट नहीं होता है, मान लीजिए पॉपुलेशन उस जगह का 2,000 या 2,500 है 3,000 से कम है तो वायबिलिटी का इशू आ जाता है और कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर उसको फायदा नहीं हो तो वो वहां पे रहेगा नहीं। तो इसी हिसाब से जो अभी मोटा मोटी तय है कि 5,000 के पॉपुलेशन वाले हर जगह पे एक ब्रांच होगा और 5 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर से ज्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़े। अभी फिलहाल हमारा जो एवरेज है वो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर का है, हमें हमारे मैक्सिमम ब्रांचेज ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां लोगों को 2-3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। आगे भी जो भी ऐसे और एरियाज रहेंगे जहां पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा हम डेफिनेटली ब्रांचेस खोलेंगे या बीसी पॉइंट्स लगाएंगे।
3: आफ्टर गवर्नमेंट जेएनके बैंक इज कंसीडर्ड बीइंग कंसीडर्ड नंबर 2 एम्प्लॉयर और हमेशा मेरिट पे ही जेएनके बैंक में क्लर्क्स की जॉब्स या ऑफिसर्स की जॉब्स आई हैं, लेकिन कई साल से

0: कोई कहता है, मतलब इट इज बीन सेड कि पिछले 4-5 साल से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है जनरल जो है टू गेट एम्प्लॉइज इन ह्यूमन रिसोर्स जो चाहिए उसको या तो रोका गया है या किसी वजह से पॉज किया गया है, तो क्या रीजन्स हो सकते हैं और आपका इसमें किस तरह का विजन है और किस तरह का आप प्लान रखते हैं सर?
1: देखिए, सही कहा आपने, लेकिन वही मैंने जो कहा ना कि बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक सस्टेन करना या सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में, और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था, और कॉस्ट में मेजर 75 से 80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया, आपने देखा होगा हर साल प्रॉफिट इंप्रूव किया है, हर साल हमने रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। तो अब हम इस पोजीशन में हैं, इस साल हमारा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा, मतलब अपने माध्यम से ये बता सकते हैं आवाम को कि इस साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और अच्छा खासा होगा, क्लर्क में भी और ऑफिसर्स में भी। तो हम इस प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, किसी भी टाइम में अगले 2-3 महीने में इसका अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम इस साल हमारा प्लान में ये है कि हम रिक्रूट करेंगे, हम और अच्छे से कोशिश कर रहे हैं लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू टेक्नोलॉजी। पर हाँ, हम इस चीज को भी मानते हैं कि हम टोटली डिजिटल भी नहीं रह सकते, टोटली फिजिकल भी नहीं रह सकते, तो एक बीच का रास्ता है जिसको हम फिजिटल कहते हैं। कुछ फिजिकल ब्रांचेस भी रहेंगे और कुछ डिजिटल सर्विसेज भी रहेंगे, इन दोनों का मिक्स होगा और बेस्ट सर्विसेज जो है ना कस्टमर को हम देने की कोशिश करेंगे।
2: समीन, अप्रैल की 24 से 30 तारीख तक वैक्सीनेशन या टीकाकारी का आलमी हफ्ता मनाया गया। इस हफ्ते के मनाने का मकसद दुनिया भर में आम लोगों के अंदर टीकाकारी की अहमियत को उजागर करना होता है, ताकि मुख्तलिफ अकसाम के अमराज से लोगों को नजात दिलाई जा सके। जम्मू कश्मीर में भी इस हफ्ते के दौरान तरह तरह के प्रोग्रामों और तकारीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान आम लोगों पर जोर दिया गया कि वो बीमारियों से महफूज रहने के लिए जरूरी टीके लगाएं। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा तारिक राठौर ने जम्मू कश्मीर स्टेट इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर शाहिद हुसैन के साथ जम्मू कश्मीर में इम्यूनाइजेशन के लिए दस्तियाब सहूलियात से मुतल्लिक खुसूसी बातचीत की, आइए सुनते हैं।
3: जम्मू एंड कश्मीर से बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, फिर यहाँ किसी सीजन में रहते हैं, चाहे कश्मीरी जन में रहे जमुई जन में रहे, हैव यू एवर चेकड दिस, और इस तरह का जहन में है ओवरऑल इस प्रोटोकॉल में या इस सिस्टम में?
4: देखिए, जो माइग्रेशन है उसका हमेशा हमने एक एस्पेक्ट अपने जहन में हमारे डिपार्टमेंट ने माइक्रो प्लानिंग में रखा होता है, क्योंकि ये माइग्रेशन जो है बड़ा डायनेमिक प्रोसेस है, कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ जा भी रहे हैं। हमारे तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमारा जो रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ सर्विलेंस है वो रहना चाहिए। अब क्या है, आशा को पता होता है मेरे गांव में ये कुछ टेंट लगे हैं, नए लोग आए, देखो हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दूसरे कुछ और बेचने के लिए आते हैं, कुछ तीसरा को लेबर क्लास आती है, बच्चों को लेके आते हैं। अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया यूविन, फॉर एग्जाम्पल वो मध्य प्रदेश से अगर आया है, यूविन से उसने एंट्री की थी, तब उसको एक वैक्सीन लगी उस बच्चे को 1.5 महीने पे, अब 2.5 महीने पे अगर हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, तो देखिए क्या इसकी ब्यूटी है इस ऐप की। जैसे वो फॉर एग्जांपल अगर कुलगाम में भी आके हमारे हेल्थ सेंटर में पहुंचता है ना किसी तरह से, या मेरा वर्कर उसके पास पहुंचता है, हमने सिर्फ एक सिंपल काम करना है, उसका फोन नंबर जैसे ही हमने पोर्टल पे डालना है, अपने ऐप पे डालना है, ऑटोमेटिकली हमें सारी डिटेल्स मध्य प्रदेश में जो एंट्री हुई थी वो दिख जाएंगी, 1.5 महीने पे इसने ये वैक्सीन ली है, अब 2.5 महीने पे ये ड्यू है। तो जैसे ही हम उसको अपना एंटर करेंगे वो हमारे ड्यू लिस्ट में हमारे पास टारगेट हमारा बन जाएगा। अब कल को 1 साल बाद अगर वापस जाता है तो हमारे यहाँ से निकल के वापस मध्य प्रदेश वालों को भी पता लग जाएगा ये उसको लग रहा था। कहीं ना कहीं वो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो इमीडिएटली आई और उसका नेटवर्क फोन उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि हमने उसका नेशनैलिटी की स्टेट उसका, हमारा मकसद है वो हमारे पॉपुलेशन में आए तो हमारी पॉपुलेशन भी सेफ रहे और वो भी सेफ रहे। तो हमने उसको एज पर एज वैक्सीन लगानी ही लगानी है, उसका भी प्रोविजन हमारे पास ऑनलाइन प्रोविजन भी है और ऑफलाइन प्रोविजन भी है। तो हमने इस तरह की पॉपुलेशन माइग्रेटरी जो है ना बहुत सारी हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी है, क्योंकि आप देखें खेतों में काम करने के लिए भी आज लोग बाहर से आ रहे हैं, हाईवे से लोग बेच रहे हैं और नए नए स्लम्स बनते हैं और उखड़ भी जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ब्रिक किलन्स हैं, बड़गाम में कुछ टाइम होता है जब ब्रिक किलन्स में काम होता है, बाहर से लोग आते होंगे फिर चले जा, तो हमने हर एक लोगों को प्लस रख के इनको रखा हुआ है और जो वैक्सीन की डिमांड होती है इसको मद्देनजर रखते हुए माइक्रो प्लानिंग के हिसाब से बनाते हैं। और मैं आपको ये आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने

0: हर एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं।
1: हेल्पलाइन क्या है ओवरऑल सबके लिए?
0: अभी तक जो हेल्पलाइन है वो 104 है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू एक कॉमन हेल्पलाइन है। उसमें जब कोई ऐसा मैसेज आता है तो वो डायरेक्टली हमें भी कन्वे हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस तरह के आपके होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल है उन तक पहुंचने के लिए?
0: एक तो होता है मुहिम के दौरान, जैसे मैंने बोला अब जून में हम पल्स पोलियो करने वाले हैं, इससे पहले हमने HPV की, उससे पहले भी एक पल्स पोलियो दिसंबर में किया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थ्रू मीडिया ही अप्रोच करते हैं, मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करते हैं, सेम हम रेप्लिकेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सो दैट कि आज मीडिया का बहुत ज्यादा दिखता है, यूट्यूब्स हैं, दूसरे चैनल्स हैं जिसमें पब्लिक को काफी ज्यादा विजिबिलिटी है, उससे क्या क्लियर और जो सही ट्रू मैसेज है हम उसके देने की कोशिश करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारा जो PRI मेंबर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो MLA साहिबान होंगे या कोई भी होगा, हम उनसे मीटिंग करते हैं। हमारा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, शुरू में हम उनकी मदद लेते हैं कि आप हमें हेल्प करें। दूसरा हमारे जगह ना एक हमारा फोकस जो है वो स्पेशल रिलीजियस लीडर्स पे भी रहता है, जैसे कोई इमाम साहब होंगे, पंडित जी होंगे, गुरुद्वारा के ग्रंथ साहिब होंगे, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, पहले उनको बताते हैं हमारा ये मकसद है, ये तरीका है, इस तरह से ये हकीकत है, आपके थ्रू भी कभी देख। हमने ये भी देखा जुमा के खुतबा में भी बड़ी बार हमारा ही मैसेज कई बार जाता है तो हमें बड़ी ज्यादा अचीवमेंट प्रोग्रेस मिलती है। रेगुलर हमारा फोकस है और अभी भी जब पल्स पोलियो आप देखेंगे जून में, तो हमारी एक्टिविटी हम हर जगह, और दूसरा जो हमारे कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इवन ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी आपने भी सुना होगा, उस कैंपेन का ना वहाँ माइक लगे हुए हैं, स्पीकर्स हैं, वहाँ पे मैसेज सेंट्रली डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उसको, और हॉस्पिटल्स में जैसे डिस्प्ले कोई चल रहा है उस पर डिस्प्ले चल रहा होता है, रेडियो पे चल रहा होता है, तो हम आपकी मदद से ही आगे इसको पब्लिक तक पहुंचा पाते हैं।
1: इसमें आपका मैसेज क्या है ओवरऑल पेरेंट्स के लिए?
0: वालदेन से यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे के लिए हर कोई एक अच्छी गिफ्ट देना चाहता है, तो मुझे लगता है वैक्सीन जो है वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है एक पेरेंट अपना बच्चे को दे सकता है, और एक फादर अपने 14 साल की लड़की को ये वाला बेस्ट गिफ्ट दे सकता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी है, प्लस जो वैक्सीन की जो हमारी अचीवमेंट है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है, हमने बड़े अच्छे लाए हैं। इसी वजह से है कि हमारे जो ये पेरेंट्स हैं, इनको अवेयरनेस है, इनको नॉलेज है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज सभी आए, बढ़ चढ़ के आए, अपना एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन लगाएं और अपने बच्चों को सेहतमंद रखें और इस माशरे को एक सेहत याब बनाएं।
1: डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ इम्यूनाइजेशन के हवाले से बातचीत करने के लिए बहुत ही सही और मुदल्लल तरीके से आपने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: ये था रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर से आज का नई मंजिलें प्रोग्राम। आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से हम आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्स और FM2 103.5 मेगा हर्ट्स पर। इसके अलावा समिन आप हमें सुन सकते हैं DTH पे, और साथ ही आप हमें अपने मोबाइल के जरिए भी सुन सकते हैं लाइव आकाशवाणी रेडियो ऐप के जरिए। समीन, हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से पहुंच रही है। सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप जानते हैं ये फौज भाइयों का प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं हम। इस वक्त फौज भाइयों का प्रोग्राम पेश होता है, तो आइए पेश प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

मैं क्या कहूँ उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। जय हिंद फौज भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। प्रोग्राम फौज भाइयों के लिए लेकर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक बार फिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने अपनों का ख्याल रख रहे हैं।

कहते हैं अगर ज़िंदगी गुजारने का आपको वक्त मिले किसी के साथ, या फिर आप ज़िंदगी किसी के साथ गुजारने का मौका चाहते हैं, तो ऐसा फ़ैसला करते वक्त देख लेना कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लें जो ये तस्लीम करते हुए ना डरे कि वो आपको याद करता है, और उसका सबसे बड़ा खौफ आपको खोना है। कोई ऐसा शख्स तलाश करना जिसे ये कहने में हिचकिचाहट ना हो कि वो आपसे मोहब्बत करता है। ऐसा शख्स जिसे आपकी झुरियों सफ़ेद बालों पर एतराज़ ना हो, जिसके लिए शक्ल व शबाहत नहीं आप अहम हो, क्योंकि रिश्ते ज़ाहरी सूरत को देखकर कभी भी जोड़े नहीं जा सकते हैं। और अगर ज़ाहरी सूरत को जोड़कर देखकर रिश्ते जोड़ दिए जाएं, तो यकीन माने वो वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, उनका टेक्सचर बिल्कुल भी कायम नहीं रहता, और वो रिश्ते नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है। और वक्त के साथ साथ सब कुछ धीमा होने लगता और फिर एक दिन ख़त्म। लेकिन जहाँ रिश्ते सिर्फ आपके साथ, आपके वजूद के साथ जुड़ते हैं, वहाँ कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी बात अहमियत नहीं रखती सिवाय आपके और आपकी मोहब्बत के।

वैसे जनाब, गुरूर की बात करें तो किसी भी मामले में गुरूर एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ का गुरूर सही नहीं है। फिर पैसे का गुरूर हो तो गुरूर ही किस बात का, एक दिन ख़त्म होना है। या फिर अगर पैसे का ही गुरूर है तो पैसे के बारे में यूँ भी कहा जा सकता है कि ये पैसा आपकी खुशियाँ, आपका सुकून लेकर कभी भी आपको नहीं दे सकते हैं। आपका जो पसंदीदा अमल है

पसंदीदा चीज़ है या आपके खुश रहने के लिए जो ज़रूरी है वो हमेशा आपको पैसा नहीं दे सकता, या फिर अगर आपको अपने हुस्न पर गरूर है तो ये हुस्न का गरूर भी कितनी देर तक, वक्त ने कितने बड़े बड़े हसीन नज़ारों को कहाँ गुम कर दिया कुछ पता ही नहीं चला। कितनी हसीन खूबसूरत जो शक्लें थी वो कहाँ रह गई। वक्त के साथ साथ वो हुस्न धीमा पड़ता जाता है, लेकिन असल हुस्न, असल गरूर अगर है तो आपके अपने आप पर हो, आपके अपनी अच्छाई पर हो, उस पर गुरूर करें तो अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप में कुछ अच्छा है, गुरूर वैसे भी किसी चीज़ का अच्छा नहीं। गुरूर ना ही हो ज़िंदगी में तो ही अच्छा, क्योंकि ये गुरूर ही इंसान को मिटा देता है। और फिर जब इंसान पलट के देखता है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है, बस एक उसका गुरूर और एक वो रह जाता है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और सिर्फ वो जिसके पास ये गुरूर हो, दूसरा कोई नहीं। और आप जानते हैं कि जब इंसान के साथ कोई दूसरा नहीं होता तो वो कितना बेबस हो जाता है। ये गुरूर, ये पैसे, ये हुस्न, ये दौलत, ये शोहरत किसी भी काम की नहीं। अगर है तो आपका इनर, आपकी अच्छाई, आपका अपनापन, आपके वो रिश्ते जिसे आपने मोहब्बत और खलूस से अपना ज़िंदगी का आईना बना दिया हो, हासिल किया हो, कमाया हो, यही आपकी सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा सरमाया है जिसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता और कभी भी नहीं।

0: अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आ रहे ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: प्रोग्राम में फिर से आपका इस्तकबाल है। कुछ अशआर पढ़ूंगी आप सबके लिए। शायर कहता है कि कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पाके मैं रो पड़ूं, मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं, कभी सजा लूं तुझको आंखों में, कभी तस्बीहों पे पढ़ा करूं, कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। जी हाँ, यही है इश्क की खूबसूरती।
4: नीता, तुम मुझसे झूठ मूठ भी ना रूठा करो, तुम नहीं जानती जब तुम रूठ जाती हो तो लगता है सारी दुनिया रूठ गई।
5: कोई मनाने वाला हो तो कभी कभी जानकर भी रूठ जाने को जी चाहता है।
4: और किसी दिन मनाने वाला रूठ गया तो?
5: उस दिन जिंदगी रूठ जाएगी। तुम उसे कभी ना रूठना, मुझे मनाना नहीं आता।

शीशों से सीखा है हमने मोहब्बत का भरम, शीशों से सीखा है हमने मोहब्बत का भरम, तोड़ने वाले को भी खुद में बसा।

इश्क की है जुस्तजो तेरे कुर्बतों का सवाल है, मेरी सांस है रवां रवां तेरी चाहतों का कमाल है।

समय इसके साथ ही आज का जो फौज भाइयों के लिए प्रोग्राम है समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त, अगली मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइम स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव और एफएम 2 पर. आइए सामीन, अब समाप्त करते हैं हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन.

0: भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुंबई में मुनाकद 9वीं माटी सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए कहा कि पूर्वांचल सिर्फ जुग्राफियाई खत्ता नहीं बल्कि रूहानियत, तहजीब और सकाफत की जिंदा अलामत है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और महाराष्ट्र के दरमियान तारीखी, सकाफती और रूहानी रिश्ते सदियों पर मुहित हैं, जिन्हें संतों, सूफियों और अजीम शख्सियात ने मजीद मजबूत बनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक माता अहिल्या भाई होलकर, गुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन शख्सियात ने काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई मजहबी और सकाफती मकामात की तामीर और बहाली में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को अपनी मजहबी जड़ों, रिवायात और सकाफती विरसे से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है ताकि मुल्क की मजबूत तहजीबी सकाफत बरकरार रह सके। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: इस बारे में एक तालिबे इल्म अरफात रियाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: नशा एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इंसान नशा करने से दिमागी और जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाता है और समाज में इसे हकारत की नजरों से देखा जाता है। दुनिया के हर मजहब ने नशे को गलत करार दिया है और इस पर पाबंदी आयद की है। हमें पुलिस और सिविल सोसाइटी के साथ बेअहमी ताउन करके इस बिदत पर काबू पाना होगा और ऐसे लोगों की सही रहनुमाई भी करनी होगी ताकि ऐसे लोग सही ट्रैक पर आ जाए।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। ट्राल में पुलिस ने रफीक अहमद भट्ट नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई भांग की फसल को तबाह कर दिया। बांडीपुरा, बारामूला और अवंतीपुरा में पुलिस के अहतमाम से नशा मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकद किए गए। सुंबल में पुलिस ने अद्वियात की कई दुकानों का मुआयना किया। अनंतनाग में पुलिस ने मनुष्यत के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मुकामों पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। जम्मू सूबे में भी पुलिस ने ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों के दौरान कठुआ में सजाद अहमद और फारूक अहमद नामी दो ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया। उधमपुर में ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान शेर मोहम्मद नामी मनुष्यात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिला के कोशार इलाके में इमरान खान नामी ड्रग्स स्मगलर के गैर कानूनी तजावजात को मुसमार कर दिया गया। पुलिस ने डोडा जिला के भद्रवा और गंदो इलाकों में भंग की काश तबाह कर दी। जिला में साकिब हुसैन नामी ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। सांबा में माम हुसैन नामी ड्रग्स स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरा में एक 8 माह के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। इस तरह इदारे के हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो शोबे ने तिब्बी खदमात की फराहमी में एक और संग मेल उभूर किया है। स्किम सोवरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इस कामयाबी के लिए मजकूरा शोबे के डॉक्टरों और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। ये बात काबिल जिक्र है कि जराही का यह अमल शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद गिलानी की सरबराही में डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में वाका तारीखी मारतंड तीर्थ मंदिर में आज से महाकुंभ मेले का आगाज हुआ। इस मेले को बन मास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास के नामों से भी जाना जाता है और ये मेला 1 माह तक जारी रहेगा। इस मेले में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि मेले के आगाज पर ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा और MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा,
4: श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट जो है मटन अनंतनाग, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है, तो कहने का मतलब VR1 और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, तो यहाँ से मैसेज हम जम्मू कश्मीर के वासियों का, फॉर ब्रदरहुड, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हम कोशिश करेंगे वही माहौल। तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है, तो हमें उन लोगों को उजागर भी करना है जो मोहब्बत का, इंसानियत का, प्यार का पैगाम दे। हमसे बेहतर धरती कोई नहीं, ये ऋषियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है।
1: मौसम में तब्दीली और गर्मी में

0: अफ़ी को मद्देनजर रखते हुए तबी माहरीन ने बुजुर्गों को रोजमर्रा के मामूलात में एहतियात बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों के तबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने कहा है कि बुजुर्गों को दिन के दौरान घर से बाहर जाने में कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: बुजुर्ग लोगों को बालकनी और आउटडोर एरियाज में निकलने के वक्त एहतियात बरतना चाहिए। रेलिंग पर कभी ना झुकें, गीले या फिसलन वाले वरंडा या जगहों पे एहतियात से चलें। बाग में ज्यादा झुककर और घुटनों पे बैठकर काम ना करें। बाग में तेज चीजें एहतियात से इस्तेमाल करें। दीवारों पे सीढ़ी इस्तेमाल करने से परहेज करें। भारी चीजें उठाने से परहेज करें और पौधों को पानी देने के लिए लंबे हैंडल वाली चीज इस्तेमाल करें। ज्यादा धूप और दोपहर में बाहर ना निकलें।
0: आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन है। इस साल का मौजू है, मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें। अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, उसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराम करने के लिए काम करने वाली कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन के एहतमाम से श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से मुनक़द हुआ 3 रोज़ा प्रोग्राम आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। प्रोग्राम के तीसरे रोज आज भी मुकर्ररीन ने कश्मीर की वसी तारीख पर मकाले पड़े। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने सरकार से कहा है कि वो श्रीनगर शहर के लिए ऐलानशुदा तरक्याती और तामीराती प्रोजेक्टों पर नजरसानी करके माहिराना राय हासिल करे। ग्रुप के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा है कि कॉन्वेंट संगरमाल ब्रिज और फ्लाईओवर के अलावा डलगेज पारिमपुरा फ्लाईओवर के मुजवजा मनसूबों पर तामीराती माहिरों की राय हासिल करना नागुजीर है। वादी के एक मारूफ थिएटर और टीवी रेडियो अदाकार शबीर हकाक के वालिद गुलाम नबी हकाक आज सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई सकाफती, समाजी, अदबी और थिएटर से वाबस्ता कई अफराद और अंजुमनों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा खानी 20 मई बुधवार को सुबह 10 बजे मकबरा आखुंद साहब का मजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरओ और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या माई गो ओपन फोरम पर भी भेजी जा सकती हैं। भारत ने आबनई हरबज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आजादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निजाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सुबह 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 4 बज चुके हैं। समाप्त करें आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

अस्थि आवाज तुसा तोनी पहुंच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हाँ तुसा मेजबान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते ताजीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया हां। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत होसो और हमेशा दी तरह अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कोर नाल सुन रहे होसो। अज तारा दी महफिल है, हालात वाका ते गीत संगीत दी महफिल किनके असीं तुसा दी खिदमत पे हाजिर हां। सामीन असीं दिखते हां ते हर रोज़ मौसम नोई नोई करवट जड़ी है वह बदलद है। सुबह सवेले ते शामी वेले हल्की हल्की ठंड होंदी है। कई जगह ते पिछले हफ्ते बारिशां रहीयां और महकमे मौसमियात सुन पेशनगोई कीती दी है कि आइंदा आने वाले अगले हफ्ते दे दौरान भी बारिशां दा सिलसिला जड़ा है वक्फे वक्फे थी जारी रहेगा। समिन अगर असी अपने मुल्क हिंदुस्तान दी बाकी रियासतां दी गल करां तां उत्थे गर्मी दी लहर विच वाधा होया है, जबकि जम्मू कश्मीर दी अगर खासकर असी कश्मीर दी गल करां तां इत्थे मौसम खुशगवार है। सियां दी आमद विच वाधा होया है, हज़ारों की तादाद भी सियाह लोग वारदे कश्मीर हो रहे हैं और मुख्त

जब जाएँ दजुल का लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मुगल बागात और बाकी दीगर कई सारियाँ जाइन जिथे दिहाड़ी वेले हज़ारों की तादाद में सिया लोग दिलकश नज़ारियाँ थी लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। समिन सियाहों की आमद के नाल ही क्या कि असं जिस जानते हैं कि सियाहत नाल असती इकतसादी हालत जी है वह जुड़ी दी है और इसको एक रीढ़ की हड्डी मने जुलता, काफ़ी सारे लोगों का रुजगार इस नाल जुड़िया है। इस वास्ते असको चाहिए कि असी मेज़बानी बिच किसी भी किस्म की कोताही ना बरता और जड़े भी सियाह लोग वारे दे कश्मीर होंदे हैं उन्हां दा इस तरीके नाल ख्याल रखा कि अगे जुल के वो होर लोगों को भी कश्मीर या बाकी जगह आने का मशवरा देवन। समय नाल पहला प्रोग्राम के शुरू बिच तुसां वास्ते एक गीत पेश करा, आवाज़ है उबदर रशीद कुरेशी दी, आओ सुनते हैं।

उपदर शीत कुरेशी गीत पेश कर रहे से उम्मीद करते हैं कि गीत तुसा को पसंद आया उसी। हुण असी हालात हफ्ता के तहत अपने पहले मौजू का जिक्र करा। जम्मू कश्मीर की पंचायतों में इंतखाबी नज़रसानी मुकम्मल हो गई है और हतमी फरिस्तां 20 मई को शाया होने की उम्मीद है। मजमुई तौर पर वोटर की तादाद में वाधा तकरीबन 3.2% होने का इम्कान है। रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए पंचायती इंतखाबी फरिस्तां पर नज़रसानी वास्ते तकरीबन 2 महीने की तवील मशक 15 मई को मुकम्मल हो गई। फरिस्तां उन्हें वास्ते भेज दी गई और हतमी फरिस्तां 20 मई को जारी की गई। रियासती इलेक्शन कमिश्नर हुण पंचायतों के बाद म्युनिसिपल इंतखाबी फरिस्तां पर नज़रसानी करने के बारे में आख्या कि कानून के मुताबिक शहरी मकामी इदारों वास्ते वोटर लिस्टां असैम्बली की फरिस्तां थी गिनी गईं। उन्होंने आख्या कि जम्मू कश्मीर में असैम्बली वोटर फरिस्तां को या तो स्पेशल समरी रिविजन के जरिए अपडेट किए जुले की उम्मीद होंगी है। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन सुन जम्मू कश्मीर लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अलावा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी रियासतों और यूटीज भी मौसमी हालात का हवाला देंदे हुए नज़रसानी को मुखर किया गया। उन्होंने आख्या कि नज़रसानी थी पहला पंचायतों में 69.8 लाख वोटर से हमने तैदा 3.2% इजाफे के नाल तकरीबन 72 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद आख्या कि दर हकीकत 3.50 लाख वोटर का इजाफा होया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट सुन जम्मू सूबे के समर जोन में आने वाले जिले अदालतों वास्ते 15 रोज़ा गर्मी की छुट्टिया का ऐलान किया गया। रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 जून 2026 थी 22 जून 2026 तोड़ी छुट्टियां हो सनगियां। नोटिफिकेशन में आखिया गया है कि छुट्टियां जम्मू सूबे के समर जोन के जिले अदालतों पर लागू हो सनगियां। तहम जिला किश्तवाड़, जिला डोडा, जिला रामबन के बटोत, गोल, बनहाल जबकि जिला कठुआ के बनी इलाकों की अदालतें इस शेड्यूल थी मुस्तस्ना हो सनगियां। हाईकोर्ट से मुतलका जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जजेस और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को हदायत दी गई है कि छुट्टियों के दौरान हंगामी नोएद के फौजदारी मुकदमा की समात और निपटारे वास्ते मुनासब इंतजाम को यकीनी बनाया जुले। मरकजी वजीर दाखिला सुन बारा को आख्या कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुन समगलिंग भी मुलवस एक बैन अलावी मंशियात स्कैंडल का पर्दा फाश किया गया और 182 करोड़ रुपए की तकरीबन 227.7 किलोग्राम मंशियात जब्त की गई। इस कामयाबी का ऐलान वजीर दाखिला अमित शाह सुन एक्स पर किया। उन्होंने आख्या कि मशरकी वस्ता वास्ते मंशियात की खपत खेप का पर्दा फाश करना और एक गैर मुल्की शहरी की गिरफ्तारी मंशियात के खिलाफ सिफर रवादारी दे असां दे अजम की रोशन मसाल। शाह सुन आख्या कि मैं दोहरांदा कि असी हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली या मुल्क की बार जाने वाली हर ग्राम मंशियात को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए रोक सेंगे। ऑपरेशन की तफसीलात दसद वजारत दाखिला के एक बयान में आखिया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुने गैर मुल्की मंशियात के कानून नाफज करने वाले इदारे की इतला मिली है कि भारत के कैप्टागोन की समगलिंग के वास्ते ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जुल रहा। नेब सराय नई दिल्ली में एक कार की निशानदेही की गई और 11 मई को तलाशी की गई जिसके नतीजे चपाती कटियाली कमर्शियल मशीन में एहतियाती छपाई गई तकरीबन 31.5 किलोग्राम कैप्टागोन गोलियां बरामद की गई। बयान में आखिया गया है कि इब्तदाई तहकीक से पता चलिया है कि मशीन जदा सऊदी अरब को बरामद करनी सी। वजारत दाखिला सुन आख्या गया है कि नेब सराय में मजकूरा मकान का एक शामी शहरी सुन किराए पर किनिया दा सा जिला 15 नवंबर 2024 को सियाती वीजे पर हिंदुस्तान में दाखिल होया दा सा। इसके वीजे की म्याद 12 जनवरी 2025 को खत्म हो गई और गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मकीम आसा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान श्रीनगर में 6 करोड़ रुपए मालिया की जायदाद करक। हिंदवाड़ा में 40 लाख रुपए की जायदाद मुंसलिक। मोदी हुकूमत नशा मुक्त अब भारत वास्ते पुरअज़म। मंशियात दे तई जीरो टॉलरेंस। ए मसला किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि एक आलमी खतरा आलमी इतिहाद नागुजीर वजीर दाखिला अमित शाह। जम्मू कश्मीर सिक्किम इश्तराक एक भारत श्रेष्ठ भारत की बेहतरीन मिसाल। लोग बाहुन सुन श्रीनगर में सिक्किम रियासत दिहाड़ा मनाया। वजीर आजम मोदी की रहनमाई भी रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है लेफ्टिनेंट कॉर्नर। समय तुसा को दसते जुलां कि आल इंडिया रेडियो के अपने क्याम के 90 साल मुकम्मल होने शानदार तकरीबात जारी हैं। यह इदारा मुल्क भी खबरां तालीम सकाफत और तफरी के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सकाफती तकारीब और खसूसी नशरियात पेश की गई। मकर्री ने आख्या कि आल इंडिया रेडियो सुन आवाम को सही मालूमात पहुँचाने और कौमी यकजहती को मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात अंजाम दिखा दें। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी इसकी अहमियत बरकरार है और आवाम के दिलों में खास मकाम रखता है। समय नूं तुसां नाल रोज़गार के हवाले नाल जानकारी सांझी करां। सेंट्रल

मास्टर करतार चंद संगीत गीत पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया उसी। सामने उस्ताद दसां दी जिंदगी दा अहम रहनुमा हुंदा, ओह सानूं इलम दे नाल नाल असल इखलाक भी सिखाउंदा है। उस्ताद दसां दी कामयाबी विच अहम किरदार अदा करदा है और सानूं सही और गलत दी पहचान देंदा है। एक असल उस्ताद तलबा को मेहनत और ईमानदारी का सबक देंदा है और सानूं हमेशा अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। तमिन फिर इस नाल ही अज के पहाड़ी प्रोग्राम का वेला भी मुक गया। अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद मीर तो पहाड़ी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मारूफ उन्निसा को अगले प्रोग्राम तो नहीं दो इजाज़त। खुश रहो। अल्लाह बिली।

0: तो से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन मुंबई में मुनदा 9वें माटी सम्मान समारोह में शिरकत करने आया है कि पूर्वांचल सिर्फ जगराफाई हिता नहीं बल्कि रूहानियत तहजीब तकाफती जिंदा निशानी है। उन्हें आया कि पूर्वांचल तो महाराष्ट्र के बचार तारीखी सकाफती तो रूहानी रिश्ते सदियां थियन जिन्हें को संतान सूफियां तो अजीम शख्सियात सुन मजीद मजबूत बनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन लोक माता अलिया बाई होलकर रघुनाथ राव तो मल्हार राव होलकर ददमतों को खराज तकसीम पेश करने आया कि इन शख्सों सुन काशी वशोनाथ मंदिर समेत कई मजहबी तकाफती जाइयों की तमीर तो बहाली में अहम करदार अदा किया है। उन्हें आया कि नवी नस्ल को अपनी मजहबी जड़ा रवायत तकाफती विरसे जोड़ना वक्त की जरूरत है ताजे मुल्क की मजबूत तहजीबी सकाफत बरकरार रह सके। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी जिलों में सिविल तो पुलिस इंतजामिया दिशा के नाल मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: इस बारे में एक तालिब इल्म अरफात रियाज सुना आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदे आख्या।
3: नशा एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इंसान नशा करने से दिमागी और जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाता है और समाज में इसे हकारत की नजरों से देखा जाता है। दुनिया के हर मजहब ने नशे को गलत करार दिया है और इस पर पाबंदी आयद की है। हमें पुलिस और सिविल सोसाइटी के साथ बेहमी ताउन करके इस बिदत पर काबू पाना होगा और ऐसे लोगों की सही रहनुमाई भी करनी होगी ताकि ऐसे लोग सही ट्रैक पर आ जाए।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। त्रालपे पुलिस सुन रफीक अहमद भट्ट नामी एक शख्स की जमीन दी बिच राई गई भांग दी फसल को तबाह कर छुड़िया। बांडीपोरा बारामूला तो उंतीपोरा बिच पुलिस के एहतमाम नाल नशा मुखालफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। सुंबल बिच पुलिस सुन दवाइयां दी कई दुकानों का मुआयना किया। जम्मू सूबे बिच भी पुलिस सुन ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां के दौरान कठुआ में सजाद अहमद ते फारूक अहमद नामी दोवां ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया। उधमपुर बिच एजी कार्रवाई के दौरान शेर महमद नामी मंशियात फरोख की गिरफ्तारी की गई। जिले के कोशार इलाके में इमरान खान नामी ड्रग्स स्मगल के गैर कानूनी ढांचे को मसमार किया गया। पुलिस सुन डोडा जिले के बदरवा ते गंदवा इलाकों में भांग की काश तबाह कर छुड़ी। जिले में साकब हुसैन नामी ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। सांबा में इमाम हुसैन नामी ड्रग्स स्मगलर की गिरफ्तारी भी की गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा में एक 8 महीनों के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाबी के नाल किया गया। इस तरह इदारे के हेमोटोलॉजी एंड बोन मैरो शोबे सुन टीबी खदमात की फरहमी में एक और संग मेल अबूर किया है। सिक्किम सौरा के सरबा डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई सुन इस कामयाबी वास्ते मजकूरा शोबे ने डॉक्टर ते दुए अमले को मुबारकबाद दी है। एक गल काबिले जिक्र है कि सर्जरी का एक कम शोबे के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद गैलानी की सरबाई में डॉक्टर की टीम सुन अंजाम दिता है। यह खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH उत्ते भी सुन सकते हो। अज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी ध्याड़ा है। इस साल का मौजू है मिल के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करा, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी जांच करा दा। यह ध्याड़ा हाइपरटेंशन के तालक न बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बरलें के बारे में आलमी सतह उत्ते बेदारी बधाना, इसकी रोकथाम तशीस ते इसको कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। मौसमी तब्दीली ते गर्मी बिच वाधे को नज़र बिच रखदियां तिबी माहिरी सुन बजुर्गों को रोज़मर्रा के मामलात बिच एहतियात बरतने की सलाह दी है। बजुर्गों के तिबी मसलों के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम सुन आया कि बजुर्गों को त्याड़ी के दौरान घरों की बाहर जुलने बिच कुछ एहतियाती तदबीर अपनानिया चाहिए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करदियां उन्होंने आख्या।
4: بزرگ لوگوں کو بالکنی اور آؤٹ ڈور ایریاز میں نکلنے کے وقت احتیاط برتنا چاہیے. ریلنگ پر کبھی نہ جھکیں. گیلے یا پھسلن والے ورنڈا یا جگہوں پہ احتیاط سے چلیں. باغ میں زیادہ جھک کر اور گھٹنوں پہ بیٹھ کر کام نہ

0: मेले का आगाज होया। इस मेले को बन मास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास के नाम नाल भी जाने जुलता है। यह मेला एक महीने तकर जारी रहसी। इस मेले में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। अस्ते नुमाइंदे तसद्दक रशीद सुन खबर दी कि मेले के आगाज होते ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ते MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी मौजूद आसे। मीडिया नुमाइंदा नाल गल करदियां सतीश शर्मा सुन आया,
1: श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट जो है मटन अनंतनाग, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है। तो कहने का मतलब वी आर वन और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, तो यहाँ से मैसेज हम जम्मू कश्मीर के वासियों का, फॉर ब्रदरहुड, पीस, प्रॉस्पेरिटी, और हम कोशिश करेंगे वही माहौल। तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है। तो हमें उन लोगों को उजागर भी करना है जो मोहब्बत का, इंसानियत का, प्यार का पैगाम दे। हमसे बेहतर धरती कोई नहीं, ये ऋषियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है।
0: कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराम करने वास्ते काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाल न श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नलमदकदा मुनक्कद होया। त्रै रोज़ा प्रोग्राम अज खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के त्रीए ध्याड़े अज भी मकरीर सुन कश्मीर की वसी तारीख उत्तर मकाले पड़े। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन सुन सरकार की आख्या है कि श्रीनगर शहर वास्ते ऐलानशुदा तरक्याती ते तामीराती प्रोजेक्ट तंदाजसानी करके माहराना राय हासिल करे। ग्रुप के चेयरमैन ते साबिक गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनाई सुन आख्या कि कन्वर्ट संगरमाल ब्रिज ते फ्लाईओवर के अलावा डलगेट पारमपुरा फ्लाईओवर के मुजवजा मनसूबे उत्ते तामीराती माहरीन की राय हासिल करना जरूरी है। इस सिलसिले में GCC की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिस विच अचन प्रोजेक्ट का पेशावराना अंदाजा लेना चाहिए। वादी के एक मारूफ थिएटर ते TV रेडियो अदाकार शबीर हकाक के वालिद गुलाम नबी हकाक अज सुबह फोत हो गए। उनकी फोत होने उत्ते कई सकाफती, समाजी, अदबी ते थिएटर नाल वाबस्ता कई नफरां ते अंजमना सुन दुख ते अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम हैड गुलाम रसूल आहून सुन भी मरहूम के फोत होने उत्ते सदमे का इजहार करदियां शबीर हकाक के नाल हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम की इज्तमाही फातिहावानी 20 मई बदारे को सुबह 10 बजे मकर्रा आहून साहब कन मजार श्रीनगर बिच अंजाम दी जुलसी। तो इस खबरों का बुलेटिन मुकल गया। अस्ता अगला बुलेटिन तुसी गोजरी जबान पर 5:50 तक सुन सो। तो हम असों को इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सफर के 4:30 हुए हैं। समाप्त करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: सफोकेशन
1: जैसे पेन लग रही है, सफोकेशन लग रही है, तो अगर माहौल बहुत काम, म्यूजिक भी एक किस्म का आर्ट है तो आनंद देता है, लेकिन शोर नू छोड़ के अगर कोई वैसी जगह है जो थोड़ी वेल
0: शांति
1: नाल बैठे जा सकते, अच्छी वेंटिलेटेड है, तो जरूर अगर तुहाडे नाल कोई पेशेंट है या आस पास साडे फैमिली का मैंबर है, जरूर ध्यान रखो कि टाइम टू टाइम वो मेडिसिन लै रहे ने, किसी अच्छी जगह बैठे ने, तो अगर वो तकलीफ कोई कह रहे ने कि अनइजीनेस लग रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की सपोर्ट लानी चाहिए।
0: मतलब तुसी कह रहे हो कि ले जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल जो भी मतलब चल रहा है ट्रीटमेंट वो होनी चाहिए।
1: अक्सर असी देखते हैं कि पेशेंट्स साडे कल्चरली असी लोग सजेशंस बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है, तो साडी क्लोज अप्रोक्सीमेशन वाली सोसाइटी है, तो कदे कदे की होंदा है कि गल करते करते मैं ये ट्राई किया तुसी ये भी नुस्खा ट्राई कर लो, लेकिन मैं एल्डरली पॉपुलेशंस नू जो साडे वड्डे ने उन्हां नू क्लीयरली कहांगी कि अपने डॉक्टर साहब की इजाजत तो बगैर कदे अपनी बीपी दवाई नाल छेड़छाड़ ना
0: घर वाले ट्रीटमेंट अपने रहन दियो, है ना,
1: अपने घर वाले ट्रीटमेंट सी ट्राई करो, लेकिन अपने डॉक्टर साहब दी इजाजत नाल, देखो वो तुहाडा एक्सपर्टीज है, वो तुहाडी बॉडी नाल पूरा फैमिलियर है, तुहाडे बॉडी दे डायनामिक्स जो हन, तो उन्होंने इजाजत बगैर छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी बारी केसिस रिपोर्ट होंगे ने पेशेंट ने तीन दिन तो शायद मेडिसिन ही नहीं ली, तो वो जरूरी है, नाल ही नाल फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि तुसी मॉनिटर कर रहे हो, तुहाडा वड्डा तुहाडा कोई भी बंदा जो फैमिली विच है अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसकी अच्छी केयर हो रही है कि नहीं।
0: जी जी जी। अच्छा डॉक्टर सानू ये दसो कि जिवें हुण होया होया किसी नूं ते हाइपरटेंशन कोई पेशेंट कोई हैगा है, तो उन्हूं हुण असीं ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, लेकिन की कुछ चांसिस सानू लगते हैं कि इस ट्रीटमेंट नाल वो ठीक हो जाएगा?
1: देखो जो हाइपरटेंशन की गल करिए, हाइपरटेंशन एक प्रिवेंटिव डिसऑर्डर है, तो हाइपरटेंशन का जो असी स्केल देख रहे हैं वध रहा है, वो पूरा लाइफस्टाइल नाल अफेक्टेड है। अर्लीयर साडा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल सी, चाहे असी स्पोर्ट्स विच सां, साडी सोसाइटी बहुत क्लोज सी, असी एक दूजे नाल बहिंदे सां, गल्लां सांझी करदे सां, सुख दुख अपने दसदे सां, अज साडी मार रहे है कि असी कोई माड़ी गल अपनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूजे का भरोसा ही नहीं है, तो एक वो स्ट्रेस है। दूजा यह है कि साडा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल घट गई है, असी कॉन्स्ट्रेंस हाँ अपने स्क्रीन नाल, है ना। तीजा है कि साडी इनफॉर्मेशन ओवर इनफॉर्मेशन हो गई है, सानू लगता है कि फोन जो दस रहे हैं साडा कंसल्टेंट कहे ना कहे, बट फोन वाले नुस्खे असी बहुत अजमान लगे हैं, लेकिन डॉक्टर्स एक्सपर्टीज तुहाडा जो कंसर्न प्रैक्टिशनर है जरूर उहदी गल सुनो, अपनी दवाई टाइम टू टाइम लो, अपने लाइफस्टाइल विच रिगरस एक्सरसाइज। अक्सर की हो रहा है अजकल की एक स्टेपर लिया लिता मैं रूम विच, ते मैं एंकल एक्सरसाइज कर रही हाँ, मैनू लग रहा कि मेरा वर्कआउट हो रहा है, या फिर ट्रेडमिल ते मैं बहुत ज्यादा स्पीड रख दी है ते मैं सोचा कि मेरा काम हो रहा, बट ऐसा नहीं है। जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं, हर एक्सरसाइज की एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो डॉक्टर अगर वॉक ले किया तो उसमें थोड़ा कार्डियोवैस्क्यूलर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सारी चीज़ इन्वॉल्व है, तो वो ताइयो इफेक्ट करेगी जब तुम उस एडवाइस नाल चलोगे। तीसरा मॉनिटरिंग रेगुलर करो, अक्सर असी दवाई खाते जाते तो कद बी पी लो भी हो जाता, या फिर किन्नी बारी असी स्क्रीनिंग करते ही नहीं हाँ, तो अचानक रब ना करे हार्ट अटैक का सुनते हैं असी, यंग अडल्ट्स विच ज़्यादा डेथ का कॉज हैगा, या स्ट्रोक आ जाती है, तो अंडरलाइन कॉजिंग कॉज जो है बीपी होंगे, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है अपने डॉक्टर की पूरी एडवाइस नाल चलो, अपने डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट ने, जिस विच सोडियम इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO दे डेटा कह रहा रिकमेंडेशन कह रही है 5 ग्राम सानू सोडियम इनटेक चाहिए है, हाँ जी 5 mg, बट साडा बींग कश्मीरी साडा इनटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि असी कल्चरली नून चाय बहुत पीते हैं, है ना, तो होर साडा जो प्रोटीनस वगैरह उहदे विच ही, या सैलड्स ते असी चटनी अचार पापड़, तो सादे नमक का इस्तेमाल थोड़ा घट ही कर लो, टोटल 5 mg टोटल।
0: मैं तुहानू इधर रोकना चाहवांगी, क्योंकि तुसी हुण नून चाय जिहदा बोले कश्मीर ते मैनूं लगदा 90% लोग नमकीन चाय ही पीते हैं, हुण तुसी जिहदा साल की गल की है सोडियम दी, तो हुण सानूं किहड़ा वाला साल्ट लेना है, क्योंकि कई देने कई पिंक साल कई दूसरा साल यूज कर देने ना उधर विच, तो केड़ा वाला साल्ट
1: जी, मैं थे तो अनु एक मिथ जो है वो ब्रेक करना चाहूंगी कि आजकल बड़ा इनटेक है कि रॉक साल्ट पिंक साल्ट दूजा साल्ट वो यूज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है, सोडियम दी मिकदार दोनों विच सेम ही है।
0: अच्छा।
1: ते इस मिथ तो तुसी बाहर आ जाओ, तुसी 5 mg ही इनटेक करना है, चाहे कोई भी तुसी कर लो नमक, आयोडाइज करो या रॉक साल्ट करो, ते ए बिल्कुल मिथ है।

0: अभी आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं समी नशा। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शाम के 5 बज रहे हैं। समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले एक छोटा सा वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेजबान शौकत अमन बोकड़ा का तरफ ते तम सारा ना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। सामीन इकराम अज अतार है ते अज के दिन थारे वास्ते SMS बेस्ड प्रोग्राम पेश कियो जाए। आज का प्रोग्राम वास्ते भी मारे कोल मुझ सारी SMS पहुंची है। जितनी भी SMS मारे कोल आज तक आई है ये सारी SMS आज का प्रोग्राम में शामिल करा का। तो इसके नाल नाल तमना भी दस्तो चलूं कि अगर तम भी अगला अतार ना मारे संग जुड़नो चाहे तो तम आमना 9596012521 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर SMS करके अपना फरमा

जी हाँ सामीन, तामने ट्यून किया है आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त तम सुन रहे हैं थारो अपना प्रोग्राम मन पसंद गोजरी प्रोग्राम अपना मेजबान शौकत बोकड़ा के संग। तमने दस्तो चलो कि आज थारे वास्ते SMS बेस्ड प्रोग्राम पेश कियो जाए लगो। अगर तम भी इस प्रोग्राम में अगला आतार ना हमारे संग जुड़ना चाहें तो तम आमना 9596012521 इस नंबर पर SMS या फिर व्हाट्सएप करके अपना फरमाशी ना मारा तक पहुंचा सकें। नंबर एक बार फिर सुन लियो, नंबर है 9596012521। अगर जी मोहम्मद इकबाल मलनगामी की आवाज में गीत सुनो वास्ते हमना SMS की है हैदर मारी कलामाबाद ते फारूक अहमद खान और ने इनके नाल बाकी फरमाशी नाए सकीना बेगम जुनैद फारूक मुदस्सर फारूक तय जाकिर फारूक सुरफराव कंगन ते अपना SMS करें लतीफ अहमद रेना और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए रहूफ शेख खालदा जान साहिल तनवीर ते अफरोजा जान द्रागदन DH पुरा कुलगाम ते निसार अहमद गोरसी शबीर अहमद गोरसी शरीफ अहमद गोरसी रफाकत अहमद जैतूना बेगम ते बग्गी बेगम खड़ी कावना तेजी अपना SMS करें शबीर अहमद और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए गुलाम रसूल चौहान नजीर अहमद चौहान बशीर अहमद चौहान मेहरान अहमद मरियम बेगम जुलेखा बानो यास्मीना जान रोशनी जान नसीमा जान ते शकीला जान बंगवाड़ बाला सईद मोहल्ला ते अमन SMS की है सईद।

पीर शाहरानी, इनके नाल बाकी फरमाशी नाए सईद अबरार शाह, सईद मुदस्सर शाह, सईद जुबैर शाह ते सईद आलम शाह और इनका बाकी संगी साथी। डन्ना लोरन पहुंचते जी अमना एसएमएस की है मुश्ताक अहमद खटाना और ने, इनके नाल बाकी फरमाशी नाए गुलशाद बेगम, इनका बाकी संगी साथी। एक और एसएमएस आई है और इस एसएमएस में इन्होंने अपनी जा को ना नहीं लिखा। इस एसएमएस में जिड़ा फरमाशी नाए वे इस तरह आए, अदनान लाली, अनवर लाली, शनवाज लाली, आफाक लाली, अयान ते अयाज। इन ते गुजारिश है कि आइंदा जद भी ये एसएमएस करें का ते अपनी जा को ना पहला जरूर लिखें का। अगे जी टोक सात सर चोरनाड़ ते अपना एसएमएस करें, बिजरान बिशारत नाजुर, इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए महामंद यासीन बिजरान, रजिया बेगम, आबदा बानो ते आयशा जान। तम सारा दोस्तों की पसंद पर मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज़ में पेश है यो गीत।

आमना एसएमएस करें आरी मार्ग खड़ी रामबन ते फरीद अहमद चौहान साहब और इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए अब्द लतीफ चौहान महामन यूसुफ चौहान शौकत अमन चौहान इकबाल अहमद तेड़वा शाहिद लतीफ मासूमा फरीद आसफा शौकत ते जमीला यूसुफ दारा फकीर गुजरी ते फारूक अहमद बजरान सकीना बानो इरफान अहमद रहीम अली ते मुदस्सर अहमद शंगलीपुरा बडगाम ते गुलाम मोहम्मद मलिक मोहम्मद अशरफ मलिक फरीदा बानो दिलशादा जान शाहीना जान मसरत जान शमीमा जान अफरोजा जान आसिफ मलिक ते गुलाम कादर लदा कला रूस ते शमीम अहमद खटाना जरीना बेगम फरीदा बानो इम्तियाज अहमद खटाना मुस्कान शमीम तिनका बाकी संगी साथी नंदी मार्ग डीएचपुरा ते जफर इकबाल मोहम्मद इकबाल देदड़ मुश्ताक अमन देदड़ गुलजारा बानो मास्टर मोहम्मद अशरफ देदड़ नसीम नासर अहमद देदड़ शाहबाज इकबाल ते इंजीनियर एजाज अहमद देदड़ गुजर बस्ती बनीमोला कुलगाम ते रुबीना जान अब्दुल कयूम जागड़ अब्दुल अजीज चेची शकीला बेगम फैजान जागड़ रिजवान जागड़ ते रिफत कयूम उड़ी गरकोट ते रशीद चेची राशिद चेची अब्दुल रशीद चेची ते शबीर अहमद चेची तम सारा दोस्तों की पसंद पर पेश है योगीर।

अज्ञा जी, संजीत थॉमस की आवाज मा थारे वास्ते लोक गीत पेश कियो जाए को। और इस लोक गीत ना सुनो वास्ते आमने SMS करें गुंड अक्कू ते शकील आमंद चेची और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए अब्दुल कयूम चेची, केसरा बेगम, मुनीरा बानो, सजाद आमंद, कासिम जान, जब कुरहामा ते यास्मीना जान, तबस्सम शबीर, शाहिदा जावेद, कुलसुम शबीर, शबनम शबीर, फलक सलीम, आफरीन इकबाल, बसरा यासर, मेहरान इकबाल, अलीजा आरिफ, फाजिया सलीम, ते महविश इकबाल, बारामुल्ला, महमूद आबाद ते अमन SMS करें इरशाद आमंद चेची और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए उर्वा इरशाद, शगुफ्ता रशीद, हमजा बिन इरशाद ते मोहम्मद आरफ चाड़। कोंड नगीनपुरा काजी गुंड ते मोहम्मद इकबाल देदड़, अजमल इकबाल देदड़, नसीम अख्तर, फयाज आमंद, शाहिद, रियाज आमंद, बशीर आमंद खान ते इनका बाकी संगी साथी। लद्दू पांपर ते अमन SMS करे मोहम्मद अनवर बोकड़ा और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए उमर बोकड़ा, मेराजदीन बोकड़ा, मोहम्मद इमरान बोकड़ा, रुकैया बेगम, अमीना जान ते हाजी अली जान बोकड़ा। गोंड कमल ते मोहम्मद सलीम चेची और अमन SMS करें और इस SMS ते बाद एक और SMS है आस्थान मार्ग दारा ते अमन SMS आई है और इस SMS मा फरमाशी नाए मौलवी मोहम्मद अमीन, मौलवी मोहम्मद यूसुफ, मौलवी मोहम्मद अजमत अली, मोहम्मद रहमत अली ते हशमत अली। लतीफाबाद बारामूला ते मंजूर आमंद बजाड़, शाहिद आमंद बजाड़, आरिफ आमंद बजाड़, सगीर आमंद, ओवेस आमंद, हाशिम आमंद, इफ्रा जान, आफिया जान, अजमत जान, यासर गेगी, मुदस्सर गेगी ते शफीक गेगी। तम सारा दोस्तों की पसंद पर संजीत थॉमस की आवाज में पेश है यो लोग की।

बेगम तय नाजिया जान, गोशबुग पटन ते गुलाम हसन यतु, महामंद अकबर यतु, अली महामंद यतु तय सदाम हुसैन यतु। चिठी बांडी ते महामंद अनवर खटाना, नूर महामंद खटाना, फैजान खटाना, एहसान खटाना, मोहसिन, मरियम बानो, गुलजारा बेगम तय शौकत खटाना। तम सारा दोस्तों की पसंद पर एजाज बट की आवाज में पेश है यो गीत।

0: आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: मीडियम 208.8 एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन पेश होगा। पहले मकामी गोजरी खबरों का बुलेटिन।
2: सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है, गोजरी खबरनामो ले गए हूं मोहम्मद शरीफ पसवाल हाजिर। पहला कुछ खास खास खबरों की सुर्खी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों का दौरा का तीजा मरहला में पहुंचा स्वीडन। अपना हम मनसब के नाल करेंगे कई मामलों और तबादला ख्याल। नवी नस्ल ना मजहबी रिश्तों और रवायतों नाल जोड़नो वेला की लोड़। मुंबई में होया एक प्रोग्राम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुजारे ख्याल। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में सिविल ते पुलिस इंतजामिया के एहतमाम नाल सरगर्मी जारी। हाइपर टेंशन बारे बेदारी करान को आलमी ध्याड़ो अज। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्खों का अपना दौरा का तीजा मरहला में स्वीडन का दो रोजा दौरा पर गोथनबर्ग पहुंच गया है। अपना इस दौरा में वजीर आजम मोदी स्वीडन का वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन नाल मुलाकात करेगा, जिस दौरान वे आपसी तालकात का तमाम तर पहलुओं को जायजो लेगा। तय दो तरफा तजारत में वादा वास्ते संजयाली का नवा राह तलाश करेगा। वजीर आजम का दौरा का दूजा मरहला में कल भारत और नैदरलैंड ने अपना आपसी तालकात न करीदी साझेदारी की सतावर ले जान वर इतफाक कियो थो। इस मौका पर वजीर आजम ने क्यों
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुंबई में मनकदा नौवीं माटी समाज समारोह में शिरकत करता हुआ कहा जे पूर्वांचल सिर्फ जगराफियाई खितो नहीं बल्कि रूहानियत तहजीब और सकाफत की जिंदा अलामत है। उन्होंने कहा जे पूर्वांचल और महाराष्ट्र के बिष्कार तारीखी सकाफती और रूहानी रिश्ता सदियों तो कायम है, जिन्ना संता सोफिया ते अजीम शख्सियात ने मजीद मजबूत बनायो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक माता अहिल्या बाई होल कर गोनाथ राव ते मल्हार राव होलकर की खिदमात न खराज तहसीन पेश करता हुआ क्यों जे उन शख्सियात ने काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई मजहबी ते सकाफती मकामों की तामीर व बहाली में अहम किरदार अदा कियो है। उन्होंने क्यों जे नवी नस्ल न अपना मजहबी

0: या फिसलन वाले वरंडा या जगहों पे एहतियात से चलें। बाग में ज्यादा झुककर और घुटनों पे बैठकर काम ना करें। बाग में तेज चीजें एहतियात से इस्तेमाल करें। दीवारों पे सीढ़ी इस्तेमाल करने से परहेज करें। भारी चीजें उठाने से परहेज करें और पौधों को पानी देने के लिए लंबे हैंडल वाली चीज इस्तेमाल करें। ज्यादा धूप और दोपहर में बाहर ना निकलें।
1: जनूबी कश्मीर का अनंतनाग जिला में वाका तारीखी मारतंड तीर्थ मंदिर में आज तो महाकुंभ मेलो शुरू होयो। इस मेला न वन मास, अधिकतम मास या पुरुषोत्तम मास का नया नाल भी जाने जाए ते यो मेलो एक महीने तक जारी रहेगो। इस मेला में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद शिरकत कर रही है। मारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ने खबर दी है जे मेला का शुरू व ट्रांसपोर्ट का वजीर सतीश शर्मा ते एमएलए अंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी मौजूद था। मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हूं सतीश शर्मा ने क्यों
2: श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट मटन अनंतनाग इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है। तो कहने का मतलब आज जरूरत है वसुदेव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। वी आर वन और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है। जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं, तो यहाँ से मैसेज हम जम्मू कश्मीर के वासियों का फॉर ब्रदरहुड पीस प्रॉस्पेरिटी, और हम कोशिश करेंगे वही माहौल तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है। तो हमें उन लोगों को उजागर भी करना है जो मोहब्बत का, इंसानियत का, प्यार का पैगाम दे। हमसे बेहतर धरती कोई नहीं, ये ऋषियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है।
1: इसके नाल ही गोजरी खबरनामा मुक्यो। आकाशवाणी श्रीनगर तू खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। दो इजाजत, रब रखो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर शाम शबजित 5 मिनट सब दे पेश प्रोग्राम गर्मी बाय खतरा।

0: Gloomy Boys Panun Program Bozan. Programming Producer Ch Vasim Farooq. Isha Akashwani Srinagar Son Dui Melan Bozio.
1: Akashwani Srinagar. Apni ghadiya milaiye. Sherbin Time. Sham ke 7 baje.
2: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: हालत और लोगों की परेशानी एक संगीन मसला बन चुका है। इधर जुहामा इलाके के सोगाम, रांगर और महनूर के लोगों ने शहरबिन को बताया कि अगर कई साल कबल फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम शुरू किया गया लेकिन नामालूम वजूहत की बुनियाद पर काम को रोक दिया गया, जिसकी वजह से इलाका सोगाम चाड़ा के लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर लोगों ने महकमा जल शक्ति के अफसरान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उधर चाड़ा डिवीजन के ही पकरपुरा इलाके में भी लोग फिल्ट्रेशन प्लांट के नाकस निजाम के बाइस गंदा पानी से नाला है, जिसकी वजह से पकरपुरा और इसके नवाई इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत ने आवाम की जिंदगी अजीर बना दी। इलाके के मकीनों के मुताबिक पुरानी बोसीदा और जंग आलूदा पाइप लाइने अक्सर ब्लॉक रहती है, जिसके 22 बल्कि बस्ती पकरपुरा के लोग साल साल से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं, जबकि पकरपुरा के दीगर देहात जिनमें टलवन, फुटलीपुरा, शंकरपुरा, कारीपुरा और चकशेरू शामिल में भी पीने की किल्लत पर लोगों ने सख्त नाराजगी जताई है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के अरकान और हाउस कमेटी ने चाड़ोरा डिवीजन में जल शक्ति महकमे की स्कीमों, खासतौर पर जल जीवन मिशन के तहत जारी प्रोजेक्ट का मुआयना किया, जिसकी सरबराही एमएलए पापुर जस्टिस हसन मसूदी और कई एमएलए जिनमें अली मोहम्मद डार, तनवीर सादिक, एजाज जान, रियाज बेदार और रफीक नाई के अलावा महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान अगर कमेटी ने शफाफियत और जल जीवन मिशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि आवाम के फायदे के लिए पानी की फराहमी के मनसूबों की बर वक्त और मौसर तकमील को यकीनी बनाया जा सके। गौरतलब है जल जीवन मिशन से वाबस्ता ठेकेदारों ने मिशन से मुतलिक पेशरफ्त और मसाइल का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई जायजा कमेटी के दौरे के दौरान शदीद एहतजाज किया। बकौल ठेकेदार, अदायगी न होने की वजह से कई मनसूबों पर काम तकरीबन 2 साल से मुअत्तल रहा और ज़ेरे इल्तवा वाजिबात की फौरी मंजूरी के अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन अब एक संगीन मसला बन गया है और तमाम ज़ेरे इल्तवा कामों और अदायगियों को मजीद ताखिर के बगैर हल किया जाना चाहिए। अवामी हलकों ने सब डिवीजन चाड़ोरा के इंतजामिया से मुतालबा किया कि पानी की किल्लत को दूर करने के खातिर मवसर इकदाम उठाए जाए, ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
1: चाडूरा सब डिवीजन में सार्फिन को नाकिस पानी फराहम, यूनिस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने मजकूरा मामले की निस्बत से कानून साज असेंबली की मुतालिका कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बिलाखिर चाडूरा के आवाम जो शिकायतें खासे वक्त से कर रहे थे, कमेटी ने उनकी तायीद की है। जफर मीर लसजन ने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा सरकार मामले की संगीनी का सरनीजा नोटिस लेते हुए चाडूरा हल्का इंतखाब में पीने का साफ पानी फराहम करने और दीगर मुतालिका इंतजाम करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि मुतासर आबादी की बरसों पुरानी मांग पूरी हो सके। हमने अभी कुछ वक्त पहले एग्जिट इंजीनियर महकमे जल शक्ति गौहर नबी खान से बात की, जिन्होंने मामले की वजाहत कुछ यूं की।
2: नेशनल लेवल की बात है कि आप सबको पता है आज की हालत यह है कि पिछले लगभग 1.5 साल से 1 रुपया भी नहीं आया इन एजेंसी का, तो आप समझ लीजिए कि 1.5 साल से जेजेएम का कोई काम हुआ ही नहीं। से एक काम भी थोड़ी सी पाइप का लगती है वो भी एजेंसी लगाने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर हेल्ड अप। उनका कुछ हमारा बैलेंस है राउंड अबाउट 32 करोड़ जो उनकी पेमेंट बाकी है, इसकी वजह से ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए हमारे चाडोरा में 59 जेजेएम स्कीम्स में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और आज की तारीख में खाली 6 फिल्ट्रेशन प्लांट्स कम्प्लीट हुए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि खाली 6 कंप्लीट है, 22 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पेंडिंग है, उनका काम 70% से लेके 90% तक हुआ है, कुछ का 30-40% पे ही है। तो राउंड अबाउट 22 फिल्ट्रेशन प्लांट्स एज ऑन डेट आर पेंडिंग चाडोरा डिजन बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक विच इज लिंगरिंग ऑन सिंस 1.5 ईयर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पोर्टेबल है वाटर है वो हम सप्लाई करना नहीं कर सक रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इनकी पेमेंट आ जाती है, ये रवा इनका बैलेंस आ जाता है तो ये काम चालू हो जाएगा। इसी जमन में क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, जे में कोई काम नहीं हो रहा है, तो मेजर रीजन इसी का है कि इनके जो बैलेंस पेमेंट है वो वागुजार नहीं हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है।
1: आप कह रहे हैं कि 1.5 साल से कोई पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के लिए नहीं भेजी गई है, पेमेंट नहीं आई है, इसी वजह से ठेकेदारों की जो अदायगियां हैं वो रुकी पड़ी हैं और काम रुका पड़ा है। तो आपके जो हायर अप्स हैं उन तक ये बात पहुंची है कि वहां फंड्स जा रहे हैं, तो उन्होंने बात आगे टेकअप कर ली हो?
2: हाँ, ये इशू तो चल रहा है, इनका रिजॉल्व हो रहा है इंशाल्लाह ताला। अभी से 1 मंथ ईद के छोटी ईद के पहले कुछ पेमेंट से 10 लाख कुछ ऐसा वागुजार हुआ था, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ये नेशनल लेवल पे इशू हो रहा है क्योंकि नेशनल लेवल पे थोड़ा सा इससे कुछ कंप्लेंट्स हुई थी, इसकी वजह से इसका नेशनल लेवल पे फंडिंग रुक गई, तो दे आर ऑन इट, वो रिजॉल्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली 1 मंथ या 2 मंथ लगेंगे तो पेमेंट वागुजार हो जाएगी। लेकिन हम जितना कोशिश करना चाहते हैं, हम एजेंसीज को इम्प्रेस करते हैं कि आप थोड़ा सा जो पेंडिंग काम है वो कीजिए, बट कहीं ज्यादा

0: कुछ कामयाबी नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली विद इन वन मंथ और टू मंथ्स गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी पेमेंट बागुजर हो जाएगी और जो ही इनकी पेमेंट्स आ जाएंगी तो हमारे काम दिन दुगना रात चौगुना चालू हो जाएंगे।
1: जो विद इन डिपार्टमेंट आपके पास इनपुट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि एक दो मंथ के अंदर ये मसला हल हो जाएगा और फंड्स आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से।
0: एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, वो शिद्दत से काम कर रही है और वो चाह रहे हैं कि कुछ जो स्कीम्स होती हैं वो रेट्रोफिटिंग स्कीम मैक्सिमम होती हैं, कुछ न्यू स्कीम्स होती हैं और कुछ रेट्रोफिटिंग स्कीम्स होती हैं जहां पर हम पाइपलाइंस खाली और छोटे मोटे वर्क्स होते हैं तो उन पे गवर्नमेंट ने ये रिजॉल्व किया है कि हम इनको अंडर यूटी कैपेक्स फंडिंग देंगे और गवर्नमेंट ने हमसे डिटेल्स ले चुके हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स के यूटी इसमें रेट्रोफिटिंग में स्कीम्स आ रही हैं तो उनको अंडर यूटी कैपेक्स गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ये सोच रही है कि हम उनमें फंडिंग करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम्स है रेट्रोफिटिंग स्कीम्स है उनको अपनी फंडिंग देने से इनकार किया है। तो दैट इज वाई जेएंडके गवर्नमेंट इज टेकिंग अप इट इन यूटी कैपेक्स और यूटी कैपेक्स में उनकी फंडिंग हो जाएगी लेकिन जो न्यू स्कीम्स है उनका सेंटर से शेयर आ जाएगा और उसमें भी गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट और इंशाल्लाह ताला आई थिंक विद इन वन और टू मंथ्स दिस इशू विल बी सॉल्वड।
1: अगले एक दो माह के अंदर चाडूरा हल्का इंतखाब में जल जीवन मिशन का काम दोबारा शुरू होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे जल शक्ति गौहर नबी खान की यकीन दहानी। उधर अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने आज सदियों पुराने पानसत मेले में शिरकत की जो एक रिवायती इज्तमाई तकरीब है और जिसका बुनियादी मकसद कुदरती चश्मों की सफाई है। ये चश्मे इलाके में पीने के पानी और जरई जमीनों की आबपाशी का अहम जरिया है। ये सालाना मेला जो मकामी सतह पर इज्तमाई मछली पकड़ने की सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है, इस मौके पर आज मकामी लोग रिवायती टोकरियां और जाल लेकर नदी नालों और चश्मों में उतरकर मछलियां पकड़ते हैं। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे, अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
5: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
6: क्यों? सुन के डर लगाना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाई टू गुड लाइफ।
7: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण ले और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दे।
8: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। अनंतनाग से इस तारीख की इतला कि आज ट्रांसपोर्ट और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने तारीखी मारतंड सूर्य मंदिर में एक माह तक जारी रहने वाले बनमास महाकुंभ का इफ्तिताह किया। तकरीब में कानून साज असेंबली के मुतअद्दिद अराकीन भी मौजूद थे जबकि कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ सतीश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
9: एक तो हार्दिक स्वागत और सारी कमेटी को, खास करके मेरे एक डायनेमिक विधायक जी हैं, सारी कमेटी, जितने यहाँ पर पंडित लोग हैं, सेवादार लोग हैं और जो मेरे शहर से आए हुए लोकल आए, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और गवाह करते ये श्री मार्टन तीर्थ ट्रस्ट जो है मटन अनंतनाग, इनका बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा है। यहाँ पर तो आपको पता ही शक्तियां, इसी की वजह से सारी पृथ्वी की संरचना हुई और ऋषि कश्यप जी का हिस्ट्री तो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब आज जरूरत है वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु

0: किना सर्वे संतो निरभया, वी आर वन। और हमें सबके भलाई के लिए कामना करनी है। हमारी ताकत इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी एकता, हिंदुस्तान की एकता, जम्मू कश्मीर की एकता की आज जरूरत है, जो विश्व में माहौल है अच्छा नहीं। ब्रदरहुड, पीस, प्रॉस्पेरिटी, यही है हमारे चीफ साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर साहब का है। और हम कोशिश करेंगे वही माहौल तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है। तो हमें उन लोगों को,
1: ये थे ट्रांसपोर्ट और खेलों के वजीर सतीश शर्मा, जिन्होंने आज तारीखी मार्तन सूर्य मंदिर में बानमास महाकुंभ का इफ्तिताह किया। सरन वादी के कई इलाकों में गुज़श्ते दिनों शदीद झालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवे बागात और सब्जी की फसल को खासा नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में अलबत्ता बेशतर मुतासर काश्तकारों का कहना है कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू महकमा जात ने अभी तक नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज शहरबीन से बात करते हुए मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। उनके बकौल उमर अब्दुल्ला सरकार मेवा सनत की निस्बत से बिल्कुल गैर संजीदा है।
2: सबसे जो ज्यादा जालबारी के लपेट में आ गया वो तहसील पटन आ गया, और तहसील पटन का तापर क्रेरी जो भी उसके मलहकी जात है, वहाँ जो फूट था, से था, वो खत्म होकर रह गया। सुबह सोपोर के एरिया में जो रफी आबाद का बहुत सा हिस्सा था वो जो लपेट में आ गया, और इससे फूड इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो गया। लेकिन ये नेचुरल कैलमिटीज के साथ साथ और भी जो वजूहत है जिसने फूड इंडस्ट्री को खत्म करके रखा है। लेकिन कभी नेशनल हाईवे बंद होता है, कभी जो जो पिछले कई ढाई से टर्मिनल रहा, इससे भी फूड इंडस्ट्री जो तबाही के दाहिने पर पहुंचे। लेकिन बदकस्मती है कि इसके बावजूद जो मौजूदा सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, वो इस अहम इंडस्ट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दे। क्योंकि हालांकि ये जो इंडस्ट्री है, जो ये फूड इंडस्ट्री है, ये हजारों या लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, और अगर ये फूड इंडस्ट्री खत्म हो गई तो यहाँ बेरोजगारी और बढ़ जाएगी और लोग कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। क्योंकि जो भी आमदनी, खासकर मैं नॉर्थ में भी कहूँगा, शुपियन इलाके में, सारी वैली में, वो तो सबसे बड़े जो जराए आमदनी है वो एक तो फूड इंडस्ट्री है और दूसरा टूरिज्म है। टूरिज्म को भी बहुत धचका लगा पिछले दफा जब वो कामयाब हुआ, और उसी तरीके से वो भी बड़ी इस वक्त तबाही की तरफ बढ़ रही है, और दूसरा जो हमारी फूड इंडस्ट्री है ये भी है। लेकिन सरकार के पास इसको रिजनरेट करने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि इसकी मार्केटिंग भी देखी जाए, इंसेंटिव फूड और उसको दी जाए, केसीसी लोन माफ किया, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दी जाए। जो पिछली सरकारी, जब पहली सरकारी होती थी, कांग्रेस के वक्त में भी जब सरकारें होती थी, उस वक्त भी सरकार पेस्टिसाइड पर सब्सिडी देते थे उसको फ्रोह के लिए। लेकिन ये सरकार न ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई राय देती है, किराए में राय रायत नहीं मिलती है, और अब जो हालात बन गए हैं, जो इस वक्त ग्लोबल जो सिचुएशन आ रही है, जो ईरान अमेरिका के जो वार से अब जो पेट्रोल में बढ़ गया और इस डीजल में बढ़ गया, इसका भी जो असर है वो फ्रूट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा काम है, उसका आज किराया बढ़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री खत्म होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पहले ही कहता हूँ कि जो सबसे दबदबी जो असर अंदाज होगी वो फ्रूट इंडस्ट्री होगी। फ्रूट इंडस्ट्री खत्म होगी, लाखों बेरोजगार होंगे। इसमें बड़ी जरूरत है एक तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की, और बड़ी डिमांड है सोपोर फूड मंडी, वहाँ कोल्ड स्टोरेज कायम करने का, इसी तरह कोई जूस फैक्ट्री, इस किस्म का जो अच्छे पैमाने पर अगर यहाँ जूस फैक्ट्री हो, यहाँ सी ग्रेड बी ग्रेड जो एप्पल है वो वहाँ इस्तेमाल करके यहाँ के ग्रोवर्स को आमदनी आ सकती।
1: ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। मारूफ स्टेज और टेलीविजन अदाकार शब्बीर अहमद हक्काक के वालिद गुलाम नबी हक्काक आज सवेरे इंतकाल कर गए। वो कुछ दिनों से अलील थे। गुलाम नबी हक्काक की वफात पर मुख्तलिफ समाजी और दीनी अंजुमनों ने रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान बिलखसूस शब्बीर अहमद हक्काक से ताजियत की है। इधर सऊद श्रीनगर की मारूफ समाजी शख्सियत और ताजिर शेख अली मोहम्मद आज इंतकाल कर गए। वो कुछ वक्त से अलील थे। वाज़ेह है कि मरहूम शेख अली

0: मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चचाजाद भाई थे। उनकी वफात पर वादी की मुख्तलिफ समाजी और दीनी अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सुरवार खानदान से ताजियत की है। सदन किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे दरियाओं और नालों पर पुल मौजूद न होने की वजह से मुतल्लिका आबादी का उबूर मरूर रोजाना खतरे की धार पर रहता है। बताया जाता है कि इनमें से कुछ नालों के ऊपर दहाइयों पहले बने गए पुल और ऐसे कई आर्जी पुल पानी के रेलों के साथ बह गए, जब से उनकी तामीर नौ पर तवज्जो दिया जाना बाकी है। ये सूरत हाल किश्तवाड़ के बोंजवा, पार्डर, चिसोटी और दीगर कई इलाकों में पाई जाती है। याद रहे कि पिछले साल अगस्त के माह में चिसोटी में आई तुगयानी ने जहां बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाया, वहीं कुछ पुलों को भी तबाह कर छोड़ा। मुतल्लिका आबादी इंतहाई परेशान है और हुकूमत से रह रहकर मुतालबा करती है कि पुलों की तामीर यकीनी बनाई जाए। एक रिपोर्ट के साथ मुश्ताक देव। बिस्मिल्लाह, 1 2 3 एंड गो।
1: तकरीबन 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल जिला किश्तवाड़ की अक्सर आबादी दिली इलाकों में रिहाइश पजीर है। ये दर्जनों देहात कहीं कहीं हमवार इलाकों और कहीं कहीं पहाड़ी चट्टानों और ढलवान इलाकों में कायम है, जहां पहुंचने के लिए इन लोगों के अलावा सरकारी मुलाजमों और खानाबदोश लोगों को माल मवेशी लेकर कई पुराब नालों और कहीं कहीं दरियाओं को भी पार करना पड़ता है। अगर पुल तामीर शुदा हो तो बसूरत दीगर इन्हें बड़ी दूर की मुसाफत तय करके किसी मुतबादिल जगह से गुजरना पड़ता है। शहरबीन को कई कई जगहों से शिकायत मिलती रहती है कि वहाँ के लोगों को एक जगह या एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए बह रहे हैं आबी नालों पर पुल ही नहीं है। जान जोखिम में डालकर मजबूरी में इन आबी नालों में जाकर उन्हें पार करना पड़ता है, जैसे बंजवा के बुद्धार और बीसिया वाली देहात के लोगों को करना पड़ता है। बताया जाता है कि वहाँ जो गाड़ी आर पार होती है वो भी पूरा आब नाले में से गुजरती है, जो बहरहाल खतरों से खाली नहीं है। 14 अगस्त 2025 को चिशोटी पाडर में सैलाब की सूरत में जो कयामत सुगरा पपा हुई थी, वहाँ के बालाई हिस्से में कई लोगों की लाशें काफी तकोदव से कई पत्थरों और मलबे और मिट्टी से निकाली गई थी और 100 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। अगरचे हुकाम ने उस वक्त चिशोटी इलाके का दौरा किया और आवाम से यह वादा किया था कि इस तबाहशुदा नाले पर एक जदीद तर्ज का बड़ा आहनी पुल तामीर किया जाएगा ताकि यात्रियों और मुकामी लोगों को परेशान न होना पड़े। याद रहे कि मशहूर मचेल यात्रा में लाखों लोगों को इसी नाले पर से गुजरना पड़ता है।
0: किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी, लेकिन वक्त की तंगी के बाइस ये रिपोर्ट आप पूरा नहीं सुन पाए। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये रिपोर्ट पूरी की पूरी नष्ट हो जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबून कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में से विटामिन ए तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
7: तो से क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने यहाँ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में।
6: मगर ये है सठा द्रोह।
7: हाँ ना सुई कम मत।

0: आज अपनी सेल्फ इनमरेशन मुकम्मल कर ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि इस मरहले में घरों की फेरिस्त साजी और रिहायशी मालूमात से मुतल्लिक कार्रवाइयां शामिल हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी में भरपूर हिस्सा लेकर अपनी मालूमात फराहम करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए मनाजिल से हमकरार कराने के लिए सरकार ठोस इकदाम कर रही है। ये बात उन्होंने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान कही, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से अमलाए जा रहे तरक्कियाती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू सूबे के पुंछ जिले में 57,98,00,000 रुपये लागत वाली वाटर सप्लाई, आबपाशी और दीही राबता सहूलियात के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर खत्ते की मुतवाजन तरक्की के लिए काम कर रही है। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बारे में शुपियां जिले के आडिजन गांव से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म अरफात रियाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इंसान नशा करने से दिमागी और जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाता है और समाज में इसे हकारत की नजरों से देखा जाता है। दुनिया के हर मजहब ने नशे को गलत करार दिया है और इस पर पाबंदी आयद की है। हमें पुलिस और सिविल सोसाइटी के साथ बेअहमी तान करके इस बिदत पर काबू पाना होगा और ऐसे लोगों की सही रहनुमाई भी करनी होगी ताकि ऐसे लोग सही ट्रैक पर आ जाए।
0: नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। त्राल में पुलिस ने रफीक अहमद भट्ट नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई भांग की फसल को तबाह कर दिया। बारामुल्ला के करेरी इलाके में भी भांग की काश्त को तबाह कर दिया गया। बांडीपुरा, बारामुल्ला, बड़गाम और अवंतीपुरा में पुलिस के अहतमाम से नशा मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकद किए गए। सुंबल में पुलिस ने अद्वियात की कई दुकानों का मुआयना किया। अनंतनाग में पुलिस ने मनशियात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। शुपियां में पुलिस ने सरताज अहमद मोची नामी एक मनशियात फरोश की तकरीबन 4,00,000 रुपये की मालियत की 6 मरले जमीन अटैच कर दी। अवंतीपुरा और अनंतनाग में 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू सूबे में भी पुलिस ने ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों के दौरान कठुआ में सजाद अहमद और फारूक अहमद नामी 2 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया। उधमपुर में ऐसी एक कार्रवाई के दौरान शेर मोहम्मद नामी मनशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिला के कोशार इलाके में इमरान खान नामी ड्रग्स स्मगलर के गैर कानूनी तजावज को मुस्मार कर दिया गया। पुलिस ने डोडा जिला के बदरवा और गंदू इलाके में भंग की काश तबाह कर दी। जिला में साकिब हुसैन नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। सांबा में माम हुसैन नामी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोफरा में एक 8 माह के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। इस तरह इदारे के हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो शोबे ने तिब्बी खिदमात की फराहमी में एक और संग मील उपूर किया है। स्किम सोवरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इस कामयाबी के लिए मजकूरा शोबे के डॉक्टरों और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। ये बात काबिल जिक्र है कि जराही का यह अमल शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद गिलानी की सरबराही में डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया। मौसम में तब्दीली और गर्मी में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए तिब्बी माहरीन ने बुजुर्गों को रोजमर्रा के मामूलों में एहतियात बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने कहा है कि बुजुर्गों को दिन के दौरान घर से बाहर जाने में कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: बुजुर्ग लोगों को बालकनी और आउटडोर एरियाज में निकलने के वक्त एहतियात बरतना चाहिए। रेलिंग पर कभी ना झुकें, गीले या फिसलन वाले वरंडा या जगहों पे एहतियात से चलें। बाग में ज्यादा झुककर और घुटनों पे बैठकर काम ना करें। बाग में तेज चीजें एहतियात से इस्तेमाल करें। दीवारों पे सीढ़ी इस्तेमाल करने से परहेज करें। भारी चीजें उठाने से परहेज करें और पौधों को पानी देने के लिए लंबे हैंडल वाली चीज इस्तेमाल करें। ज्यादा धूप और दोपहर में बाहर ना निकलें।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।

0: पार्टी की नायब सदर प्रिया सेठी ने अखनूर में एक ऐसी ही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाना बीजेपी का मंशूर है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने बारामूला जिले के पटन और करेरी इलाकों का दौरा करके और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। शाहीन ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएंगे। वादी के एक मारूफ थिएटर और टीवी रेडियो अदाकार शबीर हकाक के वालिद गुलाम नबी हकाक आज सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई सकाफती, समाजी, अदबी और थिएटर से वाबस्ता कई अफराद और अंजुमनों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून और मारूफ थिएटर डायरेक्टर फिल्मसाज मुश्ताक अली अहमद खान ने भी मरहूम के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए शबीर हका के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहख्वानी 20 मई बुधवार को सुबह 10 बजे मकबरा आखून साहब कन मजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर इजहार ख्याल करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी भेजी जा सकती हैं। आम लोग इस मकसद के लिए 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। तजावीज और आरा इस महीने की 29 तारीख तक भेजी जा सकती हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतलिक बैन अल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हल करा दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम ने 300 मुश्तबा केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसला का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की वजाहत भी की है कि एबोला फूट पड़ने का यह मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मुहलिक नहीं है। भारत ने आबनाई हर्मस में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और उसे नाकाबले कबूल करार दिया है। अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आजादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निजाम के तहफ्फुज के बारे में अकवामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:27 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:28 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसिरा लेकर मैं नूर सबा। जब कभी हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं या मौसम का हाल जानने के लिए या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क का वक्त जानने के लिए अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेते हैं तो हम नजरों से ओझल एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं जिसने कुराह अर्ज को इंसान की एक मुट्ठी में बदल दिया है। ऐसे मौका पर याद आता है कि आज 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे है। फिर 17 मई सन 1865 का वो दिन भी याद आता है जब कुराह अर्ज पर इंसानों के दरमियान आपस में रवाबित को फरोग देने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की दाग बिल डाली गई। फिर 1969 में इस दिन को बाजाबता तौर मनाया जाने लगा। सन 2006 में इसी तारीख को टेलीकम्युनिकेशन के शोबे को महज इतलाती दायरे से बाहर लाकर जानकारी की इस सतह तक पहुंचाने का अजम किया गया जहां से ये शोबा कम तरीन वक्त में 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरनेट और मसनूई जहानत तक इंसान की रसाई कर सके। इसलिए आज की तारीख में टेलीकम्युनिकेशन दूर दराज इलाकों, फलकबोज पहाड़ों, सहराओं, रेगिस्तानी इलाकों और दुशवार गुजार इलाकों में किसी नागहानी सूरत हाल से कम वक्त में निमटने के लिए सबसे अहम किरदार निभाती है। इस तरह से अब टेलीकम्युनिकेशन का शोबा इंसानी जिंदगी के लिए महज मौज मस्ती या ऐश परस्ती नहीं बल्कि एक अहम जरूरत बन गई है जो न सिर्फ इंसान के मालो जान की हिफाजत, हिफ्जानी सेहत, हुसूल तालीम, काश्तकारी, फाइनेंस और हुकूमत चलाने में भी मददगार साबित हो रही है बल्कि टेलीकम्युनिकेशन इंसानी जिंदगी के अहम तरीन शोबा जात को आपस में जोड़े रखने में एक पुल का काम करती है जो हजारों मीलों की दूरियों को लम्हों में सिमट देती है। ये दिन मनाने की अहमियत इस बात में میں مزمر ہے۔

वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादी की आवाज लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा खलूस भरा सलाम कबूल फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत और खुश व खरम होंगे। हज़ब मामूल बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात वाक़ात के हवाले से। जी हाँ समीन, दुनिया में जब भी जंग छिड़ती है तो आम तौर पर उसके असरात तीन मुल्कों पर पड़ते हैं। दो वो जो जंग लड़ रहे होते हैं और तीसरा पाकिस्तान। ये जुमला बज़ाहिर तंज है मगर पाकिस्तान के माशी हालात देखे जाए तो ये तंज नहीं बल्कि एक तलख हकीकत है। पाकिस्तान न हर जंग का फरीक होता है न हर आलमी बहरान के जिम्मेदार, लेकिन हर आलमी बहरान के बाद सबसे पहले पाकिस्तानी आवाम की जेब का इम्तिहान शुरू हो जाता है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं और कभी दाल, आटा, सब्जी और दूध तक आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर अवामी बहस का मरकज बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं, यह उस मजदूर का किराया है जो रोजाना काम पर जाता है, उस तालिब इल्म की बस फीस है जो यूनिवर्सिटी पहुंचता है, वो छोटे दुकानदार का खर्च है जो माल मंडी से लाता है, और उस किसान की लागत है जो डीजल से ट्यूबवेल और ट्रैक्टर चलाता है। समय पाकिस्तानी हुकूमत अमूमन ये कहकर कीमतें बढ़ाती है कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है। ये बात मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी ईंधन से पूरा करता है, इसलिए आलमी मार्केट में तेल की कीमत, डॉलर की रेट, इंश्योरेंस लागत और जुग्राफियाई कशीदगी बराए रास्त पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज होते हैं। मगर आम सवाल यह है कि जब आलमी मंडी में कीमत कम होती है तो वहां फायदा आवाम तक मुकम्मल क्यों नहीं पहुंचता, और जब कीमत बढ़ती है तो बोझ फौरन वहां के आवाम पर क्यों डाल दिया जाता है। पाकिस्तान का मसला सिर्फ आलमी तेल नहीं बल्कि अंदरूनी माशी कमजोरी भी है। जब कोई मुल्क तवानाई के लिए बाहर की तरफ देखता हो, सन्नतें महंगी बिजली से परेशान हो, टैक्स नेट कमजोर हो, जखीरा अंदोजी ताकतवर हो और आम सारिफ वहां खैर मुनज्जम मार्केट के रहमो करम पर हो, तो फिर हर आलमी बहरान अंदरूनी बहरान बन जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही किराया बढ़ता है, किराया बढ़ते ही सब्जी महंगी होती है, सब्जी महंगी होते ही घर का बजट टूटता है, और घर का बजट टूटते ही माशराती दबाव, कर्ज, बेचैनी और मायूसी बढ़ती है। समिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सनीचर की शब एक पुलिस चौकी पर खुदकुश हमले में 15 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी के बयान ने एक बार फिर शिद्दत पसंदी और अमन अमां के मामले पर विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान हम आहंगी पर सवाल उठा दिए हैं। सुहेल आफरीदी का कहना था कि हम मुसलसल कहते रहे हैं कि दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, लेकिन 78 साल से मुसलसल बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजहरा किया। अवाम को अपने हकूक और अमन के लिए खड़ा होना होगा, वरना मुसल्लत शुदा हालात बरकरार रहेंगे। ख्याल रहे कि सनीचर की शब बनू में पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लत शिद्दत पसंदों ने हमला किया था, जिसमें कम अज कम 15 अहलकार हलाक जबकि उसमें 3 जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इतिहादुल मुजाहिदीन नामी ग्रुप ने कबूल की है। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि इस हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। बन्नू हमले के हवाले से पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि फतेहखेल चौकी के करीब पहले एक लोडर रिक्शा से धमाका किया गया और बाद अज़ा भारी हथियारों की मदद से फायरिंग की गई। धमाका इतना शदीद था कि पुलिस स्टेशन की पूरी इमारत मुनहदिम हो गई और ज्यादा हलाकतें पुलिस एहलकारों के मलबे तले दबने की वजह से हुई। ये पहला मौका नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन अमां की सूरत हाल पर सिक्योरिटी इदारों का नाम लिए बगैर सूबे में उनकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है। समीन, दूसरी जानिब बन्नू हमले पर तबसरा करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी की जंग सिर्फ एक सूबे की नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। ताहम माहरीन कहते हैं कि सूबे में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुकदान है, जिसकी वजह से वजीर आला की जानिब से ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। तजियाकार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करती रही है और मुजाकरात की हामी है। बंद कमरों में फैसलों से मुतल्लिक भी उनका बयान इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जा रहे हैं और कोई मशावरत नहीं की जाती है। अदम एतमाद की मिसाल देते हुए तजियाकारों का कहना है कि चंद रोज कबल पिशावर के इमरान खान स्टेडियम में मौर का हक के हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीर थी, जिसमें सुहेल आफरीदी को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो शरीक नहीं हुए और उनकी कुर्सी पूरी तकरीब के दौरान खाली रही थी। तजियाकारों के मुताबिक इस तरह के सख्त बयानात वजीर आला की बेबसी जाहिर करते हैं कि सूबे

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समित, जहां जमीन पर तेल होता है वहां कुदरती गैस का होना एक कुदरती बात है। पाकिस्तान में सुई के मकाम पर तेल और गैस के जखायर मौजूद हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी तेल के वसी जखायर दरियाफ्त हुए थे, उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं लाया गया, ये भी एक राज है जिसे जानने की आवाम को फुर्सत नहीं। पाकिस्तान में मेहनत से कुदरती वसाइल जमीन से निकालकर खुद कफील होने के बजाय हुक्मरानों और आवाम को रेडीमेड तेल, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने में बड़ी दिलचस्पी है। दरअसल पाकिस्तान में कुदरती गैस और तेल का बहरान भी इसी रेडीमेड तर्ज अमल की एक हकीकत है, इसीलिए उनकी कीमतें बढ़ती ही रहती हैं। अगर जंग आज खत्म हो जाए तब भी तवानाई की सप्लाई और कीमतों को मामूल पर आने में पाकिस्तान में महीनों लग जाएंगे। समित, पाकिस्तान में बिजली का शोबा उन मसाइल का सामना कर रहा है जो महज बिजली की तलब और रसद से कहीं ज्यादा पीछीदा हैं। बढ़ते हुए टैरिफ, नाकाबिल एतमाद सर्विस और निजी पावर प्रोड्यूसर्स पर इनिसार ने एक ऐसा निजाम बना दिया है जहां आम बिजली सार्फीन पर ज्यादा अखराजात का बोझ डाल दिया गया है। इस बहरान की जड़ में आईपीपी मॉडल की खामियां शामिल हैं जो पावर प्रोड्यूसर्स को मुनाफा बख्श बनाता है लेकिन वहां आवाम को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ पाकिस्तान ने अपने 1990 बिजली के शोबे में निजी सरमायाकारी पर इनिसार किया। 1994 में आईपीपी मॉडल मुतारिफ करवाया गया ताकि खैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और बिजली की किल्लत को कम किया जा सके, लेकिन वक्त के साथ ये मॉडल खैर पैदावार साबित हुआ। आईपीपी स्पॉन्सर्स छोटी सरमायाकारी करते हैं जबकि बाकी सरमाया हुकूमत के जरिए हासिल करदा कर्जों से फराहम होता है। पाकिस्तान में बिजली के नरख अब खित्ते में सबसे ज्यादा हैं, जो माली तौर पर पहले से दबाव का शिकार आवाम पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। इसके नतीजे में न सिर्फ वहाँ बिलों में इजाफा हुआ है बल्कि अक्सर लोड शेडिंग का भी सामना है। समझ ये थी चंद बातें पाकिस्तान में बिजली बहरान के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर लीजिए ये नगमा सोनी है।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

सुनील रात 9:30 पर आकाशवाणी श्रीनगर का पॉडकास्ट नष्ट होगा। मेहमान हैं वादी के मारूफ अदीब और शायर जरीफ अहमद जरीफ। प्रोग्राम में इनसे हम कलाम हैं तबरेज़ मदनी।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

हर दिल में जगह बनाए तो देर किस बात की। राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से मैं खबरें पेश हूँ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर

0: निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि

तीन अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरतहाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसायल, सेमीकंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नख़्लो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़रा आज़म की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीसन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीसन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरतहाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीसन कल केरलम के वजीराला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीराला वी डी सतीसन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया।

4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तस्दीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों, जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्यू युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
1: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम ज्यादातर 88.8 मीटर तो एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज पेट रात संज 9:30 बजे पेश आकाशवाणी पॉडकास्ट। मेहमान वादी हिंद मारूफ शायर तो अदीब जरीफ अहमद शरीफ इमान से हम कलाम तब रही मत नहीं।

ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप पेश हैं फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जावेद अंद्राबी।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश लेकर एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों आज भी हमें आपके ढेर सारे ईमेल्स और खतूत मिले हैं जिनमें आपने अपने मनपसंद नगमों की फरमाइश की है। लेकिन इससे पहले हम अपने नए दोस्तों, नए सुनने वालों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मदऊ करते हैं ताकि वो भी अपनी फरमाइशी ईमेल्स या खतूत भेजकर हमें अपनी फरमाइश पूरी करने का मौका फराहम करें। इसलिए हम उन तक प्रोग्राम का पता पहुंचा देते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 190001। मेल के जरिए फरमाइश भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो दोस्तों आपकी फरमाइश प्रोग्राम का पहला नगमा हम आपके लिए पेश करते हैं। इसे मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये गाना सुनना चाहते हैं हमारे ये दोस्त। यह हैं द्रीगाम बड़गाम से इम्तियाज अहमद मलिक, मोहम्मद इकबाल मलिक, बदलापुर से विजय विडालकर, लता विडालकर और अजन किया विडालकर, नाज मंजिल मासूल सीतामंडी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू और नवासी हुमैरा नाज। कोकलवारा उराई जिला मुजफ्फराबाद से मोहम्मद फैसल शेख और नुजत जहां नाज, शेख टोली समतीपुरा से मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मसरत जहां नाज। ये मेल आया है फाजिल का पंजाब से। लिखने वाले हैं भूषण खेरा, विशाल खेरा, वेशव खेरा, लड़ी खेरा, शालनी खेरा, तवाशी खेरा, वानी खेरा और आरबी खेरा। पद्मा टाकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, बरखा शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बिन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो दोस्तों आप सभी की फरमाइश पर पेश है आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से।

या 5 MHz पर। दोस्तों, अब हम आपको फिल्म सौतन से एक प्यारा सा गीत सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनना चाहते हैं चिट्ठी बांडी बांडीपोरा से हमारे पुराने और मुस्तकिल सामिया इश्तियाक वानी। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं। ये हैं अशफाक शफी, समीरुल इस्लाम, शौकत ऋषि, आकिब तेली, आज़ाद हुसैन, जावेद इकबाल डार, मुनीब खांडे, फिरदौस अहमद डार, डार जहूर, हयात अफजल गनाई और फयाज अहमद भट्ट। सालर पहलगाम से मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। संबलपुर कैंकर से ये हैं फगू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। बोरसला नायला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, हीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। छत्तीसगढ़ से रंगनी, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके दीगर साथी। आप सब दोस्तों की फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार का लिखा ये नगमा। इसका संगीत तरतीब दिया है उषा खन्ना ने और फिल्म का नाम है सौतन। ये रहा आपकी पसंद का नगमा।

दोस्तों, सन 1969 में फिल्म रिलीज हुई थी दो रास्ते, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म की कामयाबी के साथ साथ उसके सभी नगमे काफी हिट रहे। इसी फिल्म से एक नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वारगाम बीरू बड़गाम से नईम मलिक, हीमू जान, तायरा, रजिया जान, तब्बू रानी, ड्राइवर मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिल्किस जान, अशरफ डार, मंजूर डार, अल्ताफ खान, तनवीर खान और अब्दुल अहद खान। ये मेल हमें मौसूल हुआ है आसार शरीफ जनाब साहब आंचार से। लिखने वाले हैं साहिल डार, एजाज अहमद हमदानी, तारिक अहमद, फारूक अहमद मलिक और मोहम्मद आसिफ कोंदू। बसपोरा से गुलाम रसूल डार, अशफाक अहमद डार, अब्दुल हमीद डार, रियाज अहमद डार, उस्मान हमीद डार, दानिया और फलक। बराड़ा टाउन जिला अम्बाला हरियाणा से ये हैं हमारे सुनने वाले रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका। ये मेल हमें मिला है पंखा रोड जंगपुरी से। भेजने वाले हैं पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराई। कृष्णा पार्क दिल्ली से ये हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और वसल दीवाना। तो लीजिए समाप्त कीजिए फिल्म दो रास्ते से ये अपने जमाने का मकबूल नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

के लिए मेल के जरिए हमें फरमाइश लिख भेजी है बामरादा खाग से गुलाम कादिर वानी, शाहीना, अनीसा, समीना, फुरकान, रिजवान और जैना बेगम ने। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम विकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम। निजामाबाद तेलंगाना से ये हैं शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। इसी नगमे को इन दोस्तों ने भी पसंद फरमाया है। ये हैं मालीबुग इमाम साहब शुपयान से हिलाल अहमद खांडे और उनके साथ हैं हादिया, मदिया, सीरत, सालिक, रैहान और सफ्तर। तो दोस्तों समाप्त कीजिए अपनी फरमाइश का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है साजन, समीर के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में आइए कसूर फिल्म से एक नगमा सुनते हैं। सुनने वाले हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से ये हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक फेरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। ये पोस्टकार्ड हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लिखने वाले हैं हरदेव मीका, बरविंदर बर्क, जयतेग बर्क और मीका बर्क। बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवानगन, कौशल्या देवानगन, हेमलता देवानगन और डिम्पल देवानगन। जबीगुल बीरवा से ये हैं जावेद कश्मीरी। आप सभी दोस्तों ने फिल्म कसूर का नगमा सुनना चाहा है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। तो पेश है आज के प्रोग्राम की ये आखिरी सौगात।

तो ये था फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे इजाजत लेने से पहले आपको प्रोग्राम का पता एक बार फिर बताते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 1900001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो दोस्तों दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत। हम दुआ करते हैं आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब बखैर।

0: आप फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम सुन रहे थे, आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश कर रहे थे जावेद अंद्राबी। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें पेश होंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा

0: की रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was

मेरी दोस्तों अड़सठ आशारिया आठ एक मीटर और FM 103 आशारिया 5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। समीन, आज की मरीज बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

शब 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा गीत उम्बरी कहानी। कल आप दीपक कंवल की कहानी सुनेंगे कैप्टन किशोर। प्रोग्राम के मेजबान हैं रशीद निसामी।

प्रोग्राम सुबह का ही पेश खिदमत होगा सुबह 6:35 पर। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत प्रोग्राम पायम सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। आयुष का स्पॉन्सर प्रोग्राम सहते बदन ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी।

प्रोग्राम सूफी सदा पेश होता है सुबह 10 बजे। कल के प्रोग्राम का मौजू है सूफिया तुक सफर। गुलाम अहमद कावा और साथी शगरों पेश करेंगे दिन के 11:30 पर, दोपहर 2:30 और फिर सपहर 4:30 पर। इनसे आप कला में रामांडार और कला में शमस फकीर सुनेंगे। बजमिन सवार आस्तों की दोपहर 12:40 पर।

दिन के 1:10 पर NCERT का तार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। सपहर 3 बजे प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पार्टी प्रोग्राम सपहर 4 बजे नश्र होता है।

गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें शाम 5 बजे। दयाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात और वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरपीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। और रात 8:30 पर खेलों से मुतालिक प्रोग्राम पेश होगा स्पोर्ट्स टाइम। समीन यही कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 MHz पर। शब के 11:15 हुए हैं। हमारी आज की मर्जी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।

0: को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में से बाइबल जिसे कहते हैं वो है, पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने एमएनईएस किया, और उसके बाद आज के दिन वो एमएनआरई कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
0: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी।
0: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी।
0: जो ये बताता है कि किस का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन बोलते हैं, जो पंखा आप बताए उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी,
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज अंडेट प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था। फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीप बेस्ड इंसेंटिव, जैसे आप एक जनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा। बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी,
1: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NTPC है, NHPC है, SJVN है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
0: जी
1: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
0: जी,
1: जो हमारे डिस्कॉम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये

0: इसलिए अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है, कि कहाँ पर टर्बाइन जो हैं वो लगेंगी, या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है, जिसको हम पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सीवेट के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में। अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर है, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का
1: जी।
0: और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहाँ
0: है।
1: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी।
0: जहाँ पे कंटिन्यूअस विंड होता है होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी।
0: किसी
1: उससे हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी।
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी। सावन का महीना।

0: फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक लगभग, जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने किया हुआ है उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है, तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा
0: जी,
1: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला, मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते और कर रहे हैं, और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं
0: जी। बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें, ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है, ऐसे में अगर कोई है तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
0: जी,
1: बिडिंग का
0: जी,
1: एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो

0: उद्यमी हैं वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है, और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता
0: रोजगार
1: है, इसकी वजह से
0: मिलता रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा, आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
2: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
2: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
2: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है, जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है
1: जी।
2: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
2: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा

0: जाएगा
1: जी।
0: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट है, इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सब ये है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्कियां भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए, तो ये संभव है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते है और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं
1: जी। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
2: ये एक संस्था है
1: जी,
2: जो जितने भी हमारे टर्बाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
1: जी।
2: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है
1: जी,
2: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं, और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी,
2: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
2: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
2: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक दुविधा है, हर एक जो भी

0: पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो हैं इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं, ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है ताकि दोनों ही टर्बाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो।
1: जी।
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती है वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता।
1: जी, तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ, देखिए हर टर्बाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइड टर्बाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती
0: रहे। यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है।
1: जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रवीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाईलाइट्स हमको देखना चाहते हैं, तो जहाँ पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनुजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं।
1: जी,
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है।
1: जी,
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी,
1: जी
2: सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं, हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं, अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है।
1: जी,
2: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं, तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी
2: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं।
1: जी,
2: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं,
1: जी
2: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं।
1: जी,
2: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता है, तो वहां पे इनफैक्ट है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है। इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहां पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं।

0: है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहां पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहां से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको।
1: जी, लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए, या रिसर्चर्स हैं,
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है, टिप हाइट तक आप मान के चलिए, उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे।
1: जी, और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हैजर्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी रहता है। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए उसको छुए,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है। जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से।
1: जी,
0: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने की जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी।
1: जी,
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहां पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, और इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नई चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा। तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा।
1: जी,
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट।
1: जी,
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है। लाइक जो मैंने बता रहा हूँ, स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है। तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट पवन ऊर्जा का होता है, ये सबसे फ्रेंडली है।
1: जी, यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है, और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है। जी, तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं, और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और मंत्रालय के अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है, अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए, आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए

0: इस कौम अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको। ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते हैं।
1: जी, तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है। जी, हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है, और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में, और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: जी ओम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत की सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध

0: लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. I am Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Both the leaders have also agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star Commander, Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for PM Modi. Mr. Modi reached Gothenburg in the evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो। एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:10। बहुत बहुत स्वागत, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज के साथ।

मोहब्बत इंसान को शायर बना ही देती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये गाने लिखे ही उन लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने पहली बार किसी को देखकर दिल संभालना सीखा हो। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, दिन रात मौसम बातें, और फिर अचानक कोई जिंदगी में आता है और वही पुरानी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में, आप ही की।

कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जिसकी वजह से हम खुद को भी अलग अलग तरह से देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और यही जो बदलाव है वही हमें और करीब ले आता है उस इंसान के, या शायद खुद के भी। अगला गीत रवि साहब की आवाज में।

वही नजर आता है। बहार उस जैसी लगती है, घटा उस जैसी लगती है, और हर पल हर लम्हा उसके होने का एहसास कराता है, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज में।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 41 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonzalez.
2: Gonzalez?

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट। मैं

0: gully number 4, go, please.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: 70s और 80s के दौर के हीरो का भी अंदाज अलग होता था।

0: जय हंगा आ गई तू मैं काले से डर गए क्या
1: हमें काले

प्यार में रंग वंग कहाँ देखा जाता है, बस दिल साफ होना चाहिए। और वैसे भी मोहब्बत में लोग चेहरा नहीं स्वभाव याद रखते हैं। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार

0: रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: Sweden-India technology and AI corridor ko majboot karne ke liye thos initiatives par kaam karenge. Dono deshon ke startups aur research ecosystems ke beech sampark badhane ke liye हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: ही वेलकम्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीडिश कंपनीज टू इंडियाज ग्रोथ एंड एनकरेज्ड डीपर कोलैबोरेशन इन रिसर्च, इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। PM highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and solutions for the 21st century. The new

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते मुकेश की आवाज के साथ।

फिल्म हरियाली और रास्ता से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये सदाबहार गीत। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1962 में और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था विजय भट्ट ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ग्रामीण परिवेश और प्रेम को लेकर लिखी हुई प्रदर्शित ये फिल्म दर्शकों के दिलों में खास जगह इस फिल्म ने बनाई थी। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये फिल्म मनोज कुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अब सुनते हैं हम अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

आशा जी और रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था फागुन, संगीत ओपी नैयर का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। 1958 में आई ये फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था विभूति मित्रा ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी प्रणब रॉय ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला और भरत भूषण ने। फागुन फिल्म की कहानी बीजन के इर्द गिर्द घूमती है और जो एक जमींदार का बेटा है अपनी रिलीज पर फागुन 1958 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है और अगला गीत गीता दत्त की आवाज में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और 34 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म बरसात।

आशा जी, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बरसात की रात से। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया संतोष जी ने किया था और निर्माण किया था आर चंद्र ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। बरसात की रात फिल्म दो प्रेमियों शबनम और अमान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। 1960 में आई ये फिल्म 1960 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मधुमती से।

वक्त हुआ है 1:53 और 24 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते

0: पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: ही वेलकम्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than 2/3 majority in the Keralam Assembly elections. Union Home

तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 54 सेकेंड। आगाज हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की किशोर कुमार की आवाज के साथ।

अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। वाकई इन पुराने गानों की सबसे होती है कि ये दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को नजदीक लाने का काम करते हैं, और इस नजदीकी को हम और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ। अगला गीत लता जी की आवाज में।

वाकई कुछ लोगों की मौजूदगी हमारे जीवन में मोती की तरह होती है, जिसके साथ रहते हुए हमें सुकून मिलता है। कुछ रिश्ते हमें जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें गानों में, बातों में या फिर यादों में संभाल के रखना चाहिए। अगला गीत आशा जी की आवाज में।

पीकर घंटों तक एक दूसरे को देखते रहे। उफ, मेरे ख्वाब भी कितने अमीर हैं, पर मेरी तमन्ना है कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो एक रोज़।

मेरी पसंदीदा सफेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, मेरी पसंदीदा सफेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, तुम्हारी पसंदीदा सिल्क साड़ी में मैं आऊं, पास में ही कहीं गुलजार की लिखी गजल जगजीत सिंह की आवाज में बजती रहे, हम दोनों अपनी पसंदीदा कॉफी साथ में

स्वादिष प्लव 1 MHz पर आप सुन रहे FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:39 और 17 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। कभी कभी इस तरह भी हार हुई है मेरी।

आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, यही एक बात दिन भर याद रही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही के दिन। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी नीता अग्रवाल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 3 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। ये रात का सफर पूरे 24 घंटों के सफर में सबसे अलग एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि ये समय जो सिर्फ अपना है, सुख कर है, जिसमें जागती आंखों संग नींद में भी सपनों को आने की अनुमति है और सपनों की बातें कुछ यूं भी हुआ करती हैं।

महेंद्र कपूर लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत गीत फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, रात का सफर रोज बरोज होता है, लेकिन हर रात फिर भी रोज अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है। कभी आसमान में चांद पूरा, कभी आधा, कभी चांद है ही नहीं, कभी घटता या कभी बढ़ता चांद। न सिर्फ इतना बल्कि हमारे ख्यालों और एहसासों की दृष्टि से भी हर रात अलग अलग होती है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ था। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब हमराही के प्यारे वादे से सजा ये गीत।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया था। गुलशन बाबरा की लिखी रचना थी। 1974 रिलीज इस फिल्म का नाम हाथ की सफाई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम में मेरे साथ हैं आप यानी अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ती है आगे। साथियों, जीवन की राहें और कई बार दो राहें भी होता भी है ऐसा कभी कभी, राहें दो राहें या स्थान विशेष छोड़ जाने की मजबूरी, लेकिन मन की राह एक ही रहती है। कैसे, आइए जानते हैं इस गीत में।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत था साथियों राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम वो कौन थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। और अब हमराही बनकर आ गए हैं एक मतवाली आंखों वाले। क्या कहा जा रहा है इन्हें, सुनते हैं।

0: आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। शैलेंद्र की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम छोटे नवाब, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

साथियों, रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी।

शमशाद बेगम और किशोर कुमार के स्वरों से सजा ये गीत था नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। ओपी नैयर का संगीत था, चानीसार अख्तर की लिखी रचना थी। और अब साथियों एक खूबसूरत अदा

बॉबी लहरी के संगीत से सजा ये गीत लिखा था रमेश पंत ने। मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम वारदात, जो रिलीज हुई थी वर्ष

1981 में रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा सी आंख मिचौनी सी खेलता ये चांद हम सभी को भाता है।

लता मंगेशकर मन्ना डे के स्वरों से सजा ये गीत सुहागन फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब हमराही कार्यक्रम के अंतिम गीत पर, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति पर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत, एक और गीत आ रहा है परिवार फिल्म से।

मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बावरा की लिखी रचना, फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन में महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 4:11 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। सूर्य पर सूर्य की लालिमा, धरती पर सुंदर लालिमा का प्रकाश बिखेरे। सूर्य की सुंदरता, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजाइए की तभी आपने सुना जानवर फिल्म से 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम डॉक्टर विद्या, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में। मित्रों, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये दुनिया, देश और हम भी उस परिवर्तन के दौर में बहते चले जाते हैं। जैसे कि विशेषकर बरसात के दिनों में झूलों का लगना, वो भी अम्बुआ की डारी पे। गीत भी है एक ऐसा, एक अब झूलों का दौर जरा कम ही नजर आता है। झूला झूलते समय जो हवा लगती थी उसका एहसास और झूले का आनंद इस गीत के साथ।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रही हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, चला भी जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जीवन भर के लिए दे जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें, यादबन बार बार उभरती हैं हमारे मन मस्तिष्क में।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत छोटी सी बात फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों। सलील चौधरी का संगीत था, योगेश की लिखी रचना। मित्रों गीत संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जब हम इनका श्रवण करते हैं तो इनकी तासीर में खो सी जाते हैं। हम सफर में हों या घर पर या कहीं भी, इन गीत संगीत की आवाजों का जादू एक सुंदर अनुभूति कराता है।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा यह गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।

मित्रों, अरुणिमा की आभा जब सजती है, अरुणिमा की आभा जब सजती है तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है। प्रदूषण बहुत कम या नहीं भी होता, शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण, कोई व्यवधान नहीं। और ऐसे में कोई बजा रहा सुरीली धुन, छेड़ रहा ये गीत।

भूपेन हजारिका के संगीत निर्देशन से सजा ये गीत माया गोविंद ने लिखा था। लक्ष्मी शंकर की आवाज थी। फिल्म का नाम आरोप, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब दिल में सजी आस का एक रूप ये भी।

दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर।

0: को बढ़कर राहे तो रुक ना सकेगा। दुनिया के रास्तों पे चलकर दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद।
1: सुबीर सेठ की आवाज से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से लिया था। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ये रिश्ते बनने का कारण चाहे कुछ भी हो, इन्हें भली प्रकार से निभाने के लिए जतन करने होते हैं। कभी कोई माफी मांग ले, कहीं कोई और हाँ माफी ली गई बात को दोहराए बिना ये ख्याल रखा जाए, नहीं तो माफी की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी।

0: करोगे समझे
1: समझे।
0: अच्छा जी मैं हरी चलूंगा जाओ ना
1: देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
2: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज है फिल्म। बजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। साथियों सुबह होने वाले कार्यों में जब ऐसा कार्य जुड़ जाता है जो हम बहुत समय से सोच रहे हैं और वो हो भी जाता है या होने ही वाला है तो इस तरह की खुशी तो व्याप्त होना स्वाभाविक ही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत सपन जगमोहन का संगीत नक्श लायलपुरी की लिखी रचना 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जिम्बो फाइंड्स अ सन।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत क्रांति फिल्म से अभी आपने सुना। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संतोष आनंद ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया।